और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सराई पाली केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पहली तिथि तदनुसार 22 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर 6 बजने को हैं। समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वन कर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सम्पन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सराहीपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं समूह स्वर में भीष्म सिंह चौहान की लिखी इस मातृवंदना से।

0: शोभा गोटू के गाय इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन, आलेख डॉक्टर दामोदर प्रसाद तिवारी का है।
1: विश्व के इतिहास में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके अध्ययन, चिंतन और मनन करने से हमारा जीवन निश्चित ही बदल सकता है। छत्रपति शिवाजी के समक्ष उनके सिपाहियों ने भेंट स्वरूप एक सुंदर यवन कन्या को प्रस्तुत किया। उसे देखकर महाराज शिवाजी के नेत्र श्रद्धा से झुक गए और हृदय में मातृत्व भाव जागृत हुआ। वे बोले, काश मेरी माँ भी ऐसी होती तो मैं भी सुंदर होता। उन्होंने सिपाहियों को तत्काल आदेश दिया कि उन्हें सम्मानपूर्वक यथास्थान पहुंचा दें। हमारी भावनाएं ही हमें अच्छा और बुरा बनाती हैं। सूर, तुलसी, मीरा, तुकाराम आदि के जीवन में भी परिवर्तन हुए, जिसके पीछे कोई न कोई घटना अवश्य जुड़ी हुई है। पत्नी के स्नेह में अनुरक्त गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन एक बार की फटकार से परिवर्तित हो गया। परिणाम ये हुआ कि वे राम के

0: में भक्त हुए और विश्व साहित्य को रामचरितमानस और विनय पत्रिका जैसा अमूल्य ग्रंथ प्राप्त हुआ। ठीक ऐसे ही एक बार सिद्धार्थ अपने राजमहल से बाहर रथ पर बैठकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक वृद्धा को देखा जिसकी कमर झुकी हुई, शरीर में झुर्रियां पड़ी, अत्यंत क्षीण काय अवस्था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये क्या है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उत्तर मिला, ये वृद्ध है। क्या एक दिन मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा? उत्तर में सारथी ने कहा, संसार में सबकी यही दशा होती है। फिर आगे बढ़े तब उन्हें एक शव दिखाई पड़ा। कुछ व्यक्ति राम नाम सत्य है कहते हुए कंधे पर मृतक को लिए शमशान की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने फिर प्रश्न किया, ये क्या है? सारथी ने कहा, ये मनुष्य है, इसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए दाह संस्कार करने इसे ले जा रहे हैं। क्या मैं भी मरूंगा? हाँ, सभी को एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ता है। इन घटनाओं से उनका हृदय परिवर्तित हो गया और वे एक दिन रात्रि में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर राजभवन से प्रस्थान कर गए। कालांतर में वे ही भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक इसी प्रकार महावीर स्वामी के जीवन में भी परिवर्तन हुआ था। घटनाएं कुछ भी हों पर वे जीवन का पाथे बन गईं। इन प्रसंगों का अभिप्राय क्या है? आज भी हम इस प्रकार के दृश्य देखते हैं। पत्नी की फटकार किसे नहीं मिली होगी, पर हम में परिवर्तन क्यों नहीं आता? चिंतन करें तो ये लक्ष्य उजागर होता है कि हमारे जीवन में सद्गुरु की कमी और चिंतन का अभाव है। हमें सांसारिकता ने इतना अधिक जकड़ लिया है कि उसके आकर्षण और बंधन से छूटना दुष्कर हो गया है। परिवर्तन तभी संभव होगा जब हमारी चित्त की वृत्ति ईश्वरोन्मुख होगी, तभी मन शांत और स्थिर होगा।
1: चिंतन। अभी आप सुन रहे थे, आलेख डॉक्टर दामोदर प्रसाद तिवारी का था। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान।

भरत को चतुरंगिणी सेना के साथ चित्रकूट आते देख निषादों की भांति लक्ष्मण के मन में भी आशंका हुई कि राजपद पाकर भरत को प्रभुता का मद हो गया है और श्री राम को वन में अकेला असहाय समझ वे युद्ध करने आ रहे हैं। अतः लक्ष्मण ने भरत से युद्ध करने की ठान ली। श्री राम के चरणों की वंदना कर चरण रज माथे से लगाते हुए बोले, मेरा कहना अनुचित।

न मानिएगा। भारत ने वैसे भी हमारा कम अहित नहीं किया है और अब युद्ध करने आ रहे हैं। आखिर हम ये सब कहां तक सहन करेंगे, जबकि आप हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। अग्रज से युद्ध की आज्ञा मांगते हुए लक्ष्मण साक्षात वीररस के अवतार दिख रहे थे। सिर पर जटाजूट और कमर में बंधा बाणों भरा तरकस, भरत का सामना करने को वो पूरी तरह तैयार हैं। उपस्थित समाज के वहां एकत्रित होने के कारण उनका हौसला और भी बढ़ गया है। मन में दृढ़ निश्चय हो गया है कि आज वो अपना सारा पिछला क्रोध अच्छी तरह प्रकट करेंगे। क्रोधित लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख सारा जगत भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे तात, जो बिना विचारे जल्दी में कुछ करके बाद में पछताते हैं, उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता।

0: रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। आज की कड़ी में गायन स्वर था सुरेश वाडकर और संगीता का। आकाशवाणी के संगीतमय प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 होने को हैं। कृषि चर्चा में लीजिए सुनिए आम उत्पादन की उन्नत तकनीक विषय पर डॉक्टर अभय बिसेन की जानकारी।
1: नमस्कार किसान साथियों, आज की चर्चा का विषय है आम की उत्पादन तकनीक। आम अपनी सुगंध एवं गुणों के कारण लोगों में अधिक लोकप्रिय है। विश्व के अनेक देशों में आम की व्यावसायिक बागवानी की खेती की जाती है, परंतु यह फल जितना लोकप्रिय हमारे देश में है उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं है। हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर आम की बागवानी देश के हर एक भाग में की जाती है। आम की व्यावसायिक खेती उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में की जाती है। आज के ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश में आम का कुल क्षेत्रफल 2460,000 हेक्टेयर, जिसमें 17,290,000 मैट्रिक टन आम का उत्पादन वर्तमान में हो रहा है। आम को उगाने के लिए जलवायु एवं मृदा किस प्रकार की होनी चाहिए? आम की खेती समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई तक की जा सकती है, किंतु व्यावसायिक दृष्टि से 600 मीटर तक ही उगाने की सलाह दी जाती है। तापक्रम में उतार चढ़ाव, वर्षा, आंधी आदि आम की उत्पादकता पे प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। आम को उगाने के लिए 23 से 25 डिग्री तापमान सबसे आदर्श माना जाता है। उत्तर भारत में दिसंबर एवं जनवरी के महीनों में तापमान में उतार चढ़ाव के चलते फूल जल्द निकलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में मंजरियों में नर पुष्पों की संख्या अधिक होती है, उसमें गुच्छा रोग होने की संभावना अधिक होती है। मंजरियों के निकलते समय वर्षा अधिक होने से अत्यधिक नुकसान होता है एवं बीमारियों एवं कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। आम के

0: छोटे पौधे पे पालक का प्रभाव अधिक होता है। इसी प्रकार आम को उगाने के लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वह दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसे काली मृदा में भी आसानी से उगाया जा सकता है, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 एवं अच्छी जल निकास वाली व्यवस्था मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी गई है। आम की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक जाती है। पौधों के समुचित विकास हेतु लगभग 2 से 2.5 मीटर गहरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। क्षारीय एवं लवणीय भूमि में आम की फसल के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसी भूमि में पत्तियों के सूखेपन के लक्षण दिखाई देते हैं। पौधों के विकास इसमें धीमी गति से होता है। सामान्यतः लवणीय भूमि में लवण सहनशील वाले मूल वृंतों जैसे कुरुकरण, ओलूर 13-1 का प्रयोग कर आम की बागवानी की जा सकती है। आम की प्रमुख किस्में, छत्तीसगढ़ राज्य में आम की उगाई जाने वाली प्रमुख किस्में हैं मल्लिका, आम्रपाली, पूसा सूर्या, पूसा अरुणिमा, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठ, पूसा लालिमा, पूसा पीताम्बर। ये किस्में हमारे देश की आधुनिक किस्में हैं। ये किस्में बोनी किस्में हैं जिसमें हर साल फलन की क्रिया होती है। हमारे देश में एवं प्रदेश में यह देखा गया है कि एकांतर फलन वाली किस्में जैसे लंगड़ा, दशहरी को लगा के किसानों को एक साल फल प्राप्त होते हैं, दूसरे साल फल प्राप्त नहीं होते हैं। इस कारण ये रेगुलर फलने वाली किस्में किसान भाइयों को लगाना चाहिए। बाग की स्थापना, आम के बाग लगाने से पहले खेत को गहरा जोत कर समतल कर लेना चाहिए, जिसके बाद जितनी दूरी पर पौधे लगाने हो उतनी दूरी पर 1x1x1 मीटर के गड्ढे मई से जून माह में खोद लेना चाहिए। गड्ढों से निकली गई मिट्टी में 50 किलो अच्छी गोबर की खाद मिला देना चाहिए। जहाँ पे दीमक की समस्या हो वहाँ पे 100 ग्राम क्लोरोपाइरीफास प्रति गड्ढे की दर से मिला देना चाहिए। गड्ढों को भरते समय यह ध्यान रखें कि आधी मिट्टी को एक तरफ और आधी मिट्टी को दूसरी तरफ डालें। और बागों को लगाने का प्रमुख समय वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के समय जून एवं जुलाई का माह उपयुक्त माना गया है। आम के पौधों में पोषण प्रबंधन, पौधों के लगाने के बाद पहले वर्ष 100 ग्राम नत्रजन, 50 ग्राम फास्फोरस, 100 ग्राम पोटाश प्रति पेड़ के हिसाब से डालना चाहिए। प्रारंभ के वर्षों में पेड़ों की बढ़वार तेजी से होती है, इसलिए ऊपर बताई गई मात्रा को हर वर्ष बढ़ाना चाहिए। जब इस तरीके से पौधा जब 10 वर्ष का हो जाता है तो 1 किलोग्राम नत्रजन, 500 ग्राम फास्फोरस एवं 1 किलोग्राम पोटाश को प्रति पेड़ की दर से डालना चाहिए। यह मात्रा 10 वर्ष के पौधों पर स्थिर कर देनी चाहिए। जल प्रबंधन, फलदार वृक्षों में अक्टूबर से जनवरी तक सिंचाई नहीं करनी चाहिए, साथ ही फूल आने के समय भी सिंचाई रोक देनी चाहिए। जब फल मटर के दाने के बराबर हो जाएं तब फलों में परिपक्व होने तक निश्चित अंतराल में सिंचाई करना अति आवश्यक माना गया है। उत्तर एवं मध्य भारत में सर्दियों में पाला पड़ता है, गर्मियों में लू चलती है, अतः गर्मियों में बाग की सिंचाई 7 से 10 दिन के अंतराल पर एवं जाड़ों में 15 से 20 दिन के अंतराल पे करनी चाहिए। आम के बगीचों में टपक सिंचाई प्रणाली का प्रभाव अत्यंत लाभकारी माना गया है। आम के पौधों में लगने वाले रोग एवं कीट, प्रमुख कीट निम्नानुसार है, जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ। इसमें प्रमुख रोग पाउडरी मिल्ड्यू आता है, एंथ्रोग्नोज आता है, डाइबेक आता है जिसमें पत्तियां सूखती हैं। इस प्रकार आम के पौधों में लगने वाले प्रमुख कीट मैंगो हापर, मिली बग, तना छेदक ये प्रमुख कीट हैं। आम के फलों की तुड़ाई एवं उपज, फलों की परिपक्वता का अनुमान फलों को देखकर उसके के अनुसार लगाया जा सकता है। यदि फल पानी रखी हुई बाल्टी में अगर डूब जाता है तो ये माना जाता है कि फल परिपक्व हो जाते हैं और 10 वर्ष पुराने पौधों से लगभग 300 से 500 फल प्राप्त होते हैं। नमस्कार किसान भाइयों।
1: कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे आम उत्पादन की उन्नत तकनीक विषय पर डॉक्टर अभय विसेन की जानकारी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। समय है कार्यक्रम विवरण का। हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे दें। पब्लिक स्पीक सुनिएगा 9:30 पर और स्पोर्ट्स कैन सुनिएगा 8:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर का समय होगा 7:05 पर। इसमें सुनिएगा जीवन शैली जन्य रोग और योग विषय पर डॉक्टर डोंगेश्वर साहू से दुर्गेश चक्रधारी की बातचीत और संगीत नाटक अकादमी द्वारा घोषित उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित छत्तीसगढ़ के घनश्याम साहू से दुर्गेश चक्रधारी की बातचीत। साहित्य पत्रिका कार्यक्रम पल्लवी सुनिएगा 8:30

इस मिनट पर इसमें वार्ता में सुनिएगा जन जागरण में नाटकों की भूमिका। वार्ताकार होंगे डॉक्टर उमाकांत झा। सुनिएगा सुशील यादव का कविता पाठ और सुनिएगा आशा झा की कहानी वट वृक्ष। संपादक प्रकाश उदय। सुबह 9 बजे विज्ञान लोक में आप सुनेंगे चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का योगदान और नए आयाम विषय पर डॉक्टर केशवकांत साहू द्वारा दी गई जानकारी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 पर और रात 8:15 पर कलाकार होंगे सलीम इकबाल। इस कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे चतुर सेन के स्वर में सुगम संगीत। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 10 बजे। फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो प्रसारित होगा सुबह 11:05 पर। प्रस्तुत करता होंगी तारकेश्वरी आसुदानी। लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंजनी में दोपहर 12:30 पर कलाकार होंगे मोतीलाल भीमटे और साथी। दोपहर 1:30 पर शहरी महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में आज की बात का विषय होगा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता और जीवन में योग का महत्व। परिचर्चा में सुनिएगा महिला सुरक्षा में परिवार और समाज की भूमिका। प्रतिभागी होंगे श्रीमती शताब्दी पांडे, डॉक्टर श्रीता गोयल और रीचा साहू। संचालन इंदु चटर्जी का। और टिप्स में आप सुनिएगा भोजन को ताज़ा कैसे रखें और यात्रा के दौरान सावधानी, इन विषयों पर चर्चा। साथ ही सुनिएगा क्रम तरन्नुम। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी सुनिएगा शाम 5:10 पर जिसमें आजकल का विषय होगा विश्व वर्षा वन दिवस। होंगे क्रम हेलो युवाणी और दृष्टिकोण। किसानों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात का विषय होगा फसल परिवर्तन का आधार श्री अन्न मिलेट। आज की सलाह में फल और सब्जी में पादप हार्मोन, इस पर जानकारी देंगे डॉक्टर गागेंद्र सिंह राजपूत, विषय वस्तु विशेषज्ञ पादप कारिकी उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय सांकरा जिला दुर्ग। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर सुनिएगा रात 10 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनेगा प्रभात्रे का गाया राग जोग कौंस में ख्याल। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित होगा दोपहर 12 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोड सुनेगा शाम 5 बजे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं। समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, पहले संस्कृत में फिर हिंदी में।

0: ആരാധനാ ശർമ്മ. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिकशक्तिः राष्ट्रस्य सामरिकप्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति. कोलकातायां श्यामप्रसादमुखर्जी जलपोतस्थात्रे तेन स्वदेशनिर्मिताः त्रयः नौसैनिकपूताः INS दुनागिरिः, INS संशोधकः, INS अग्रयश्च भारतीयनौसेनायै समर्पिताः.
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है. इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही

0: तेन उक्तं यत् योगः विभिन्नेषु देशेषु समाजेषु च स्थितान् जनान् स्वास्थ्य कल्याणयोः समान लक्ष्ये संयोजयति। प्रधानमन्त्री एतत् विश्वस्य कृते प्रेरणादायकम् अस्ति इति अवदत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः कुनो राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्य कुनो नेशनल पार्क इत्यस्य राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। सा प्रोजेक्ट चीता इति योजनायाः प्रगतेः समीक्षां करिष्यति, तथा च व्याघ्रपालकैः वन कर्मचारिभिः स्थानीय जनैश्च सह संवादं करिष्यति। अधिकारिणाम् अनुसारेण भारते सम्प्रति 500+ व्याघ्राः सन्ति, तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति। भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति। अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति। नीट यूजी 26+ पुनर्परीक्षा सुदृढ़सुरक्षा व्यवस्थायां सुसम्पन्ना। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु 44+5,000 परीक्षाकेन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन्। दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेषव्यवस्थाः अपि कृताः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन 12 उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामाः क्रमशः प्रकाशिताः। मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनपत्रेषु 87% परिणामाः घोषिताः सन्ति, अवशिष्टपरिणामाः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते। छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति। मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इत्युक्तम्। छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणित सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं CBSE इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः। तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायोः स्रवण घटनायां 7 मृताः, 77 श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः। घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति। राष्ट्रिय आपद्मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितम् आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा 3-सदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा, तत्र 2-2 अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को

जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

आसमान से उतरी मध्यम सी एक कतार, देखो लौट आई है फिर से बरसात की फुहार। और बरसात की फुहार के संग हम भी तो लौट आए हैं लेकर आपके लिए गीत संगीत और सूचनाओं का तोहफा लेकर। तो दोस्तों, अपनी खिड़की के बाहर जरा देखिए, चाय का प्याला हाथ में लीजिए और इस सुंदर दृश्य को

हारिए। आज के भागदौड़ को थोड़ा धीमा करते हुए इस व्यस्त जीवन से कुछ पल चुराइए और चल पड़िए हमारे संग आज के सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर के सफर पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त दुर्गेश कुमार। आप सभी को हमारा नमस्कार।

0: दोस्तों, बीते दिन यानी 21 जून को हम सब ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। पर क्या ये दिवस सिर्फ एक दिन मनाने का दिवस मात्र है? जी नहीं, इसे हमें अपनी लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें सुख सुविधाएं तो बहुत मिल गई हैं, लेकिन इसके साथ ही एक बिन बुलाया मेहमान भी हमारे घर आ गया है, और वो मेहमान है जीवन शैली जन्य रोग यानी लाइफ स्टाइल डिसीजेस। आज हर दूसरे घर में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और मानसिक तनाव देखने को मिल रहा है। आखिर इसका समाधान क्या है? इसी विषय पर जानकारी के लिए हमने बात की है डॉक्टर डोंगेश्वर साहू, सहायक कार्यक्रम समन्वयक पंडित सुंदरलाल शर्मा, विश्वविद्यालय बिलासपुर से। करो योग रहो निरोग, इस ध्येय वाक्य को आप सभी ने सुना होगा। इसी पहलू पर चर्चा के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर डोंगेश्वर साहू जी को। आप कार्यक्रम समन्वयक हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर में। नमस्कार रायपुर के आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत सर।
1: आपके आकाशवाणी के माध्यम से सभी श्रोताओं को हार्दिक नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार
0: सर। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं जीवन शैली जन्य रोग और योग के संबंध में, तो आपसे सबसे पहले यही जान लेते हैं कि जीवन शैली से रोग उत्पन्न होने का कारण क्या है और योग इसके निवारण में कैसे सहायक है।
1: दैनिक जीवन से संबंधित रोगों के बारे में आपने प्रश्न पूछा है।
0: जी जी,
1: दैनिक जीवन में मुख्यतः बहुत सारी खराब आदतें जुड़ गई हैं और इसका मूल कारण आधुनिक जीवन शैली है, और आधुनिक जीवन शैली के कारण से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। और प्राकृतिक जीवन शैली अगर हम अपनाते हैं तो इस तरह के रोग होते नहीं हैं।
0: जी जी सर।
1: वर्तमान में असंतुलित खानपान देखा जाता है कि हम तरह तरह के फास्ट फूड और जो भी असामान्य तरीके से जो भोजन मिलते हैं डब्बा बंद खाने या अन्य जो बच्चों के को जो बाजार से आहार मिलते हैं, तो मुख्यतः खानपान सही नहीं होने पर इसका हमारे शरीर पर और मन पर दोनों पर असर पड़ता है।
0: जी जी।
1: तो शरीर पर जो असर पड़ता है, खानपान अगर ठीक ना हो तो इसका मल का शरीर से निष्कासन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता।
0: जी जी।
1: और ज्यादातर अगर मल का निष्कासन सही नहीं हो पा रहा है तो वहां से पेट संबंधी रोग पहले उत्पन्न होते हैं।
0: जी जी।
1: और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए अनेक तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और वो अगर तामसिक भोजन वगैरह हो जाए
0: जी,
1: तो तामसिक भोजन वगैरह से ये मन को अधिक खराबी लाता है। हमारे भीतर में हिंसा के भाव पैदा होते हैं और कई असंतुलित व्यवहार हमारे उत्पन्न होते हैं।
0: जी जी सर।
1: अभी ये भी देखा जा रहा है कि शारीरिक गतिविधि की कमी आई है।
0: जी।
1: ये आधुनिक जीवन शैली का ही प्रभाव है या सुख सुविधाओं का एक अंबार जो हमारे सामने लगा है। तो लगभग छोटे बच्चों में भी और बड़ों में भी शारीरिक गतिविधि कम हो गई है। वो ज्यादातर बैठे बैठे ही या तो ऑफिस वर्क या दूसरे काम में लगे हैं। तो जैसे ही शारीरिक गति अगर कम मिलती है, शरीर में श्रम का अगर अभाव हुआ तो स्थूलता बढ़ती है, मोटापा से आप पूरा विश्व जूझ रहा है।
0: जी सर।
1: और अनेक तरह के रोग आने लगते हैं। अभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और खाना का ना पचना वगैरह शिकायतें बहुत अधिक हैं।
0: जी जी।
1: मेरुदंड में भी बहुतों में दर्द देखा जाता है।
0: जी सर। छोटे बच्चों में भी इसका प्रभाव आजकल हमें देखने को मिल रहा है।
1: जी। और अभी तनाव बहुत लोगों में आ रहा है, या हो सकता है भविष्य की चिंता को लेकर है या अनिश्चितता की स्थिति ज्यादा है शायद लोगों में।
0: जी जी।
1: ये तनाव भी एक कारण बन रहा है। ये भी जीवन शैली का ही एक प्रभाव है। अगर हम किसी घटना को सही एंगल से देखते हैं तो तनाव की स्थितियां कम आती हैं।
0: जी।
1: और व्यस्तता इतनी अधिक बढ़ी है कि लोगों में अपर्याप्त नींद होने लगी।
0: जी सर।
1: में कंपटीशन

0: चक्कर में वो ज्यादातर रात रात में पढ़ते हैं और उससे उनका जो नींद का जो साइकिल पूरा होना चाहिए वो अपर्याप्त रहता है। यदि हम योग की विधि के साथ चलें तो जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाकर हम बहुत अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं।
1: सर, तो कैसे योग हमें सहायता प्रदान करेगा, हमें योग को किस समय पर करना चाहिए, कैसे हम उससे अपने दिनचर्या को बदल सकते हैं?
0: दिनचर्या का शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है और अगर गलत दिनचर्या हो कि हम कभी भी सो उठ रहे हैं या कुछ भी चीज कर रहे हैं तो इससे गलत दिनचर्या के कारण आप देखेंगे कि ऊर्जा में कमी आ जाती है।
1: जी जी
0: हाँ, ये ऊर्जा में कमी स्पष्ट रूप से देखा जाता है।
1: जी सर,
0: पाचन की समस्या भी एक कारण देखा जाता है कि हम या तो अधिक भोजन कर रहे हैं या बहुत ही असंतुलित सा भोजन कर रहे हैं।
1: जी,
0: तो ये दिनचर्या के कारण से इस तरह के प्रभाव आते हैं और मूड में बदलाव भी आने लगता है।
1: जी सर,
0: और अनिद्रा की स्थिति आने लगती है। तो गलत खान पान से दिनचर्या पर निश्चित असर आता है और खान पान को सुधारने का भरपूर प्रयास करना चाहिए कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। ये शिक्षा तो बहुत बड़ी है, लोगों को इसका नॉलेज है कि उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, पर वो इस कदर भी उस तरह से अपने दिनचर्या में अच्छे जोड़ लिए हैं कि जानबूझकर भी इस पर अभी विजय नहीं पा पा रहे हैं,
1: आदत को नहीं बदल पा रहे हैं कहना चाहिए।
0: जी जी
1: सर, क्या इसका एक कारण सोशल मीडिया भी हो सकता है? लोग रात भर जागते हैं और उसके वजह से दिनचर्या में चेंजेस आते हैं और उससे पाचन तंत्र बिगड़ता है जैसा आप कह रहे हैं।
0: ज्यादातर अभी सोशल मीडिया को ही देखा जा रहा है,
1: जी
0: चाहे या ना चाहे, और छोटे बच्चों से लेकर बड़ों में भी आदत आई, सोशल मीडिया पर एक तरह से डिपेंडेंसी आ गई और पूरा विश्व में इस पर अभी चिंतन चल रहा है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इस पर बैन भी लगाया कि छोटे बच्चों को इसका उपयोग ज्यादा ना करने दिया जाए, पर ये बड़ों में भी आदत देखी जा रही
1: जी।
0: और चिंता सभी कर रहे हैं, पर इस तरह से हमारी आदतों में घुस चुका है कि उसे जितना सामान्य लोगों में भी मुश्किल पड़ रहा है। जो नियमित है अनुशासित है वो तो बच पा रहे हैं, ज्यादातर जो भी समाज की संख्या है वो इससे प्रभावित ही है।
1: सर, आप प्रोफेसर है तो आप अपनी दिनचर्या को कैसे नियंत्रित करते हैं हम जानना चाहेंगे, ताकि हम भी कुछ सीख पाएं कि कैसे दिनचर्या को व्यवस्थित रखा जाए।
0: दिनचर्या को प्रकृति के चक्र और योग सिद्धांत के अनुसार चलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और प्रकृति के चक्र मतलब कि जैसे जैसे जो हम प्राकृतिक जीवन की ओर अगर चले, और योग में एक अनुशासित जीवन को बहुत महत्व दिया जाता है, इसके लिए अनुशासन के प्रति थोड़ी हमारी भीतर से श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हम अनुशासन के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो दिनचर्या बहुत अच्छा हो सकता है।
1: जी,
0: जैसे हम सात्विक जीवन शैली को महत्व दें,
1: जी
0: जो खान पान है हमारा बहुत ही सात्विक, ज्यादा तामसिक भोजन को महत्व ना दें, वैसे ही व्यवहार में भी हम बहुत ज्यादा जो दिखावे वाला व्यवहार है वैसा ना होकर भीतर से सही होने का प्रयास करें।
1: जी,
0: और जीवन शैली संबंधी अगर हम देखें तो ब्रह्म मुहूर्त में जागरण के बारे में सभी को नॉलेज है।
1: जी जी,
0: उस समय हमारी प्रकृति और जो हमारी धरती की गुरुत्व शक्ति है तो बहुत ही हमारे अनुकूल होती है।
1: जी,
0: ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम जागते हैं तो हमारे मन के भीतर जो प्रभाव है या प्राकृतिक जो अनुकूलन है हमारे अनुरूप रहता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम जाग जाते हैं तो हमारी आधी समस्या तो वैसे ही खत्म हो जाती है।
1: जी,
0: हम लोग तो योग से थोड़ा जुड़े हैं, तो सुबह उठने के बाद शौच से निवृत्त होने के बाद नेकी वेकी की क्रिया जो है वो हम लोग करते ही हैं।
1: जी,
0: और सुबह उठते ही उषापान की आदत हमारी है, उषापान करने से पानी की मात्रा शरीर में पर्याप्त मिलती है।
1: जी,
0: तो जो मल निष्कासन की समस्या जो आम लोगों में देखी जा रही है वो उससे निजात पाया जा सकता है, और पानी की पर्याप्त मात्रा मिलने पर शरीर तंत्र भी अच्छे से काम करता है।
1: जी सर,
0: साथ ही साथ योग और प्राणायाम हमारा नियमित है कि प्रतिदिन हम एक घंटे का योगाभ्यास जिसमें आसन प्राणायाम दंड मुद्रा।
1: तो सर, जैसे आपने कहा कि आप एक घंटा व्यायाम करते हैं, तो उस एक घंटे में ऐसे कौन कौन से मुख्य व्यायाम है चाहे प्राणायाम है जिन्हें हमें करना चाहिए, कुछ नाम आप लीजिए।
0: जी, योग में जैसे हमारी जो आदतों में जो डेली वाले जो अभ्यास हैं उसमें मुख्य रूप से सूर्य नमस्कार को स्थान देने का है।

0: नमस्कार 12 आसनों का एक समूह होता है और इसमें श्वास प्रश्वास की क्रिया जुड़ी है जो प्राणायाम जैसा लाभ भी देता है। और इसके जो 12 अभ्यास हैं वो शरीर के विभिन्न तंत्रों को सीधे सीधे प्रभावित करता है, जैसे श्वसन तंत्र को, मस्कुलर सिस्टम को भी प्रभावित करता है और जो ग्रंथियां हैं ग्रंथियों को प्रभावित करता है। और इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम को सीधा प्रभावित करता है। सूर्य नमस्कार को दैनिक अभ्यास में हम लोग शामिल करते ही हैं। इसके अलावा खड़े होकर कुछ अभ्यास हैं जैसे ताड़ासन और वृक्षासन वगैरह, तो ताड़ासन और वृक्षासन एक संतुलन का काम करता है, शारीरिक संतुलन और मानसिक संतुलन उससे बढ़ता है। हम सभी लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए। और इसके अलावा पीठ के बल लेट कर हम सर्वांगासन, फलासन और मत्स्यासन है, इसे दैनिक अभ्यास में महत्व देते हैं। ऐसे ही इसके विपरीत में पेट के बल लेट कर कुछ अभ्यास किए जाते हैं, जैसे भुजंगासन, धनुरासन और ऐसे ही कुछ बैठ कर अभ्यास किए जाते हैं। इसके अलावा प्राणायाम में जो मस्तिष्क को ठीक रखने वाला प्राणायाम है उसमें कपालभाति प्राणायाम है और अनुलोम विलोम प्राणायाम
1: जी,
0: साथ ही साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। ये चार प्राणायाम अगर कर लेते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क के लिए ये पर्याप्त होता है।
1: सर, मेरे मन में एक और प्रश्न ये आ रहा है कि लोगों में ऐसी भ्रांति होती है कि अगर एक बार योग को दिनचर्या में शामिल कर लें तो उसे छोड़ने पर उसका जो प्रभाव है वो शरीर में विपरीत दिखाई देता है, तो क्या ये सच है या ये सिर्फ भ्रांति ही है?
0: एक पूरा भ्रांति ही है
1: जी।
0: योग में ये है कि अगर आप किसी भी उम्र में योग के अभ्यास की शुरुआत करते हैं, अगर आपने शुरू नहीं किया है 70-80 साल के बाद भी अगर शुरू करते हैं वो लाभ देता है। लेकिन किसी कारणवश अगर किसी ने मान लो 10 साल अभ्यास किया और छोड़ दिया, इसका साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है
1: जी, जी।
0: इस पर कुछ रिसर्च भी हुए हैं। तो आमतौर पर जिम वगैरह में ऐसा अभ्यास छोड़ने पर देखा गया है, उनमें मोटापा का बढ़ना या और कई ऐसे शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं
1: जी।
0: लेकिन योग में अगर आप कर रहे हैं तो सतत वो गहरी स्थिति में आपको लेता जाएगा और बहुत ही शानदार स्वास्थ्य देता जाएगा
1: जी। जी,
0: कोई किसी कारणवश या बहुत व्यवस्थावश अगर नहीं करता है तो उसके साइड इफेक्ट नहीं आते। ये है कि जो स्फूर्ति बने रहती है उसमें धीरे धीरे कमी आ जाएगी, लेकिन उसके दुष्प्रभाव नहीं आएंगे कि उसके छोड़ने पर कोई उल्टा कोई रोग उत्पन्न करे या उसको कोई दिक्कत करे, इस तरह का असर नहीं आता है।
1: सर, मन तो ये कर रहा है कि आपसे लगातार बातचीत की जाए, आपसे बहुत सारी जानकारी जुटाई जाए, पर समय की पाबंदी है और आप नमस्कार रायपुर के कार्यक्रम के साथ जुड़े और बहुत ही विस्तार से और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।

कला के दीवानों, सुरों के मस्तानों, रंगमंच के कद्रदानों और तमाम देशवासियों के लिए हर्षित होने का क्षण है कि वर्ष 2025 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, जिसके अंतर्गत 108 कलाकारों को अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है और लगभग 106 युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ये गौरव का क्षण इसलिए है कि इस वर्ष संगीत नाटक

0: अकादमी सम्मान 2025 के सूची में छत्तीसगढ़ से चार कलाकारों का चयन हुआ है, जिनमें हैं पद्मश्री पंडित रामलाल बरेठ, पद्मश्री अनूप रंजन पांडे, आनंद कुमार पांडे और घनश्याम साहू। इनमें से ही रायगढ़ छत्तीसगढ़ के हैं घनश्याम साहू, जिनसे हमने की है विशेष बातचीत। आइए सुनते हैं संगीत नाटक अकादमी द्वारा घोषित उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित छत्तीसगढ़ के युवा रंग निर्देशक पटकथा लेखक घनश्याम साहू से विशेष बातचीत।
1: दोस्तों, देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित घनश्याम साहू जी आज मौजूद हैं। घनश्याम जी नमस्कार, रायपुर के आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: नमस्कार, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
1: घनश्याम जी, सबसे पहले तो आपको उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपका थिएटर से जुड़ाव कैसे हुआ और आपका अब तक का सफर कैसा रहा?
2: देखिए, आर्ट को समझने के लिए तो मैं स्कूल से ही समझना चाह रहा था आर्ट को, कि ये कलाकारी क्षेत्र में मेरे को जाना था, तो स्कूल में कभी मौका मिला नहीं। तो मैं सोचता था कि यार अपने आर्ट को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं एक दो लोगों से मिला तो बोले कि आप पहले कहानी पढ़िए, उस कहानी के पात्र को समझिए। तो फिर मैं धीरे धीरे धीरे धीरे कहानी को समझने लगा
1: जी।
2: तो बारहवीं पढ़ने के बाद मैं एक साल का ब्रेक लिया। एक साल का ब्रेक लेने के बाद मैं धर्म जगड़ गया। वहां मुझे पता चला कि कुछ एल्बम्स वगैरह बना रहे हैं, तो मैं वहां जाके राजू प्रधान एक हैं उनसे मिला, उनसे बोला कि सर मैं भी लिखता हूँ गाना वगैरह। तो उन्होंने मुझे मौका दिया, बोले कि लिख के दिखाओ तीन चार गाना। तो संजोग ऐसा रहा कि मेरा उसमें पांच गाना लिखना सिलेक्ट हुआ। तो वहीं से मैं शुरुआत किया एल्बम का
1: जी।
2: पहले मैं थिएटर के बारे में जानता भी नहीं था
1: जी। जी
2: हाँ, तो फिर वहां से एक पता चला, दीपक आचार्य जी हमारे रायगढ़ से ही है, के आर कंपनी का मालिक है, कैसेट चलाते हैं, उस समय का जो सीडी डीवीडी चलता था। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक एल्बम बनाते हैं बाबा सत्यनारायण बाबा जी जो रायगढ़ में है, उनके बारे में एक एल्बम निकालना चाह रहे हैं, अगर चाहो तो गाना लिख सकते हो बोल के। तो मैं बोला ये तो मेरे लिए मौका है, मेरे रायगढ़ के लिए काम करने का मौका मिल रहा है। तो मैं उसमें नॉन स्टॉप गाना था वो लगभग एक घंटे का, 28 अंतरा का, तो 28 अंतरा उसमें मैं लिखा था। तो फिर हाँ, फिर वहां से धीरे धीरे धीरे धीरे पता चला नीलकमल वैष्णव भैया को कि मैं इस टाइप का गाना वगैरह लिखता हूँ। नीलकमल वैष्णव भैया जो अभी स्टार है झोलटू राम सतरंगी रे के जो गायक है, उन्होंने मुझे खैरागढ़ जाने की सलाह दी कि भाई तुम अभी इधर उधर मत भटको, अभी उम्र भी कम है, खैरागढ़ जाओ, खैरागढ़ में पढ़ो लिखो, वहां से शुरुआत करो तो आगे बढ़ोगे। तो मुझे गायन गाना सीखने के लिए यहाँ भेजे थे, मैं गायन में एडमिशन लिया था।
1: अच्छा।
2: तो फिर मुझे तो मतलब एक्टिंग करना था, एक्टिंग करना था और कहानी लिखना था, नाटक लिखना था। तो मैं पता किया थिएटर के बारे में, यहाँ पता चला। तो फिर मेरे गुरुदेव डॉक्टर योगेंद्र चौबे जी मिले, उन्होंने बताया कि थिएटर में सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा, डांस भी सीखने को मिलेगा, एक्टिंग भी सीखने को मिलेगा, जो कहानी आप मतलब दिखाना चाहते हो लिखना चाहते हो वो सब चीज मिलेगा। तो फिर मैं थिएटर लिया, और मुझे लोक संगीत से तो ऐसे ही पहले से जुड़ाव था, तो फिर माइनर मैं लोक संगीत लिया।
1: आपकी पढ़ाई थिएटर से हुई?
2: हाँ, मेरी पढ़ाई थिएटर से हुई है, डॉक्टर योगेंद्र चौबे गुरुदेव के सानिध्य में मेरा ग्रेजुएशन मास्टर थिएटर से ही हुआ है।
1: तो जब आपको पता चला कि आपको बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार मिलने जा रहा है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था, मतलब किन किन लोगों को आप इसका श्रेय देना चाहेंगे?
2: देखिए, सबसे पहले श्रेय तो मेरे माँ बाप का, जो मुझे सपोर्ट किया इस फील्ड में आने के लिए
1: जी।
2: और सबसे बड़ा जो योगदान है वो मेरे गुरुदेव डॉक्टर योगेंद्र चौबे जी का है, कि मैं एक कच्चा मिट्टी आया था, उन्होंने मुझे बनाया है यहाँ
1: जी।
2: आज जो कुछ भी हूँ थिएटर में, जो कुछ भी थिएटर का समझ है, वो सिर्फ सिर्फ योगेंद्र चौबे सर के हैं। और बाद में फिर मेरी पत्नी जो मेरे को हमेशा सपोर्ट करती है मनीषा, वो मेरी मम्मी आई हुई थी, मम्मी और मनीषा शायद कुछ काम कर रहे थे घर में, तो मैं किचन में कुछ कुछ बना रहा था मम्मी को खिलाने के लिए। अचानक चौबे गुरुदेव का फोन आया कि घनश्याम कुछ पता चला? तो मैं बोला क्या पता चला गुरुदेव, मैं आपको व्हाट्सअप क्यों देखो। तो मैं व्हाट्सअप देखा तो उसमें बिस्मिल्ला खां पुरस्कार का वो था, लिस्ट था। तो मैं बोला कि देखा, देख तो नहीं पाया गुरुजी, बहुत लंबा है, क्या है बताइए ना बोल के। अरे तू देख तो बोलते है पहले। मैं देखा उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, मतलब नाट्य लेखन के लिए मेरा नाम था। मैं तो खुशी से मतलब सुन लो गया था कुछ समय के लिए, एकदम सुन
1: जी जी,
2: मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर मैं एकदम इतना जोर से चिल्लाया, मनीषा माँ दौड़ते भाई क्या हुआ बोल के। मैं बोला यार मनीषा मेरे को बिस्मिल्ला खां पुरस्कार मिल रहा है। तो फिर वो जो रिएक्शन

0: था ना उसको बयां करना बहुत
1: मुश्किल है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। आपने बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन भी किया है और कुछ क्षेत्रीय फिल्मों का सह निर्देशन भी किया है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी देंगे।
0: मैं सर जब थिएटर सीखना शुरू किया तो उस समय ही मैं मतलब ये सोच के चला था कि मुझे थिएटर के साथ साथ फिल्म भी करना है। तो पढ़ाई के दौरान ही मतलब फर्स्ट ईयर में ही मैं एक शॉर्ट फिल्म किया था द मिस्ट्री, जिसमें मुझे स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था। उसके बाद एक मेरी पगली फिल्म है, पगली है, क्वेश्चन है, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी सिलेक्ट हुई। तब वहां से ललक मतलब वहां से एक है कि नहीं यार अब मतलब थिएटर के साथ साथ फिल्म भी कुछ कर सकते हैं। तो फिर फिल्म के साथ भी जुड़ना शुरू किया। फिर उस समय उदय कृष्णा जी एक फिल्म कर रहे थे कुरुक्षेत्र, उसमें मैं सहायक निर्देशक रहा। उसके बाद झंझावे प्रदेश किया, मुरली किया, दंतेला किया, फिर दो उड़िया फिल्म भी किया। अभी मेरी खुद की दो मूवी की तैयारी चल रही है, उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग बतौर डायरेक्शन में मेरा है, मतलब मैं करने वाला हूँ।
1: अच्छा, आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं ना, और आपको जो ये पुरस्कार मिला है वो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मिला है? तो
0: हाँ, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन करता हूँ।
1: जी जी, तो अब आप यहाँ से अपना सफर कैसे देख रहे हैं आगे, आप बताएं।
0: जिम्मेदारी और बढ़ गई है, उम्मीद है लोगों को कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैं सर भी बोल रहे थे कि अब बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आगे लेकर अभी है 3-4 नाटक और है लिखना है, मतलब वो पेंडिंग है, उस पे काम करूंगा। बुक्स वगैरह छपाने की अभी तैयारी चल रही है, वो तीनों बुक है, जैसे अघनिया है, चैती है, एक छत्तीसगढ़ी कविता की संग्रह है। और फिल्म पे अभी तैयारी चल रही है, एक फिल्म है रियल स्टोरी बेस्ड है, अभी उस पे काम चल रहा है प्री प्रोडक्शन का, मतलब बहुत जल्द शूटिंग चालू हो जाएगी उस पे।
1: जाते जाते बस आपसे हम यही इल्तजा करेंगे कि नमस्कार रायपुर के हमारे जो श्रोता है उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि अभी की युवा जो है पढ़ना छोड़ दिए हैं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं नया सब्जेक्ट कहाँ से लेके आएंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं हमारे जितने भी श्रोता हैं सभी से यही सलाह देना चाहूंगा कि पढ़िए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप नया कॉन्सेप्ट कहाँ से लेकर आएंगे। नए कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे तब आप नया काम कर पाएंगे।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार रायपुर के आज के अंक में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।

कल्पना कीजिए कि कैसी जगह जहां आसमान छूते पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ मखमली हरियाली, रिश्ते बहते पानी और हवा इतनी शुद्ध कि सांस लेते ही रूह खुश हो जाए। रंग बिरंगे फूल पत्तियों से लदे हुए पशु पक्षियों के घर, कितना सुंदर दृश्य है ना दोस्तों। वाकई में ऐसी जगह पृथ्वी पर मौजूद है और उन जगहों को कहते हैं वर्षावन। वर्षावन यानी ऐसे वनों का समूह जो बरसात होने के लिए जरूरी होते हैं। यहाँ साल भर बारिश होते ही रहती है। वर्षा वनों को अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ये दुनिया के लगभग 50% से अधिक प्रजातियों का घर है। वर्षा वन वैश्विक जलवायु को स्थिर रखने और वर्षा चक्र को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि आज 22 जून को हम मना रहे हैं विश्व वर्षा वन दिवस, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के जलवायु संतुलन, ऑक्सीजन उत्पादन और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण इन वर्षा वनों के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और लोगों को वनों की कटाई रोकने के लिए प्रेरित करना है। इस दिवस की शुरुआत 2017 में रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप नामक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन द्वारा की गई थी। दोस्तों, पर्यावरण से जुड़े विषयों पर हम यूं ही दिवस मनाते रहते हैं। इसके पीछे का सिर्फ यही उद्देश्य है कि धरती की इस खूबसूरती को सहेज कर रखा जाए, अपने दिलों में धरती के प्रति प्यार को और बढ़ाया जाए, ताकि पेड़ पौधों के साथ हमारे दिलों में बचा रहे पर्यावरण के प्रति भी प्यार।

दोस्तों आज तारीख है 22 जून। आज का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में बेहद खास है, क्योंकि आज ऐसे कलाकार का जन्मदिन है जिनकी सिर्फ आवाज सुनकर थिएटर में बैठे दर्शकों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी, जिनकी दमदार कड़कती आवाज, बड़ी बड़ी आंखें और रौबिली शख्सियत से स्क्रीन पर विलेन की परिभाषा ही बदल जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक जिन्होंने खलनायक की भूमिका शानदार तरीके से निभाई।

द वन एंड ओनली अमरीश पुरी साहब की। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी यादें, उनके निभाए किरदार और उनके डायलॉग्स आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। साल 1953 में उन्होंने अपना पहला स्क्रीन टेस्ट दिया था, मगर सफल नहीं हो पाए और आखिरकार 40 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने अपने करियर में 400 से ज्यादा फिल्में की, चाहे त्रिदेव का भुजंग हो, गदर का अशरफ अली, दामनी का चालाक वकील चड्ढा या फिर करण अर्जुन का ठाकुर दुर्जन सिंह। हर रोल में, हर किरदार में उन्होंने जान फूंक दी। सिर्फ विलेन नहीं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के संस्कारी और कड़क बाबूजी को कोई कैसे भूल सकता है, जो फिल्म के आखिरी में कहते हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। किरदारों में किरदार जो अमर हो गया वो था फिल्म मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो। हॉलीवुड के महान डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने उन्हें फिल्म इंडियाना जोन्स में मोलाराम के किरदार के लिए चुना और कहा था कि अमरीश पुरी दुनिया के सबसे बेहतरीन विलन हैं। आज हम उन्हें भारतीय सिनेमा के एक हीरो के रूप में याद कर रहे हैं और उनकी कला को सलाम कर रहे हैं।

दोस्तों आज का सफर आपके संग कब बीत गया पता ही नहीं चला। तो अब आज के सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर से अपने रेडियो दोस्त दुर्गेश कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। 8 बजने को हैं। समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
2: INS विक्रांत

0: से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
0: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनैनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन

0: मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
1: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वही स्मॉल क्लाउड को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। दी ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: हम लिख के गया। ऐसे करते करते लेखक का दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था। वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
5: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
6: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल माहे कोंकण गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रांग मैरिटाइम केपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host 2-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड दीज रिमार्क्स आफ्टर कमिशनिंग 3 इंडिजिनसली बिल्ट इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म्स, INS दूनागिरी, INS संशोधक एंड INS अग्रय एट द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता यस्टरडे। Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying, and anti-submarine warfare.
3: जब समुद्री विरासत की बात होती है, तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से

0: सभी श्रोताओं को सादर अभिवादन। मित्रों, जिंदगी भी धूप छांव सी होती है। कभी ये हसीन रास्तों से गुजरती है तो कभी टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से, लेकिन सफर हर हाल में जारी रहता है। जीवन के यही रंग जब कागज पर उतरते हैं तो उनकी पहचान, उनका रंग आसानी से समझ में आ जाता है। इस तरह कलम से निकला एक एक शब्द जीवन आदर्श भी बनता है और जीवन को देखने का दृष्टिकोण भी देता है। आज की इस पत्रिका पल्लवी ने कुछ ऐसे ही पहलुओं को छुआ है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं डॉक्टर उमाकांत मिश्र की वार्ता जन जागरण में नाटकों की भूमिका।
1: जन जागरण में नाटकों की महत्वपूर्ण भूमिका प्राचीन काल से अभी तक आकलित की जाती है। नाटक समाज में जागरूकता, सामाजिक सुधार और क्रांति लाने का एक सबल और सर्वोत्तम माध्यम है। मनोरंजन के साथ साथ समकालीन समस्याओं, भ्रष्टाचार निवारण, मानवीय संवेदनाओं तथा मूल्यों की स्थापना में इसकी सराहनीय भूमिका रही है। साहित्य की अन्य विधाएं, कविता, उपन्यास, कहानी आदि, जहां पाठकों के समक्ष कल्पना द्वारा समाज के चित्र प्रस्तुत करते हैं, वहीं नाटक शब्दों, पात्रों की वेशभूषा, उनकी आकृति, भावभंगिमा, क्रियाओं के अनुकरण, अभिनय और प्रदर्शन द्वारा दर्शकों को समाज के यथार्थ जीवन के समीप ला देता है। इसलिए नाटक हमारे यथार्थ जीवन के अधिक निकट है। उसका मानवीय जीवन और समाज से बहुत निकट और घनिष्ठ संबंध माना जाता है। समाज

शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही वर्गों को जागृत करने में नाटक सक्षम है, क्योंकि शिक्षित वर्ग के लिए वह बोधगम्य होता है और रंगमंच पर अभिनीत होने के कारण प्रत्यक्ष और मूर्त होकर वह अशिक्षित वर्ग के लिए भी प्रभावशील बन जाता है। नाटक सर्वकला समन्वित विधा है। उसमें वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला सभी का समावेश हो जाता है। नाटक के संबंध में आचार्य भरत मुनि का यह कथन सर्वथा उपयुक्त है। न संयोगो न तत्कर्मम नाट्ये अस्मिन् जन्न दृश्यते सर्वशास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च। अर्थात न ऐसा योग है, न कर्म, न शास्त्र, न शिल्प अथवा कोई ऐसा कार्य जिसका नाटक में उपयोग न हो। दरअसल नाटक श्रव्य भी है और दृश्य भी। प्रत्यक्ष प्रस्तुति के कारण जन जागरण हेतु नाटक सर्वाधिक सशक्त और संप्रेषणीय माना जाता है। देश को आज़ाद करने हेतु चलाए गए विभिन्न आंदोलनों के साथ साथ समाज में स्थित विविध बुराइयां, सती प्रथा, नारी शोषण, छुआछूत, जाति प्रथा, अशिक्षा, नशापान आदि के प्रति जन जागरूकता लाने में नाटकों का उपयोग किया गया है तथा इसका अपेक्षित प्रभाव दर्शकों पर पड़ा है और समाज में क्रांति आई है। हिंदी नाटकों को वास्तविक प्रेरणा संस्कृत नाटकों से मिली है। भारतेंदु युग को हिंदी नाट्य साहित्य का प्रथम चरण माना जाता है। आम जनमानस में राष्ट्रीय चेतना भरने वाले युग पुरुष नाटककारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र का स्थान सर्वोपरि है। भारतेंदु ने नील देवी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी जैसे नाटकों का प्रणयन किया। नाट्य लेखन एवं अभिनय की दिशा में वे एक संस्था की भांति क्रियाशील रहे तथा जन जागरूकता लाने में अपूर्व भूमिका निभाते रहे। भारतेंदु नाट्य मंडली का गठन कर उन्होंने जन जागरूकता लाने के लिए स्वस्थ वातावरण बनाया। अल्पायु में दिवंगत हो जाने के कारण नाटक के क्षेत्र में उनके शेष कार्यों को पूर्ण करने, नाट्य विधा को गति और दिशा प्रदान करने में जयशंकर प्रसाद ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। महान और युगांतकारी साहित्यकार की भांति प्रसाद ने नाट्य के क्षेत्र में अतीत और भविष्य, भारतीय और पाश्चात्य मान्यताओं में समन्वय स्थापित कर अपने ऐतिहासिक नाटकों के मध्य महासेतु का कार्य किया। उन्होंने चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से राष्ट्रवादी नारी पात्र अलका द्वारा हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती का गायन कराकर तथा कार्नेलिया द्वारा अरुण यह मधुमय देश हमारा जहां पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा इस गीत के द्वारा जन जन में राष्ट्रीयता का अलख जगाया। ध्रुव स्वामी नाटक के द्वारा प्रसाद ने नारी जागरण का संदेश देकर जन जागरण में विशिष्ट भूमिका निभाई। इस दृष्टि से नायिका ध्रुव स्वामी का कथन ध्यान देने योग्य है। पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसमर्पण की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। प्रसाद के उपरांत नाटक को गतिशील बनाने और नया मोड़ देने में समस्या नाटक सिंदूर की होली लिखकर श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र ने तथा भौतिकवादिता पर प्रहार करने हेतु मोहन राकेश ने लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे जैसे रंगमंचीय नाटकों का सृजन किया। जन जागरण की दृष्टि से इनके अतिरिक्त
धर्म

0: कबीर भारती का गीत नाट्य अंधाजुग, शंकर शेष का नाटक एक और द्रोणाचार्य, छत्तीसगढ़ के नाटककार डॉक्टर खूबचंद बघेल का नाटक ऊंच नीच, हबीब तनवीर का चरण दास चोर आदि अनेकानेक उल्लेखनीय नाटक प्रमाणित होते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल प्रणीत ऊंच नीच, जाति प्रथा उन्मूलन, छुआछूत निवारण की दिशा में जन जागृति लाने में सफल सिद्ध हुआ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जन जागरण की दृष्टि से साहित्य की नाट्य विधा अधिक गरिमा मंडित और प्रभावशील प्रतीत होती है। रेडियो नाटक, जिसे ध्वनि नाटक भी कहा जाता है, जन जागृति लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रमाणित हो रहे हैं। समाज की परिवर्तनशीलता एवं आवश्यकतानुसार हिंदी के नाटककारों ने नाटक के स्वरूप, आकार आदि में पर्याप्त परिवर्तन किए। इस वैज्ञानिक युग में समयाभाव को ध्यान में रखकर नाटक का लघु रूप एकांकी में परिवर्तित हो गया। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी रीढ़ की हड्डी द्वारा नारी शिक्षा को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। लक्ष्मी नारायण मिश्र की एकांकी एक दिन द्वारा आज के युवाओं में वैवाहिक समस्या संबंधी चिंतन के प्रति दर्शकों को जागृत किया गया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि रंगमंच के माध्यम से दर्शकों के बीच आरंभ से अब तक जन जागरण लाने की दिशा में नाटक सर्वथा उपयुक्त और सफल विधा है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में भी समाज में घटने वाली घटनाओं और समस्याओं को प्रस्तुत कर तत्कालीन परिवेश को नाटकों द्वारा रूपायित किया गया है। ऐसे तो प्रत्येक युगीन साहित्य में तत्कालीन समाज की छाया रहना स्वाभाविक है, तथापि नाटक ही समग्र रूप में साहित्य की ऐसी विधा है जो समाज को पूर्ण रूप में प्रभावित करती है।
1: जन जागरण में नाटकों की भूमिका, ये वार्ता भी आपने सुनी। और लीजिए सुनिए जीवन मर्म को स्पर्श करती कवि सुशील यादव की कुछ कविताएं।
2: पेश है मेरी पहली गजल। अंदर उमंग है वही बाहर तलाश कर, अंदर उमंग है वही बाहर तलाश कर, कोई मसीहा भी हो पयंबर तलाश कर, जो खुद गुजार दी अंधेरे में जिंदगी, जो खुद गुजार दी अंधेरे में जिंदगी, तूफान से भी लड़ कहीं रहबर तलाश कर, तूफान से भी लड़ कहीं रहबर तलाश कर, अंदर उमंग है वही बाहर तलाश कर, इंसानियत की कब खुली खिड़की तेरे लिए, इंसानियत की कब खुली खिड़की तेरे लिए, इस जिंदगी के मोड़ पे तू घर तलाश कर, इस जिंदगी के मोड़ पे तू घर तलाश कर, अंदर उमंग है वही बाहर तलाश कर, कुछ लोग हैं बना लिए शीशों के घर यहाँ, गुस्सा अगर इसी से है, गुस्सा अगर इसी से है पत्थर तलाश कर, गुस्सा अगर इसी से है पत्थर तलाश कर, अंदर उमंग है वही बाहर तलाश कर। एक गजल आपको और सुना रहा हूं मैं। अंधेरे में दुआ करूं ऐ खुदा परछाई दे, अंधेरे में दुआ करूं ऐ खुदा परछाई दे, बेख्याली कहीं निकले वो नाम सुनाई दे, बेख्याली कहीं निकले वो नाम सुनाई दे, करवट ना बदलूं सपनों में ना गाफिल, करवट न बदलूं सपनों में न गाफिल, नींद से उठते ही तेरी याद जुम्हाई दे, अंधेरे में दुआ करूं ऐ खुदा पर छाई दे। ना कस्मों का कसीदा न हो वादों का भी ताना, ना कस्मों का कसीदा न हो वादों का भी ताना, यादों में तुझे बुनता रहूं इतनी तन्हाई दे, अंधेरे में दुआ करूं ऐ खुदा पर छाई दे। उजड़े गुलशन में ना टूटा सजर होवे, साथ तकदीर तेरी यूं रोज खुदाई दे, साथ तकदीर तेरी यूं रोज खुदाई दे। रिश्तों की अदालत बेजान हलफनामे, या मुझको जिंदा रख या मेरी रिहाई दे, अंधेरे में दुआ करूं ऐ खुदा परछाई दे, बेख्याली कहीं निकले।

गया, बात वो लंतरानी दे गया, रंग फिजा में आसमानी दे गया। शख्स जिसको जानती मैं थी कहाँ, मेरे बचपन की निशानी दे गया, मेरे बचपन की निशानी दे गया। डूबते

रजा हैसियत देखा जुबानी दे गया, हैसियत देखा जुबानी दे गया। और बंद कमरों में इजाजत मांग के, बंद कमरों में इजाजत मांग के शर्मसारा खानदानी दे गया, शर्मसारा खानदानी दे गया, रंग फिजा में आसमानी दे गया। एक गजल, हमारी सांस चल रही मगर कहीं हवा नहीं, हमारी सांस चल रही मगर कहीं हवा नहीं, मसाल बन के हम जले यही तुझे पता नहीं। किनारे आके हम रुके, किनारे आके हम रुके नदी के छोर पर डरे, किनारे आके हम रुके नदी के छोर पर डरे, अभी हमारे ख्वाब में कहीं तो पर लगा नहीं, अभी हमारे ख्वाब में कहीं तो पर लगा नहीं, हमारी सांस चल रही मगर कहीं हवा नहीं। हमारी बात और थी तुम्हारी बात और है, तुम्हीं ने कुछ कहा नहीं हमी ने कुछ सुना नहीं, तुम्हीं ने कुछ कहा नहीं हमी ने कुछ सुना नहीं, हमारी बात और थी तुम्हारी बात और है। और मेरे मुकाम आके बस, मेरे मुकाम आके बस वो मुझको आज मा चुके, मुझे तो राहतों कह कभी उठा दिया नहीं। हमारी सांस चल रही मगर कहीं हवा नहीं, हमारी सांस चल रही मगर कहीं हवा नहीं, मसाल बन के हम जले यही तुझे पता नहीं। वो हाथ में लिए बजा रहे जो बांसुरी अभी, वो हाथ में लिए बजा रहे जो बांसुरी अभी, ये धड़कनों की खैर है दिल ने कभी सुना नहीं, ये धड़कनों की खैर है दिल ने कभी सुना नहीं, दिल ने कभी सुना नहीं, दिल ने कभी सुना नहीं, हमारी सांस चल रही मगर कहीं हवा नहीं, मशाल बन के हम जले यही तुझे पता नहीं। मुझे मेरे ही हाल पर कभी तो छोड़ देखना, मुझे मेरे ही हाल पर कभी तो छोड़ देखना, कि जिंदगी को ठीक ठाक मैंने है जिया नहीं, मुझे मेरे ही हाल पर कभी तो छोड़ देखना, कि जिंदगी को ठीक ठाक मैंने है जिया नहीं। ये चादरें नसीब की लकीर हाथ है बिछी, ये चादरें नसीब की लकीर हाथ है बिछी, इसे करीब ध्यान से हमी ने कल बुना नहीं। ये चादरें नसीब की लकीर हाथ है बिछी, इसे करीब ध्यान से

0: कल बुना नहीं, भुला दे तू मुझे अगर है शौक ये तेरा कहीं, तेरे गुलाबी होंठ को मना किया छुआ नहीं, तेरे गुलाबी होंठ को मना किया छुआ नहीं, मना किया छुआ नहीं, हमारी सांस चल रही मगर कहीं हवा नहीं, मशाल बन के हम जले यही तुझे पता नहीं, यही तुझे पता नहीं, यही तुझे पता नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, के दिल अभी भरा नहीं, के दिल अभी भरा नहीं।
1: काव्य पाठ प्रस्तुत कर रहे थे कवि सुशील यादव। पल्लवी के अंतिम सोपान में आप सुनेंगे कहानी वट वृक्ष। कहानीकार हैं आशा झा।
2: प्रेरणा हॉस्पिटल में बेंच में बैठी सोच रही थी कि पता नहीं कितना समय लग जाएगा, अभी तक डॉक्टर का पता नहीं है, 9 बजने जा रहे हैं। तभी अचानक उसके कानों में आवाज़ सुनाई दी, प्रेरणा दी। उसका भाई रमेश, जिसके साथ वह हॉस्पिटल आई थी, उससे कह रहा था, देखो सामने वाली बेंच पर कौन बैठी है। प्रेरणा ने ध्यान से देखकर उसे पहचानने की कोशिश की, परंतु पहचान ना सकी। भाई कहने लगा, वह तुम्हारी बड़ी ननंद आरती है, विधवा हो जाने के कारण तुम उसे नहीं पहचान पा रही हो। इससे पहले कि प्रेरणा अपने भाई से कुछ कह पाती, वह सफ़ेद साड़ी वाली स्त्री उसके पास आकर भौजी भौजी कहती हुई लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु प्रेरणा की आंखें भाव शून्य थी। मानवता के नाते उसने यह सब कैसे हो गया आरती, कहते हुए अपने से अलग किया। आंसू पोंछते हुए सिसक सिसक कर ननंद अपनी रामकथा कहने लगी, भौजी अब वहाँ सब कुछ बदल गया है, 5 भाइयों की अकेली बहन होते हुए भी मुझे मायके का सुख नहीं मिलता। इससे पहले कि प्रेरणा आरती से ससुराल के बारे में कुछ और पूछ पाती, कानों में आवाज़ सुनाई दी, टोकन नंबर 18, और वह उठ खड़ी हुई। डॉक्टर के केबिन से बाहर आते ही वह जल्दी से बाहर जाने लगी। तभी उसे ध्यान आया कि उसकी ननंद पीछे बेंच पर बैठी है। वह वापस आ गई, उसने अपना पर्स खोलकर देखा, उसमें 300 रुपए थे। उसे अपनी ननंद के हाथों में रखते हुए कहने लगी, धीरज रखो, समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है, पैसों से बच्चों के लिए कुछ ले लेना, अभी मैं चलती हूँ, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, कहती हुई वह तेजी से बाहर निकल गई। भाई उसे लेकर घर आ गया। वह अपने कमरे में जाकर पलंग पर औंधे मुँह लेट गई। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, गला भर आया था। वह सोच रही थी, यदि उसके ससुराल वाले उस समय उसके साथ सही व्यवहार करते तो आज वह अपनी विधवा ननंद से मिलकर फूट फूट कर रोती। प्रेरणा आंखें बंद किए हुए अपनी पुरानी स्मृतियों में विचरने लगी। उसे अच्छी तरह याद है, वह मात्र 18 वर्ष की थी जब उसका विवाह तय हुआ था। प्रेरणा नई नवेली दुल्हन बनकर ससुराल जा पहुंची। शादी के कुछ महीने पलक झपकते गुजर गए। प्रेरणा अविनाश के साथ शहर में संस्था की ओर से आवंटित मकान में रहने आ गई। शिवरात्रि के दिन वह बहुत खुश थी। कुछ समय पहले ही डॉक्टर के यहाँ से अपनी रिपोर्ट लेकर आई थी, जिसमें उसके प्रेग्नेंट होने की पुष्टि की गई थी। वह बेसब्री से तैयार होकर शाम के समय अविनाश का इंतजार करने लगी। अविनाश के आते ही वह उससे लिपट गई। अविनाश कहने लगा, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। प्रेरणा ने डॉक्टर की रिपोर्ट अविनाश को दिखा दी। बात समझते ही अविनाश ने उसे लपेटते हुए उसके माथे को दोबारा चूम लिया और कहने लगा, आज मैं भी बहुत खुश हूँ, चलो शंकर जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करेंगे, उसके बाद होटल में खाना खाने चलेंगे, आज तुम्हारी रसोई के काम से छुट्टी। परंतु इन दिनों प्रेरणा को अविनाश के स्वास्थ्य के संबंध में चिंता होने लगी। अविनाश का खांसते खांसते दम फूल जाता था। पहले तो प्रेरणा ने उसे साधारण खांसी सर्दी समझा, परंतु आज सुबह खांसते खांसते अविनाश के मुंह से खून निकलता देखकर प्रेरणा के होश उड़ गए। सभी जिद करके अविनाश को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बड़े भाइयों से कहा, मैं तो आप लोगों को शादी से पहले ही बता चुका था कि अविनाश को क्या बीमारी है, लापरवाही करने के कारण रोग अंतिम अवस्था में पहुंच गया है। डॉक्टर की बातें प्रेरणा के कानों में भी पड़ी। उसने अस्पताल में कुछ नहीं कहा, परंतु घर आते ही रोने लगी। सास उसे डांटते हुए कहने लगी, रो रो कर अपशकुन मत करो, बीमार आदमी की सेवा करोगी या इस तरह से रो रो कर उसका मनोबल और गिराओगी, चलो उठो, तुम्हें अब अविनाश के साथ साथ अपने होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना है। प्रेरणा अपने पति को तिल तिल मरते हुए देख रही थी। गर्भवती होने की खुशी पूर्ण रूप से गायब हो चुकी थी। जिस समय उसे आराम मिलना चाहिए था, तनाव रहित रहना चाहिए था, उस समय वह अपने पति की दिन रात सेवा कर रही थी। अचानक अविनाश के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़कर उसके पास जा पहुंची। वह खांसता जा रहा था, उसके मुंह से खून के छोटे छोटे लोथड़े निकलते जा रहे थे। वह देवर को

आवाज़ देने लगी। दोनों देवर अविनाश को अस्पताल लेकर चले गए। प्रेरणा को घर में रहने के लिए कहा गया, पर इस बार उसने उनकी बात नहीं मानी। पता नहीं क्यों आज उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जीत करके अविनाश के साथ हॉस्पिटल चली गई, पर उसे साथ लेकर वापस नहीं आ सकी। अविनाश की मृत्यु से वह बहुत अधिक दुखी व तनावग्रस्त रहने के कारण बहुत कमजोर हो गई। रात में प्रेरणा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। सबने सोचा शायद अविनाश पुनः बेटे के रूप में दुनिया में आ जाए, परंतु दुर्भाग्य ने यहाँ भी प्रेरणा का पीछा नहीं छोड़ा। उसे मृत बच्चा पैदा हुआ। प्रेरणा बदहवास सी हो गई। मेहमानों के जाने के बाद ससुराल वालों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। घर के बड़े बुजुर्ग अविनाश की जगह अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में बातें करने लगे। उस रात प्रेरणा की सास प्रेरणा के कमरे में आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, बेटा जो होना था सो हो गया, होने को कौन टाल सकता है। जिस तरह मैंने अपनी छाती पर पत्थर रख लिया है, तू भी रख ले। तेरे चाचा अविनाश की जगह तुझे नौकरी दिलाने की बात कर रहे थे, परंतु मैंने उन्हें साफ मना कर दिया कि मेरी बहू कहीं नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाएगी। वह मेरी बेटी की तरह घर पर रहेगी और उसका सब पर अधिकार होगा। सास की बातें सुनकर उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। सास ने अपना जाल फैलाना शुरू किया। प्रेरणा का सर अपनी जांघों पर रखकर सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, बेटी मैंने ठीक कहा ना, तू भी साफ मना कर देना और संस्था को लिख कर दे देना कि मैं स्वेच्छा से नौकरी नहीं करना चाहती, मेरी जगह पर मेरे देवर को नौकरी दे दी जाए। प्रेरणा तब तक झूठी ममता के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। उसने धीरे से कहा, माँ तुम जैसा कहोगी मैं वैसा लिख कर दे दूंगी। प्रेरणा को गमगीन होते देखकर सास कहने लगी, ऐसा क्यों कहती हो बेटी, हम तुझे अपने घर की रानी बनाकर रखेंगे, तू चाहे तो अपने देवर से शादी कर अपना घर दोबारा बसा सकती है। सास की इस बात पर प्रेरणा नाराज होते हुए तेज आवाज में रोते हुए अपनी सास से कहने लगी, आप लोग जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, परंतु देवर के साथ विवाह करने की बात दोबारा कभी मत करिएगा। सास ने प्रेरणा से बात बिगड़ते देखकर कहने लगी, कोई बात नहीं बेटी, जैसी तेरी मर्जी, मैं तो तेरे भले के लिए ही ऐसा कह रही थी। कहती हुई कमरे से बाहर चली गई। प्रेरणा ने अपने ससुराल वालों की इच्छा से अपने भाई को अवगत कराया। बात समझ में आते ही प्रेरणा के भाई और चाचा नाराज हो उठे। कहने लगे, अविनाश का काम अभी पूरा नहीं हुआ और ये लोग नौकरी और पैसे रुपए की बात करने लगे। लालची ससुराल वालों के बीच प्रेरणा को छोड़ना ठीक नहीं है। ये लोग उससे आवश्यक कागजातों पर दस्तखत कराकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेंगे। प्रेरणा के चाचा जी प्रेरणा की सास के पास जाकर कहने लगे, समधन जी प्रेरणा के ऊपर दुख का पहाड़ टूट चुका है, वह अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। हम उसे मायके ले जाना चाहते हैं, संभल जाएगी तो हम उसे आपके पास पहुंचा देंगे, फिर आप जो भी निर्णय लेंगे वह मान्य होगा। सास भी यह सोचकर कि अभी घाव ताजा है, जिद करने पर बात बिगड़ सकती है और फिर प्रेरणा के मायके वालों के रहते हुए उसके साथ जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती है, इसलिए अभी प्रेरणा को मायके वालों के साथ भेज देना ही उचित होगा। प्रेरणा जब अकेली वापस आएगी तब उससे मन चाहे कागज पर दस्तखत करवा लेंगे। प्रेरणा को मायके जाने की सास ने इजाज़त दे दी। मायके में सभी उसे अपने अपने तरीके से समझाने लगे कि प्रेरणा को अपने पति की जगह मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति लेकर नौकरी करनी चाहिए, अन्यथा वह भविष्य में बहुत अधिक पछताएगी। यदि वह भावुक होकर नौकरी अपने देवर को देती है तो कुछ दिनों के बाद ही ससुराल में उसकी दुर्गति हो जाएगी। परंतु प्रेरणा स्वयं भावुक व सीधी होने तथा खुद पर आत्मविश्वास की कमी होने के कारण नौकरी नहीं करना चाहती थी। चाचा जी ने बड़े प्यार से प्रेरणा को वास्तविकता का एहसास कराकर कि पैसे के बिना माता पिता भाई बहन कोई भी रिश्तेदार तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तथा ससुराल वाले भी कुछ दिन में अपने असली रंग में तुम्हारे सामने आ जाएंगे, उस वक्त तुम्हारे पास पछताकर हाथ मलने के सिवाय और कोई उपाय शेष नहीं रहेगा, इस कारण नौकरी कुछ समय के लिए ज्वाइन कर लो, उसके बाद यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम नहीं कर पा रही हो तब मत करना, स्वेच्छा से अपने देवर को दे देना। अंततः चाचा जी ने प्रेरणा को नौकरी करने के लिए राजी कर लिया। ससुराल वालों ने सुना तो गुस्से में आग बबूला हो उठे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में प्रेरणा को चेतावनी दे डाली कि यदि वह देवर को नौकरी न देकर स्वयं नौकरी करती है तो ससुराल वालों से उसका कोई संबंध नहीं रह जाएगा। प्रेरणा को उसके मायके वालों विशेषकर बड़े चाचा और छोटे भाई ने विश्वास दिलाया कि कोई भी परेशानी आने पर वह हमेशा उसके साथ रहेंगे। शुरू शुरू में घबराकर नौकरी छोड़ने की ठान लेती, परंतु धीरे धीरे गिरते उठते आखिर वह संभल गई। अब वह जीवन के सारे दांव पे समझ चुकी थी। प्रेरणा अपने चाचा जी को स्वर्गवासी पिता से भी बढ़कर मानती थी। घर के लोग दूसरी शादी के लिए जिद करते, पर प्रेरणा सोचने लगती यदि उसने दूसरी शादी कर ली और उसके भाग में वैवाहिक सुख नहीं लिखा हो तब क्या होगा, अभी तो वह अकेली है, दूसरी शादी से बच्चों की जिम्मेदारी भी उसके सिर पर आ जाएगी, तब वह क्या करेगी। विचारों के चक्रव्यूह में फंसने के कारण तनाव चरम सीमा पर होने से शुगर ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों ने उसके शरीर में घर कर लिया। वह रोज सुबह टहलने जाती थी, तालाब के किनारे मजबूती से खड़ा हुआ अपनी लंबी लंबी मजबूत शाखों को फैलाए हुए वटवृक्ष प्रेरणा को हमेशा
आकर्षित करता था। अक्सर वह सोचने लगती, यह वट वृक्ष अपने ही बल पर कितनी मजबूती से

है, दूसरों का सहारा ना लेकर स्वयं दूसरों को सहारा देता है। कितने ही व्यक्ति गर्मी व बरसात में इसके नीचे पनाह पाते हैं। इंसान को भी वट वृक्ष की तरह होना चाहिए, स्वयं को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वह दूसरों का सहारा बने, ना कि हमेशा दूसरों से सहारे की अपेक्षा करता रहे। बस फिर क्या था, उसने उसी दिन से उस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। शादी ना करने का फैसला अपने चाचा जी को निडर होकर सुना दिया। सभी को उसकी जीत के आगे झुकना पड़ा। सबसे छोटा भाई छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था, उसकी तनख्वाह में उसे परिवार चलाना मुश्किल हो जाता था। उसने प्रेरणा की परेशानी में तन मन धन से उसका साथ दिया था। प्रेरणा ने उस भाई के साथ रहना स्वीकार किया। अपने नाम से मकान बनवाकर भाई भाभी व उनके बच्चों के साथ सुख से रहने लगी। समय के साथ त्याग, सेवा, प्रेम आदि गुण रूपी शाखाओं को बढ़ाती चली गई। अपने मायके वालों के लिए वह एक तरह से वट वृक्ष बन गई, जिसकी छत्र छाया सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण थी। प्रेरणा की नौकरी ज्वाइन करने के बाद न ससुराल वाले कभी उससे मुलाकात करने आए और ना ही प्रेरणा उनसे मुलाकात करने गई। परंतु आज हॉस्पिटल में अचानक विधवा ननद से मुलाकात हो जाने पर ससुराल से कट जाने

0: अपने चाचा जी को निडर होकर सुना दिया। सभी को उसकी जीत के आगे झुकना पड़ा। सबसे छोटा भाई छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह में उसे परिवार चलाना मुश्किल हो जाता था। उसने प्रेरणा की परेशानी में तन मन धन से उसका साथ दिया था। प्रेरणा ने उस भाई के साथ रहना स्वीकार किया। अपने नाम से मकान बनवाकर भाई भाभी व उनके बच्चों के साथ सुख से रहने लगी। समय के साथ त्याग, सेवा, प्रेम आदि गुण रूपी शाखाओं को बढ़ाती चली गई। अपने मायके वालों के लिए वह एक तरह से वट वृक्ष बन गई, जिसकी छत्र छाया सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण थी। प्रेरणा की नौकरी ज्वाइन करने के बाद न ससुराल वाले कभी उससे मुलाकात करने आए और न ही प्रेरणा उनसे मुलाकात करने गई। परंतु आज हॉस्पिटल में अचानक विधवा ननद से मुलाकात हो जाने पर ससुराल से कट जाने का दुख, जो आज नासूर बन चुका था, फिर से रिसने लगा। पुरानी यादें ताज़ा हो गई थीं। उसे लग रहा था मानो मन के घावों पर किसी ने कुल्हाड़ी चला दी हो। उसे लग रहा था कि यदि ससुराल वालों ने उसका निष्कासन न किया होता तो आज वह उन लोगों के लिए भी वट वृक्ष साबित होकर पूर्णतः संतुष्ट होती। बड़प्पन का एहसास होते ही वह पलंग से उठ गई और छोटी भाभी को आवाज़ देते हुए कहने लगी, भाभी खाना लगा दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। क्योंकि उसे अपनी शाखाओं को और अधिक मजबूत करना था और किसी न किसी रूप में ज़रूरतमंदों की सहायता कर बड़प्पन का परिचय देकर वह अपने असंतुष्ट करने वाले जीवन से संतुष्ट होती रहे।
1: वटवृक्ष, इस कहानी का पाठ कर रही थी आशा झा। और अब पल्लवी के इस अंक से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: साहित्य पत्रिका कार्यक्रम पल्लवी अभी आप सुन रहे थे। संपादक थे प्रकाश उदय। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम विज्ञान लोक। चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का योगदान और नए आयाम विषय पर सुनिए डॉक्टर केशव कांत साहू द्वारा दी गई जानकारी।

जैव प्रौद्योगिकी आधारित संसाधनों ने नई चिकित्सा पद्धतियों और उपचारों के विकास में लगने वाले समय को लगभग 60% तक कम कर दिया है। जहां पहले नई चिकित्सा तकनीक या दवा को विकसित करने में लगभग 10 वर्ष लगते थे, अभी यह कार्य लगभग 4 वर्षों में संभव हो रहा है। इस प्रौद्योगिकी ने रोगों के निदान को अत्यधिक सटीक, संवेदनशील तथा तीव्र बना दिया है। पारंपरिक निदान विधियों की तुलना में आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी तकनीकें रोगों के प्रारंभिक अवस्था में पहचान करने में सक्षम हैं। PCR, रियल टाइम PCR, DNA सीक्वेंसिंग तथा नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग विभिन्न संक्रामक एवं अनुवांशिक रोगों के निदान में किया जाता है। COVID-19 महामारी के दौरान PCR तकनीक ने वायरस की शीघ्र पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार क्षय रोग, हिपेटाइटिस, HIV, एड्स तथा अनुवांशिक विकारों के निदान में भी आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। प्रारंभिक निदान से रोगों का प्रभावी उपचार संभव हो पाता है तथा मृत्यु दर में कमी आती है। इसी प्रकार लिक्विड बायोप्सी जैसी गैर आक्रामक निदान तकनीकों ने कैंसर का प्रारंभिक चरण में पता लगाना संभव बनाया है। इन तकनीकों के कारण रोगों का बेहतर प्रबंधन और रोगियों के जीवन स्तर में सुधार संभव हुआ है। हालांकि इस उन्नत उपचारों के उच्च लागत और सीमित उपलब्धता अभी भी एक बड़ी चुनौती है, विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए। आधुनिक त्वरित निदान किट, जिसे हम रैपिड डायग्नोस्टिक किट भी कहते हैं, से संक्रामक रोगों की पहचान कुछ ही मिनटों में कर पाना संभव हो सका है। इससे चिकित्सकों को त्वरित निर्णय लेने और उचित उपचार प्रारंभ करने में सहायता मिलती है। बायोमार्कर और बायोसेंसर आधारित तकनीकों ने निदान प्रणाली को और अधिक प्रभावित बनाया है। पोर्टेबल बायोसेंसर की सहायता से दूरस्थ क्षेत्रों में भी रोगों की पहचान की जा सकती है। इससे रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने और समय पर प्रचार उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है। हालांकि इन तकनीकों की सटीकता और विश्वसनीयता को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर अनुसंधान जारी है, ताकि रोग निदान को अधिक प्रभावी और भरोसेमंद बनाया जा सके। औषधि के विकास में

जैव प्रौद्योगिकी ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। ये जैव औषधियाँ ऐसी दवाएं हैं जिन्हें जीवित कोशिकाओं या जैविक प्रणालियों की सहायता से तैयार किए जाते हैं। इनमें इंसुलिन, एरिथ्रोपोएटिन, इंटरफेरॉन, वैक्सीन तथा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रमुख हैं। पहले मधुमेह के रोगियों के लिए इंसुलिन पशुओं के अग्नाशय से प्राप्त किए जाता था, जबकि वर्तमान में अनुवांशिक रूप से परिवर्तित सूक्ष्म जीवों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाला मानव इंसुलिन तैयार किया जाता है। ये जैव औषधियाँ अधिक प्रभावी, सुरक्षित तथा कम दुष्प्रभाव वाली होती हैं। कैंसर, स्वप्रतिरक्षित रोगों तथा दुर्लभ अनुवांशिक रोगों के उपचार में उनका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। आधुनिक जैव औषधियाँ वायरस सदृश कणों तथा mRNA तकनीक जैसी उन्नत प्रणालियों के माध्यम से विकसित की जा रही हैं। इन तकनीकों के कारण अधिक सुरक्षित, प्रभावी और लक्षित दवाओं का विकास संभव हो पाया है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की आधारभूत तकनीक है। इसमें विभिन्न जीवों के DNA को कृत्रिम रूप से जोड़कर ऐसे जीवों का निर्माण किया जाता है जो वांछित प्रोटीन या जैविक उत्पाद उत्पन्न कर सकें। इस तकनीक के माध्यम से मानव इंसुलिन, वृद्धि हार्मोन, इंटरफेरॉन तथा रक्त के थक्के बनाने वाले कारकों का उत्पादन किया जाता है। यह तकनीक चिकित्सा क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बड़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले जैविक उत्पादों का उत्पादन संभव हुआ है। साथ ही इससे संक्रमण और एलर्जी की संभावनाएं भी कम हुई है। इसी तारतम्य में जीन थेरेपी, जिसे हम जीन चिकित्सा भी कहते हैं, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का एक अत्यंत उन्नत तकनीक है, जिसमें रोग उत्पन्न करने वाले दोषपूर्ण जीनों को सुधारने, प्रतिस्थापित करने या निष्क्रिय करने का प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य रोग के मूल अनुवांशिक कारणों को समाप्त करना है। क्रिस्पर कैस 9 तकनीक जीन संपादन की सबसे प्रभावशाली तकनीकों में से एक है। यह DNA के विशिष्ट भागों में सटीक परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। वर्तमान में इसका उपयोग सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया तथा कुछ और भी प्रकार के कैंसरों के उपचार में किया जा रहा है। भविष्य में यह तकनीक अनेक अनुवांशिक रोगों के स्थायी उपचार का साधन बन सकती है। इसके अतिरिक्त Cas12 बेस एडिटिंग तथा प्राइम एडिटिंग जैसी नई तकनीकें DNA में अत्यंत सटीक परिवर्तन करने की क्षमता रखती हैं। इन तकनीकों का उपयोग वंशानुगत अनुवांशिक रोगों, कैंसर, हृदय रोगों तथा दुर्लभ अनुवांशिक रोगों के उपचार में किया जा रहा है। भविष्य में इनकी सहायता से अनेक अनुवांशिक रोगों का स्थायी उपचार कर पाना संभव हो सकता है। इसी सिलसिले में ऊतक अभियांत्रिकी, जिसे हम टिश्यू इंजीनियरिंग भी कहते हैं, इसमें हम कोशिकाओं, जैव सामग्रियों तथा वृद्धि कारकों का उपयोग करके कृत्रिम ऊतकों और अंगों का निर्माण करते हैं। इसका उद्देश्य क्षतिग्रस्त ऊतकों का पुनर्निर्माण तथा अंगों की कार्यक्षमता को पुनः स्थापित करना है। वर्तमान में कृत्रिम त्वचा, हड्डी, उपास्थि तथा रक्त वाहिकाओं का विकास किया जा रहा है। भविष्य में प्रयोगशाला में विकसित अंग ही अंग प्रत्यारोपण की समस्या का समाधान प्रदान कर सकते हैं। रीजनरेटिव मेडिसिन स्टेम कोशिकाओं एवं जैव अभियांत्रिक ऊतकों की सहायता से शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित है। सेल थेरेपी आधुनिक कोशिका चिकित्सा का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस तकनीक में रोगी की प्रतिरक्षा कोशिकाओं को अनुवांशिक रूप से संशोधित करके कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने में योग्य बनाया जाता है। वर्तमान में इसका उपयोग ल्यूकेमिया, लिम्फोमा तथा मल्टीपल मायलोमा के उपचार में किया जा रहा है। भविष्य में यह तकनीक स्वप्रतिरक्षित रोगों तथा अन्य जटिल बीमारियों के उपचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। स्टेम कोशिकाएं ऐसी अविभेदित कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता रखती हैं। स्टेम सेल चिकित्सा का उपयोग क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों के पुनर्निर्माण में किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग रीढ़ की हड्डी की चोट, पार्किंसन रोग, मधुमेह, हृदय रोग तथा रक्त विकारों के उपचार में किया जा रहा है। वैक्सीन संक्रामक रोगों की रोकथाम का सबसे प्रभावी साधन है। जैव प्रौद्योगिकी के विकास ने वैक्सीन निर्माण को अधिक सुरक्षित, तेज और प्रभावी बनाया है। वर्तमान में पुनर्संयोजित वैक्सीन, DNA वैक्सीन तथा mRNA वैक्सीनों का उपयोग किया जा रहा है। COVID-19 महामारी के दौरान विकसित mRNA वैक्सीन जैव प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इन वैक्सीनों ने वैश्विक

स्तर पर लाखों लोगों के जीवन की रक्षा की तथा महामारी नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खाद्य वैक्सीन जैव प्रौद्योगिकी की एक नवीन और उभरती हुई तकनीक है, जिसमें अनुवांशिक रूप से परिवर्तित पौधों या खाद्य पदार्थों का उपयोग वैक्सीन उत्पादन के लिए किया जाता है। इन पौधों में रोगजनकों के विशिष्ट प्रतिजन उत्पन्न करने वाले जीन को प्रविष्ट कर दिए जाते हैं। जब इन खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होकर संबंधित रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा विकसित कर लेती है। इसी प्रकार बिना इंजेक्शन के वैक्सीन प्रदान करना संभव हो पाता है। खाद्य वैक्सीन की अवधारणा सबसे पहले 1990 के दशक में विकसित हुई थी और आलू, केला, टमाटर तथा चावल में हेपेटाइटिस बी और हेजा के प्रतिजनों को व्यक्त करने के सफल प्रयोग पहले ही किए जा चुके हैं। वर्तमान में mRNA तकनीक का उपयोग केवल संक्रामक रोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि कैंसर प्रतिरक्षा चिकित्सा, चयापचय संबंधी विकारों तथा व्यक्तिगत चिकित्सा के विकास में भी किया जा रहा है। mRNA आधारित उपचारों की प्रमुख विशेषता यह है कि इन्हें अपेक्षाकृत कम समय में विकसित किया जा सकता है। ये अत्यधिक विशिष्ट होती हैं तथा विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में भी अनुकूलित की जा सकती हैं। mRNA वैक्सीनों की सफलता के बाद RNA आधारित उत्पादों में तीव्र गति से विकास हो रहा है। सर्कुलर RNA पारंपरिक mRNA की तुलना में अधिक स्थिर होती हैं और लंबे समय तक प्रोटीन उत्पादन कर सकती हैं। इसी प्रकार RNAi तकनीक विशिष्ट रोग कारक जीनों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके रोगों के उपचार में सहायता करती हैं। इन तकनीकों का उपयोग कैंसर, दुर्लभ अनुवांशिक रोगों, तंत्रिका अपक्षय रोगों तथा चयापचय संबंधी विकारों के उपचार में किया जा रहा है। भविष्य में RNA आधारित चिकित्सा व्यक्तिगत उपचार का महत्वपूर्ण आधार बन सकती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऐसी विशिष्ट प्रतिरक्षी होती हैं जो किसी विशेष रोगजनक या कैंसर कोशिका को पहचान कर उस पर आक्रमण करती हैं। इनका उपयोग कैंसर, आर्थराइटिस, क्रोहन रोग तथा विभिन्न स्वप्रतिरक्षित रोगों के उपचार में किया जाता है। टारगेटेड थेरेपी की विशेषता यह होती है कि यह केवल रोगग्रस्त कोशिकाओं पर ही प्रभाव डालती है और स्वस्थ कोशिकाओं को न्यूनतम क्षति पहुंचाती है। इससे उपचार अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनता है। आज के समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस औषधि अनुसंधान एवं विकास की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल रही है। मशीन लर्निंग आधारित प्रणालियां लाखों रासायनिक यौगिकों का विश्लेषण करके संभावित दवा की पहचान कर सकती हैं। इससे वैज्ञानिक रोगों के आणविक तंत्र को बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं तथा नई दवाओं के विकास की प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बना रहे हैं। जनरेटिव AI तकनीकें नए प्रोटीनों की संरचना डिजाइन करने, दवा अणुओं का निर्माण करने तथा जैविक प्रणालियों का आभासी अनुकरण या सिमुलेशन करने में सक्षम हैं। एल्फा फोल्ड जैसी उन्नत AI तकनीकों ने प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। इससे वैज्ञानिकों को प्रयोगशाला में ही कार्य प्रारंभ करने से पहले ही संभावित परिणामों का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। जैव प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति ने ऐसे वास्तविक समय या रियल टाइम निगरानी तंत्र विकसित किए हैं जो AI और डेटा विश्लेषण का उपयोग करके रोग प्रकोपों का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। WHO जैसी संस्थाएं वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए इन तकनीकों का अपने कार्यों में सम्मिलित कर रही हैं। AI आधारित एल्गोरिथम विशाल स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण करके ऐसे पैटर्नों की पहचान करते हैं जो किसी संभावित स्वास्थ्य संकट का संकेत दे सकते हैं। यह पूर्वानुमान क्षमता वैश्विक स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों के एकीकरण पर भी निर्भर करती है, जिससे विभिन्न देशों और सीमाओं के पार रोगों के प्रसार की प्रवृत्तियों को समझा जा सकता है तथा समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सकता है। डिजिटल स्वास्थ्य तकनीकें रोग नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, स्मार्ट वॉच और अन्य पहनने योग्य उपकरण स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की निरंतर निगरानी कर सकते हैं। ऐसे रोगियों और चिकित्सकों को स्वास्थ्य की स्थिति का वास्तविक समय में आकलन करने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही मल्टी ओमिक्स दृष्टिकोण आधुनिक जैव सूचना विज्ञान या बायो इन्फॉर्मेटिक्स का

महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है, जिसमें जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स तथा मेटाबोलोमिक्स से प्राप्त आंकड़ों को एकीकृत करके रोगों की जटिल जैविक प्रक्रियाओं को समझा जाता है। यह तकनीक प्रारंभिक रोग निदान, व्यक्तिगत उपचार योजनाओं तथा नव जैव चिन्हकों की पहचान में सहायता करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण शाखा जिसे हम फार्मेकोजिनोमिक्स कहते हैं, जो फार्मेकोलॉजी और जीनोमिक्स का संयोजन है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि किसी व्यक्ति की अनुवांशिक संरचना दवाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है। इस ज्ञान के आधार पर रोगियों के लिए उपयुक्त दवा और उसकी सही मात्रा निर्धारित की जाती है, जिससे उपचार की प्रभावशीलता बढ़ती है तथा दुष्प्रभाव कम होते हैं। इसके साथ ही साथ 3D बायोप्रिंटिंग एक अत्याधुनिक तकनीक है, जिसमें जीवित कोशिकाओं, वृद्धि कारकों तथा जैव सामग्रियों को परत दर परत व्यवस्थित करके ऊतक जैसी संरचनाएँ बनाई जाती हैं। इस प्रक्रिया में पहले कंप्यूटर सहायक डिजाइन द्वारा लक्ष्य ऊतक का त्रिआयामी मॉडल तैयार किया जाता है। इसके बाद जीवित कोशिकाओं और जैव संगत हाइड्रोजेल से बायो इंक तैयार की जाती है, जिसे विशेष बायो प्रिंटर द्वारा प्रिंट किया जाता है। वर्तमान में 3D बायो प्रिंटिंग का उपयोग दवा परीक्षण, रोग मॉडलिंग, कृत्रिम त्वचा उपास्थि एवं अस्थि निर्माण में किया जा रहा है। भविष्य में कार्यात्मक मानव अंगों की प्रिंटिंग, व्यक्तिगत प्रत्यारोपण तथा सटीक चिकित्सा के क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

0: विज्ञान लोक इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का योगदान और नए आयाम विषय पर डॉक्टर केशवकांत साहू द्वारा दी गई जानकारी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं, हाजिर हैं हम चित्रपट संगीत के संग। संगम फिल्म के गाने से शुरुआत कर रहे हैं। आवाजें लता मंगेशकर, मुकेश और महेंद्र कपूर की, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: हर दिल जो प्यार करेगा वो गा

0: पत्थर के सनम इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
2: चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी के रायपुर और सराईपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में लीजिए सुनिए आदमी और इंसान फिल्म का गीत। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: संदेश के पहले जो गीत आप सुन रहे थे वो था फिल्म गोरा और काला का, आवाज थी मोहम्मद रफी की, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। अब सुनिए लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी की रचना, संगीत SD बर्मन का, और फिल्म का नाम है

चित्रपट संगीत में फिलहाल इतना ही। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 होने को हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। कलाकार हैं सलीम इकबाल। पहले सुनिए मेला राम वफा की रचना सलीम इकबाल की आवाज़।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में

0: डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: सुगम संगीत में लीजिए सुनिए नानक देव की रचना सलीम इकबाल की आवाज।

सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे सलीम इकबाल। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 10 बजे। फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ सुनिएगा सुबह 11:05 पर। प्रस्तुत करता हूंगी तारकेश्वरी आसुदानी।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आज मुख्यमंत्री रायपुर से करेंगे शुभारंभ। बस्तर संभाग में कभी नक्सलियों का गढ़ रहे इलाकों में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए सामूहिक योग अभ्यास। और राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ से सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में प्रदेश के 1000 विशिष्ट जन विशेष ट्रेन से गुजरात स्थित सोमनाथ धाम जाएंगे। यात्रा का शुभारंभ आज सुबह करीब 11 रायपुर रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस यात्रा में कलाकार, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। यात्रा का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव से जोड़ना है। प्रतिभागी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और परंपराओं का भी प्रदर्शन करेंगे। दंतेवाड़ा जिले में ढोलकल ट्रैकिंग रूट का लोकार्पण किया गया। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने इस ट्रैकिंग रूट का शुभारंभ किया। जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत करीब 61 लाख रुपए की लागत से इसे विकसित किया गया है। इस रूट के शुरू होने से क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इससे दंतेवाड़ा की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कभी नक्सलियों का गढ़ रही करेगुट्टा पहाड़ी पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने सामूहिक योग अभ्यास किया। ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से मशहूर ये 5000 फीट ऊंची पहाड़ी कभी कुख्यात माओवादियों का सबसे सुरक्षित गढ़ हुआ करती थी। पिछले वर्ष अप्रैल मई माह में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऐतिहासिक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में नक्सलियों के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया गया था। कई दिनों तक चले इस अभियान में भारी मात्रा में यहां से हथियार और 450 से ज्यादा IED बरामद किए गए थे। इस दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्र में स्थित सुरक्षा शिविर में कल योग सत्र आयोजित किया गया। राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यपाल रमन डेका करेंगे। छत्तीसगढ़ स्क्वैश एसोसिएशन द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता 27 जून तक चलेगी। इसमें देश के 21 राज्यों के 349 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं प्रदेश के

50 खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा एक पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ के 127 केंद्रों पर करीब 46,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के दौरान रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी, स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। रायपुर, बिलासपुर सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहे। रेलवे के अनुसार परीक्षा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के ओरछा में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए 3 दिवसीय वृहद शिविर आयोजित किया गया। विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान के तहत हुए इस शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। प्रशासन को मिले 396 आवेदनों में से 277 मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा पुलिस ने आईएसआई से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पंजाब निवासी सेवक सिंह अकलतरा में रहकर

0: आयोजित किया गया। विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के तहत हुए इस शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। प्रशासन को मिले 396 आवेदनों में से 277 मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा पुलिस ने आईएसआई से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पंजाब निवासी सेवक सिंह अकलतरा में रहकर ठेकेदारी कार्य की आड़ में मोबाइल के जरिए गोपनीय जानकारी भेज रहा था। जांच में उसके संपर्क पाकिस्तान, सऊदी अरब और मैक्सिको से जुड़े होने की बात सामने आई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आज मुख्यमंत्री रायपुर से करेंगे शुभारंभ। बस्तर संभाग में कभी नक्सलियों का गढ़ रहे इलाकों में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए सामूहिक योग अभ्यास और राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। प्रस्तुत है केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम।
2: संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: In the last 12 years of the NDA government, Prime Minister Narendra Modi has always emphasized that ease of doing business is one of the major priorities of the government. And the government has relentlessly been working towards this goal so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise. And of course, the concept which has been reiterated time and again that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years, we have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
4: Thank you.
3: So, Dr. Sharma, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 2,20,000 स्टार्टअप्स है हमारे देश में। सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव कि किस तरह से ग्रोथ हुआ है। सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को, बिजनेस एनवायरनमेंट जो इम्प्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप 2 हमें बताएं इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
4: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारी इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्ट अप किया है। तो सरकार का जो पहल था जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था। तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे, मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी। तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे हम अपना रैंकिंग, जो था सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हुए 63 पे आए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उसके बाद जो स्टेट्स ने, उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था, उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ, स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, जो लोगों में, बिजनेसेस में, सरकार में, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हो, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होनी शुरू होगी, जो उसके पिलर्स हैं, खास करके जो एक हम बात करते हैं कि फेसलेस, पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस, ये 4 जो पिलर्स हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है, जिसे हम आज

0: compete with many countries. Like Shunai mentioned that our PMI is now at the top of the competitive economies.
1: Absolutely.
0: Our PMI is higher than any economy in the top 10 economies, like our services PMI, our manufacturing PMI. Even despite the such kind of headwinds at the global level, our PMI is more and more resilient in the global economic
1: Absolutely.
0: System.
1: तो मिस्टर चनोय, जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हम और आपने भी कहा कि इतने हम आपदाओं से गुजरे, इतनी मुश्किल सिचुएशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर हुई, चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बट फिर भी हमारे आर्थिक मजबूती बनी रही है. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया या पीएम मुद्रा योजना, जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए कोलैटरल फ्री बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, या जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सिस्टम बनाया गया था सरकार द्वारा, इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने सबको, जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की, उसे पूरा करने का एक मौका दिया.
2: सुनील जी, अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है, ठीक है, तो पहला जो चीज बदला, जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे, और आपने पूछा ऑनलाइन का, आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं और आप टैक्सेस भर सकते हैं. तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए, अब वो एक बहुत कम सा हो गया है. अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस तीन स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है. जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिस तरह उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था. तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें ना मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है. तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा, उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए, हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए, और एक उनको स्किलिंग करते हैं. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है. और साथ में, क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है. वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछें कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था. और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें, तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा, बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो. एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव गांव में, और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी है. और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चले नहीं, तो पहले ये एक बहुत ही बुरी नजरिया से देखा जाता था. अब कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो.
1: बिल्कुल.
2: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में. अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया. और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो हैं, इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के.
1: और कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक का सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है.
2: बिल्कुल, आपने

0: इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था, लेकिन
1: जी
0: आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था, जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओस और सिटीजन्स ने जो कोलैबोरेट किया था। देखिए, कोविड के पहले तो हम ना पीपी किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे। पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन,
1: जी
0: ठीक है, पीपीए किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था, और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसके खास बात की रिफॉर्म्स थे, अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो औरों देशों से बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे,
1: जी
0: वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेस और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया, और उसका एक ग्रासरूट लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। सो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है, और हर एक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी, और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और कंपेटिटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे, तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं, जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है, और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करने का देखते थे, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में एक कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
1: जी,
0: उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए हैं, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप इन्वायरमेंट पे देखें, या कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्हें क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करें कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स, क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई, या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल, एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई है लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
2: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है, और ONDC प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ GDP होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की, और जो

0: वेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ जीडीपी, तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि पीएलआई स्कीम जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला, जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी। हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हर एक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन अ रो, तो एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी। तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारे आरबीआई का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म्स फॉर दीज ऑफ डूइंग बिजनेस गो हैंड इन हैंड। ये चारों चीजें मिलके एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी को दे रहे हैं। हमारे आगे लक्ष्य है, जैसे हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, वो एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है। जैसे 2030 का हमारे अनुमान है कि हमारा एक्सपोर्ट है जो हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज 1 ट्रिलियन होगा, सर्विसेज 1 ट्रिलियन होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और जो हमारा जीडीपी का साइज ऑफ जीडीपी दैट विल ऑल्सो क्रॉस 5 ट्रिलियन। तो कुल मिला के जो स्टेटिस्टिक्स है और जो रिफॉर्म्स है और जो क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी सरकार ने एक भव्य स्कीम अनाउंस की है, उसके पहले सरकार ने जो एक इंसेंटिव्स दिए एक्सपोर्टर्स को के मद्देनजर के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, भले ही हम डायरेक्ट तौर पे इंसेंटिव्स नहीं दे सकते, फिर भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनको जो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसका जो इम्पैक्ट है कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। तो इन सब चीजों में सरकार बहुत तेज गति से आगे रिफॉर्म्स कर रही है। और जैसे चिनॉय साहब ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बात की
1: जी,
0: जो सरकार ने कोरोना के टाइम पे अनाउंस की थी, वो बहुत सक्सेसफुल थी। अब वेस्ट एशिया क्राइसिस में सरकार ने उस स्कीम को दोबारा अनाउंस किया, 2,55,000 करोड़ का जो स्कीम है, खास करके जो एमएसएमई है उनको सपोर्ट करेगा, उनका जो वर्किंग कैपिटल है उसको सपोर्ट करेगा। नाउ दे आर रेजिलिएंट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर लुकिंग हैड टू बिकम मोर एंड मोर प्रॉमिसिंग इन द इकोनॉमिक सिस्टम।
1: Okay, another point, Mr. Chinoy, which I would like your, view on, that logistics, PM Gati Shakti, where they've taken a multimodal approach to physical connectivity. Then there is logistics data bank 2.0, the way the technology has been used, where you can just track real-time cargo, or there's so many reforms for faster custom clearances and stronger export support. How important are these for creating confidence in India as an investment destination, both for domestic and for the foreign investors?
2: So, Sonuji, you've talked of three different things, and I'll answer each one separately. So, first, if you look at it, one of the challenges in the whole system was that, to be export, and Mr. Sharma talked about how exports have grown. A lot of our exports were import dependent. I mean, you take gems and jewelry. We import and then polish and then we send out, just for example, which is a large scale employment opportunity. Now, the challenges there were threefold. The first one was it took inordinate time to clear your goods from customs.
1: Yes.
2: And the processes were cumbersome. The second thing was it took a lot of time to get from your factory to the shipping location because of logistics.
1: Yes.
2: And the third was that when you exported, you didn't have access to credit and there was no guarantee for the export. Now, all these three issues have been actually addressed by the government in the ease of doing business. And particularly the first is you have computerized the customs forms. Second, you've increased the turnaround, decreased the turnaround time, which was like 14 days, 21 days, to less than 7 days of cargo vehicle.

0: जो सरकार ने लगभग कोई 10,000 करोड़ के फंड से शुरू किया, तो आज वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ा हुआ है। अब कंपनीज नाउ आर कमिंग फॉरवर्ड टू अडॉप्ट मोर एंड मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टू बिकम मोर एंड मोर प्रोडक्टिव एंड कम्पेटिटिव इन दी नॉट ओनली इन दी डोमेस्टिक इकोनॉमी बट एट दी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम।
1: डॉक्टर शर्मा, मिस्टर चिनोय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
2: थैंक यू।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनोय और डॉक्टर एसवी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:35 हुए हैं। हाजिर हैं हम चित्रपट संगीत के संग।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की रचना। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था और फिल्म था आमने सामने। साजन बिना सुहागन इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, इंदिवर के बोल और उषा खन्ना का संगीत।

0: आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।

0: चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आनंद फिल्म का गीत सुनिए, मुकेश की आवाज में गुलजार के बोल और सलील चौधरी का संगीत।
1: मैंने

आन मिलो सजना इस फिल्म का गीत सुनिए। आनंद बख्शी की शब्द रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं। समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं। समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 पोतों दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की इस यात्रा को इन नए पोतों से और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत की प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति ने उद्यान के चीता प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का इलाज जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 32 यात्रियों वाली उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और घायलों के तीव्र स्वस्थ होने की कामना की है। UGC नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया में श्री जयशंकर विदेश मंत्री बी बत्सिसिग के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 24 और 25 जून को वे दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता करेंगे। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका तथा ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस

0: बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सराहीपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो। फोन संवाद और प्रस्तुति तारकेश्वरी आसुदानी।

0: फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मन के कार्यक्रम में स्वागत है। स्वीकार करो तारकेश्वरी के जय जोहार। संगी हो आज के कार्यक्रम पर रिकॉर्डिंग होए रहीस 18 जून बिहनिया 11 बजे ले तो सुने जाए आप पंसन होए हमर कोट बात और आप मन के पसंद के गीत। ई हवे पहली कॉल। हेलो फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: राम राम दीदी।
0: राम राम भैया।
1: हाँ मैं रेवा राम सब बोलत रहे दीदी दयान बांधा बाजार जिला राजनांदगांव से।
0: रेवा राम जी कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद दीदी धन्यवाद। आप मन के आवाज बड़ गुड़तू गुड़तू मीठ मीठ लगा दीदी मंद्रास के ये मीठ नहीं कोयली के गुड़तू गुड़तू मीठ मन बोली आवाज मन बहुत सुंदर लगता है। जब भी कार्यक्रम पेश करते ना दीदी तो ऐसे लगते कि भावरा माना पुल के सामने में झूमे लगते नहीं किसी टाइप के हमारो मन आप मन के गोट बात सुनते ना रेडियो सुनर कसम तो हमारो मन बन दिन भर नाचे के लग जाते हैं दीदी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप मल्ला हमारा आवाज बने सुघर लगते और हमार प्रस्तुति आप पसंद करत हो ये जान के हमला खूब खुशी हुआ थे। और बताओ आज के कार्यक्रम में फोन लगाए हो तो का कहना चाहत हो।
1: दीदी गर्मी बहुत बढ़ गई है अभी पानी के इंतजार करा था और खेती बाड़ी के काम मतलब काटा कूटी सही में सही काम कट रहे दीदी खातू अगर अभी गुजरात रही है तब बस पानी गिरी की धान होकर बस बीजा धर धुरा के बोल निकल वो थरा ला तो डाले दीदी कल ही परसों डाला था।
0: अच्छा तो बेरा निकाल के आप मन कॉल लगाए हो बताओ आज के कार्यक्रम में कौन कलाकार मन के कौन से गीत सुनना चाहत हो।
1: अब वही गाना है दीदी अब सीजन में देखने ना तभी आगू के सियार मन अपने अभी मन नागर बुला तैयारी करत रहता नागू ले एक दिन गाना है दीदी प्रहलाद सिंह कश्यप वो संगवारी मन के स्वर में
2: बम्बूरा तारी लेड़गा मारा ते दतारी बम्बूरा तारी लेड़गा मारा ते दतारी
1: ये गाना सुना देते दीदी काबर की अभी मौसम के हिसाब से गाना चुने रहे हो
0: तापमान के पसंद माँ आवाज सुने जाए प्रहलाद सिंह कश्यप और संगवारी मन के गाये ए गीत। फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करा, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: हाँ नमस्कार, वंदे मातरम मैडम। मैं बनिया पारा धमतरी से बोल रहा हूँ, रामचंद माखीजा काफिर भाई।
0: रामचंद माखीजा जी, कार्यक्रम में अपन के बहुत बहुत स्वागत है
1: जी। शुक्रिया, धन्यवाद।
0: कैसे हो आप मन?
1: अभी तो ऐसे जिया था सूर्य देवता के, कभी ताप बढ़ जाते, कभी बरसात पानी के आसार नजर आते, जीव है जरूरत है।
0: जी बिल्कुल सही कहा था आप मन। और आज के कार्यक्रम में फोन लगाया हो तो बताओ, आज के कार्यक्रम में कौन कलाकार मन के कौन से गीत आप मन सुना दें?
1: हाँ, आप मन सुनाओ, केदार यादव साहब की आवाज में है ये, छत्तीसगढ़ है भैया, सुन लो एकर राम कहानी, छाती मारे सुलगत आगी, आओ आखी में पानी भैया।
0: तो आप मन के पसंद में आवाज सुने जाए केदार यादव के गाए ए गीत। फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: राम दीदी।
0: राम राम भैया, कोण बोला था?
1: मैं जीवेंद्र सेन बोला था, धनसुली से।
0: जीवेंद्र सेन जी, कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ पड़ा थे भैया? धनसुली।
1: धनसुली पाटन के पास।
0: कहाँ करा था आप मन धनसुली में?
1: धनसुली में सैलून चलाता
0: हूँ। हमारे कार्यक्रम कब कब सुना था?
1: आपके कार्यक्रम तो सुबह चालू रहते, बंद होते दुकान तब बंद होते रेडियो।
0: कब ले सुना तो आप आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण?
1: आकाशवाणी रायपुर के प्रसारण में कम से कम चौथी पांचवी पढ़ाते हैं तब से सुना था। घर में पिताजी सुने ना रेडियो।
0: तो परिवार में जम्मो सदस्य मन घलो सुनते रेडियो?
1: हाँ, सब कुछ सुन।
0: आज के कार्यक्रम में कॉल लगाया तो बताओ भैया, कौन कलाकार मन के कौन से गीत सुनना चाहत हो?
1: प्रकाश देवांगन के सुना रहे थे।
0: कौन से?
1: तीखा रूम झूम वाले।
0: आपन के पसंद माँ आवाज सुने जाए प्रकाश देवांगन और संगवारी मन के गाए ए गीत। फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: राम राम दीदी।
0: राम राम भैया, कौन बोलत हो?
1: मैं योगेश कुमार साहू, जुनाडीह बेनकुरा जिला गरिया बनले बोलत हूँ। दीदी
0: योगेश कुमार जी, कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है।
1: मोर फोन पहली बार लगी से दीदी, मैं बहुत दिन से प्रयास करत रहा हूँ लेकिन आज सफल हो गए।
0: हमन ला खूब बने लागते है जब हमार नवा श्रोता संगवारी मन एक कार्यक्रम ला जुड़ते है। आप मन के कॉल आज पहली बार लगे है, हमन ला बहुत
1: खुशी होती दीदी, बड़ा अच्छा लगा थे।
0: तो का कहना चाहता हूँ आज के कार्यक्रम में पहली घाव आप मन के फोन लगे है।
1: अब कहना तो नहीं चाहता हूँ दीदी, लेकिन मैं कही देबे पिया ला संदेश, अब बतर के दिन आगे वाला गाना सुना देते हो।
0: आप मन के पसंद माँ आवाज सुने जाए ए गीत फोन करे बा।

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, कौन बोला था भैया?
1: हम सुरेश कुमार साहू बोला था, बिरनपुर कला दनिया गंडई से।
0: सुरेश कुमार साहू जी, कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है
1: जी। धन्यवाद दीदी।
0: का करा था आप मन दनिया गंडई में?
1: अभी तो दीदी खेती खार के तैयारी चला थे। कांटा खुटी बिना थन और खातू सको बकरा थन गोबर खातू।
0: अच्छा, आज के कार्यक्रम में अपन फोन लगाया हो तो क्या कहना चाहत हो?
1: रेडियो सुनो मत, शिक्षा मनोरंजन के बहुत बड़े साधन है और काम करत भी आदमी सुन सकत है और समय कैसे व्यतीत पता चले। हाँ,
0: रेडियो के यही फायदा है कि आप रेडियो सुनत सुनत मनोरंजन घला कर सकत हो और अपन काम बुता में कोई डिस्टर्ब नहीं होते ना।
1: हाँ।
0: तो आज के कार्यक्रम में कौन कलाकार मन के कौन से गीत आप मन ला सुना देन?
1: सुखियारी मानिकपुरी स्वर में दीदी, सालेवारा के बाजार।
0: आप मन के पसंद में आवाज सुने जाए ये गीत। फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी, धन्यवाद।

0: हेलो फोन करो छत्तीसगढ़ी।
1: हेलो फोन करे लोकगीत सुने।
0: जी फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: जी बहनी राम राम।
0: राम राम भैया कौन बोलत हो?
1: राम राम जय जोहार बहनी। मैं है ग्राम जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ ले सुरित रमेश साहू बोलत हूँ बहनी।
0: सुरित रमेश साहू जी कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद बहनी। आप तारकेश्वरी बहनी बोला था का बहनी?
0: जी भैया आप मोला चीन डरे हो।
1: ओ आपके आवाज ल कैसे नहीं चीन हूँ बहनी। आप मन आथत मोर चिट्ठी विट्ठी घलो शामिल करत रहता बहनी। आप मन तो हमल बड़ माया प्रेम दुलार करता बहनी श्रोता संगवारी मन ला। और आपके आवाज के कार्यक्रम पेश कस के का कहना बहनी।
0: आप मन ला हमार प्रयास बने लगते।

0: तेकर बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। हमन ला खूब खुशी होते जब आप मन असन झुन्ना और सरलक संगवारी मन हमार संग जुड़े रहते।
1: खेत के तैयारी करवाए ला रहे हैं बहनी तवेदे बबूल पेड़ के छाए में बैठ के आप लगा है टेलीफोन लगते कि नहीं लगे की गेते लगी गे बहनी आपके लिए दो लाइन के 35 बहनी यदि ज्यादा दूत बोलूं कहत रहे हैं।
0: जी बोलिए।
1: जिंदगी हमार जिंदगी एक सफर हवा हमार जिंदगी एक सफर हवा सफर सब जन के चलत रहे जिंदगी एक कारवा हवा जिंदगी एक कारवा हवा कारवा सबो संग के सबो जन के चलत रहे और जिंदगी हमार एक झरोखा हरे जिंदगी एक हमार झरोखा हरे झरोखा गलो नदिया की तरह कलकल कलकल करके बहत रहे और आकाशवाणी रायपुर से तारकेश्वरी बहिनी के आवाज जौन है स्वर धारा के स्वर नहीं में हमेशा पहुँच रहे और आकाशवाणी रायपुर के हमारे छत्तीसगढ़ी लोक गीत फरमाइश के कारवा हमेशा चलत रहे हमेशा चलत रहे जी।
0: जरूर एक कारवा चलत रही और आप अब बताओ अपन पसंद के ओ गीत जो एक कार्यक्रम में आज आप सुनना चाहते हो। जी
1: एक निवेदन आप दो जहां दो चार जन के नाम ले लो का बही
0: जी
1: अमर उरेटा डोंडी लोहारा से देव शंकर तामुरिया जी नुआ बांधा सनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन जी कन्या दमो बालाघाट से दुर्वा राम साहू अखिलेश यादव जी डोंगरिया मलाज खंड से मुन्ना लाल पटले और बिलाईगढ़ से रोशन लाल देवांगन जी और नागसाकरा सोमनी से नारायण लाल साहू बहनी हमारे गणेश धाम परसूले से जितेंद्र दास मालिक और गीत तो ऐसे बहनी अभी कबीर साहब के भी सामने जयंती बहनी प्रगट उत्सव है तो गाड़ा गाड़ा सब श्रोता संगवारी मतलब बधाई साथ ही साथ हमारे आकाशवाणी के जम्मू रोहतक भाई बहनी मतलब बधाई बहनी और वही कबीर साहब के संबंध में कोई गाना हुई बहनी छत्तीसगढ़ी सुनवा देते हो कहा थे
0: के पसंद माँ आवाज सुने जाए ए गीत फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद बहनी।

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनो।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोला था भैया?
1: मैं मुरली मनोहर बंजारे बोला था मैडम, कुरुद भिलाई से।
0: मुरली मनोहर बंजारे जी, कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम।
0: का करा था अपन कुरुद मा?
1: तो टेलर काम करता मैडम।
0: और हमारे कार्यक्रम कब कब सुना था?
1: वो तो दिन भर चलत रही थे मैडम, बहुत दिन से सुना था, 1986 से बैठे बैठे टेलर काम अपन करत रही थे।
0: आप मन तो हमारे नियमित श्रोता हो, आज के कार्यक्रम में फोन लगाया हो तो का कहना चाहता था?
1: गाना सुनना है मैडम।
0: कौन सी गीत अपन लसना
1: दिन? बाद लगी से बीच में एक बार और लगे रही से, और सब बढ़िया है, बाकी सब ठीक है। गाना सुनना रही मैडम।
0: कौन सी गीत अपन लसना दिन आज के कार्यक्रम में?
1: नीम के डंगानी में चढ़े करेला के नार, ठगवा का पानी ठग दिस मोर धरे बैठे किसान, संगवारी गमोर कैसे बचावो प्राण, ये विधाता गमोर कैसे बचावो प्राण।
0: तो आपन के पसंद में आवाज सुने जाए यही गीत। फोन करे पर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैडम।

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: हाँ, मैं कबीर चौक शीतला मंदिर वार्ड तवांग के से आईवारा डबल कुमार धीवर बोल रहा हूँ।
0: डबल कुमार धीवर जी, कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है
1: जी।
0: आप मन तो हमारे नियमित श्रोता हवा।
1: हाँ जी, नियमित सर।
0: तो कब ले सुना था आप मन रेडियो?
1: मोला खुद ख्याल नहीं है, बहुत छोटे रहे हैं, कम से कम पीछे से होती पड़ा था। सामने घर वाले में रेडियो रहा है तो उन्हें जाग सुना मैं। वो समय बरसाती भैया बन के चला था चौपाल, उस समय से सुना था मैं। घर में अपन गाली खाऊं, पढ़े लिखे छोड़ के मैं जाके बैठे था जब डाल दे रही थी।
0: तो पढ़े लिखे छोड़ के भी आप मन रेडियो सुनत रहो, और अब रेडियो कैसे सुनत हो?
1: अभी भी तो मोर तीन चार ही रेडियो है घर में, अब छोटे रेडियो ले घुमा पॉकेट वाले, अब मोबाइल आ गए तो मोबाइल नहीं सुनता हूँ।
0: तो तकनीक के फायदा उठा दो आप मन।
1: मोर यहाँ भाई रही से जीत के मंजिला भाई मैं आवे विविध भारती में माला कार्यक्रम विनाका ता बनाए ग्रुप, तो पूरा भाई भी पूरा भेजा है वहाँ। समय अमीन साहनी जी रे समय वही से बिनाका माला में जो ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गए।
0: तापन खूब झुन्ना श्रोता हवा, खूब नियमित श्रोता हवा। आज के कार्यक्रम में फोन लगाया हो तो कौन कलाकार मन के कौन से गीत सुनना चाहता हो भैया, तेला बता दो।
1: एक किरण यदु पूनम सारथी के गीत है वो कर रहे सुनना है।
0: कौन से गीत भैया?
1: बड़ निकला के बर के छैया तरिया के पार।
0: ताप मन के पसंद माँ आवो, अब सुने जाए तीरेंद्र यदु और संगवारी मन के गाए ए गीत। फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपना भी धन्यवाद।
2: बड़ निकला के बर के छैया तरिया के पार।

यही गीत सुन सिरात है आज के फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ कार्यक्रम जाए की पहली आप मल्ला बता देन ओ फोन नंबर जिमा कॉल करके आप मन सुन सकत हो अपन पसंद के गीत नंबर नोट करो 4003482 दूसर नंबर है 4003483 और तीसर नंबर है 4003484 रायपुर के एसटीडी कोड है 0771 नंबर मा फोन करो सुनाओ अपन पसंद के गीत कार्यक्रम फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत

सोमवार बिहनिया 11:05 मा आप मन ला बता देन आज के कार्यक्रम बर गीत जोड़े रहीन बीर भान साहू आप बीता देवा जम्मो संगवारी मन ला तारकेश्वरी के राम राम।

0: फोन कर रहे हो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। अभी आप सुन रहे थे फोन संवाद और प्रस्तुति तारकेश्वरी आसुदानी की थी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आज मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। बस्तर संभाग में कभी नक्सलियों का गढ़ रहे इलाकों में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए सामूहिक योग अभ्यास। और राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ से सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में प्रदेश के 1000 विशिष्ट जन विशेष ट्रेन से गुजरात स्थित सोमनाथ धाम जाएंगे। यात्रा का शुभारंभ आज सुबह करीब 11 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस यात्रा में कलाकार, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, समाज सेवी और जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव से जोड़ना है। प्रतिभागी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और परंपराओं का भी प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कभी नक्सलियों का गढ़ रही कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से मशहूर ये 5000 फीट ऊंची पहाड़ी कभी कुख्यात माओवादियों का सबसे सुरक्षित गढ़ हुआ करती थी। पिछले वर्ष अप्रैल मई माह में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऐतिहासिक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में नक्सलियों के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया गया था। कई दिनों तक चले अभियान में यहां से भारी मात्रा में हथियार और 450 से ज्यादा आईईडी बरामद किए गए थे। इस दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्र में स्थित सुरक्षा शिविर में योग सत्र आयोजित किया गया। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से प्राप्त सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची का अवलोकन और वाचन किया जाएगा। साथ ही पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी और ग्रामीणों से प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। ग्राम सभाओं में विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के संबंध में भी ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा पुलिस ने आईएसआई से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पंजाब निवासी सेवक सिंह अकलतरा में रहकर ठेकेदारी कार्य के आड़ में मोबाइल के जरिए गोपनीय जानकारी भेज रहा था। जांच में उसके संपर्क पाकिस्तान, सऊदी अरब और मैक्सिको से जुड़े होने की बात सामने आई है। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर साइबर सेल को जांच के लिए भेजा है। मामले की आगे की जांच रायपुर एटीएस को सौंपी जाएगी। राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यपाल रमन डे का करेंगे। छत्तीसगढ़ स्क्वैश एसोसिएशन द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता 27 जून तक चलेगी। इसमें देश के 21 राज्यों के 349 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं प्रदेश के 49 खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के ओरछा में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए 3 दिवसीय वृहत शिविर आयोजित किया गया। विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान के तहत हुए इस शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। अंत में

0: के समाचार एक बार फिर। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आज मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। बस्तर संभाग में कभी नक्सलियों का गढ़ रहे इलाकों में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए सामूहिक योग अभ्यास और राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12 बजे हैं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।

और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति

0: दिखाई देने लगी।
1: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
0: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के

0: साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: हमें खेद है, ट्रांसमीटर में विद्युत अवरोध के कारण 12:07 से 12:09 तक और 12:10 से 12:11 तक आप हमारा प्रसारण नहीं सुन सके। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक रंजनी। आज कलाकार हैं मोतीलाल भीमटे और साथी। आपको सुना रहे हैं ये लोक भजन।

लोकरंजनी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आज कलाकार हैं मोतीलाल भीमटे और साथी। लीजिए सुनिए ये पारंपरिक गीत।

कार्यक्रम लोक रंजनी आप सुन रहे थे। आज कलाकार थे मोतीलाल भीमटे और साथी मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है समाचार, हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता

0: दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री बी बत्तेसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए

चित्रपट संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वर में फिल्म दिल का रिश्ता का ये गीत। शब्द रचना समीर की है, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

आइए सुनते हैं ये गीत राहत फतेह अली खां की आवाज़ में। शब्द रचना है अमजद इस्लाम अमजद की, सुरों में पिरोया शाही ने, फिल्म का नाम है पाप।

अब आपको सुनवा रहे हैं ये अगला नगमा। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और साधना सरगम, गीतकार हैं शकील आजमी, संगीतकार हैं रूप कुमार राठौर और फिल्म का नाम है मधोशी।

0: चित्रपट संगीत के आखिर में लीजिए सुनिए ये गीत। आवाज है अभिजीत की, गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रवण और फिल्म का नाम है बेवफा।
1: इश्क़ छो

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण। आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कार्यक्रम विवरण में

सबसे पहले जानकारी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। रात 8:30 पर सुनिएगा खेल गतिविधियों पर केंद्रित कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन। रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब आपको बता दें हमारे केंद्र के कार्यक्रमों के बारे में। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रभा अत्रे से सुनिएगा राग जोग कौंस में ख्याल। अब से कुछ ही देर बाद दोपहर 1:30 पर सुनिएगा शहरी महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। आज की बात केंद्रित होगी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता और जीवन में योग के महत्व पर। और सुनिएगा परिचर्चा, महिला सुरक्षा में परिवार और समाज की भूमिका। प्रतिभागी होंगी श्रीमती शताब्दी पांडे, डॉक्टर शीला गोयल और ऋचा साहू, संचालन इंदु चटर्जी का। साथ ही सुनिएगा तरन्नुम और टिप्स।

शाम 5:10 पर युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे। आजकल में बातचीत का विषय होगा विश्व वर्षा वन दिवस। साथ ही सुनिएगा हेलो युवाणी। श्रोताओं से बातचीत की है काजल साहू ने, प्रस्तुत करता होंगे दीपक हटवार। और साथ ही सुनिएगा क्रम दृष्टिकोण

शाम 7:21 पर सुनेगा किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। आज की बात होगी फसल परिवर्तन का आधार श्री अन्न मिलेट। क्रम आज की सलाह में फल और सब्जी पे पादप हार्मोन, इस विषय पे जानकारी देंगे डॉक्टर गागेंद्र सिंह राजपूत, विषय वस्तु विशेषज्ञ पादपकारिकी उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय सांकरा जिला दुर्ग।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट सुनिएगा शाम 5 बजे, सुगम संगीत सुनिएगा शाम 6:30 पर, कलाकार होंगे चतुर सेन, रात 8:15 पर कलाकार होंगे सलीम इकबाल। रात 10 बजे सुनिएगा पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर, चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा दोपहर 2 बजे, 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर।

स्वागत है आप सभी श्रोता बहनों का आज की बिंदिया में। आप सभी को सरिता मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, कल था विश्व योग दिवस। आशा है आप सभी ने उसका भरपूर उपयोग किया होगा योग करके। योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की कला है। जिस प्रकार नारी अपने प्रेम, धैर्य और त्याग से परिवार को जोड़कर रखती है, उसी प्रकार योग हमारे तन, मन और आत्मा को जोड़कर जीवन में संतुलन लाता है। नारी परिवार की शक्ति है और योग उस शक्ति को और अधिक सशक्त, स्वस्थ तथा आत्मविश्वासी बनाता है। तो बहनों, नारी और योग दोनों का ही महत्व हमारे जीवन में भरपूर है। तभी तो कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। और ये केवल एक श्लोक नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का मूल संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि घर को घर कौन बनाता है? सुबह की पहली मुस्कान कौन लाता है? कठिन समय में हौसला कौन बढ़ाता है? और इसका उत्तर है नारी। नारी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, साहस और शक्ति का अद्भुत संगम है। वो माँ बनकर ममता देती है, बहन बनकर स्नेह देती है, बेटी बनकर खुशियाँ लाती हैं और जीवन संगिनी बनकर हर कदम पर साथ निभाती है। हमारे इतिहास में ऐसी अनेक महान महिलाओं ने जन्म लिया है बहनों, जिन्होंने अपने कर्मों से दुनिया को नई दिशा दी। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया, सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा का दीप जलाया और पीवी सिंधु ने खेल जगत में देश का नाम रोशन किया। लेकिन श्रोता बहनों, नारी सम्मान केवल बड़े बड़े मंचों की बात नहीं है। इसकी शुरुआत हमारे घर और व्यवहार से होती है। जब हम बेटियों को पढ़ने का अवसर देते हैं, उनकी बातों को महत्व देते हैं और उन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तभी हम वास्तव में इस श्लोक का सम्मान करते हैं कि नारी है शक्ति, नारी है मान, नारी से ही है जग की पहचान। समय के साथ महिलाओं की भूमिका और भी व्यापक हुई है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल, साहित्य, प्रशासन, सेना और अंतरिक्ष तक अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। वे ये सिद्ध कर रही हैं कि अवसर मिलने पर वे किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। लेकिन केवल उपलब्धियों की बात करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें ये भी समझना होगा कि नारी सम्मान का अर्थ केवल खास अवसरों पर शुभकामनाएं देना नहीं है। सच्चा सम्मान तब है जब हम उन्हें समान अवसर दें, उनकी भावनाओं का आदर करें, उनके विचारों को महत्व दें और उनके अधिकारों की रक्षा भी करें। जब किसी घर में बेटियों की शिक्षा मिलती है, वहाँ ज्ञान का दीप जलने लगता है। जब किसी समाज में महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिलता है, वहाँ विकास और समृद्धि आती है। और जब किसी राष्ट्र की महिलाएं सशक्त होती हैं, तब वह राष्ट्र प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूता है। एक छोटी सी कल्पना करें, यदि संसार से ममता, करुणा, धैर्य और त्याग जैसे गुण समाप्त हो जाएं, तो जीवन कितना नीरस हो जाएगा। ये गुण हमें सबसे अधिक नारी से ही मिलते हैं। इसलिए नारी केवल परिवार की आधारशिला नहीं बल्कि समाज की आत्मा है। बहनों, एक विनम्र आग्रह करना चाहूंगी कि हम केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी नारी सम्मान को स्थान दें। बेटियों को सपने देखने दें, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दें और उनके आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं। और आत्मविश्वास मजबूत कब होगा? जब महिला सुरक्षित होगी और उनकी सुरक्षा में समाज और परिवार अपनी भूमिका का निर्वाह जरूर करेंगे। कैसे, चलिए जानते हैं हमारे अगले क्रम में। सुनते हैं परिचर्चा। विषय है महिला सुरक्षा में परिवार और समाज की भूमिका। प्रतिभागी हैं श्रीमती शताब्दी पांडे, डॉक्टर शीला गोयल, ऋचा साहू और संचालन करता है इंदु चटर्जी।

बिंदिया सुनने वाली सभी बहनों को इंदु चटर्जी का नमस्कार। बहनों, आज हम ज्वलंत विषय पर परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं, जिसका विषय है महिला सुरक्षा में परिवार और समाज की भूमिका। आज विषय पर चर्चा में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार

0: संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती शताब्दी पांडे, डॉक्टर शीला गोयल रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ हैं और हमारे बीच काउंसलर हैं श्रीमती रिचा शाह और मैं इंदु चटर्जी SBI से रिटायर और महिला सुरक्षा काउंसलर हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की परिचर्चा। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्त्रियों की स्थिति पहले से अच्छी है। लगभग सभी देशों में स्त्री ने पुनः अपनी शक्ति का लोहा मनवाया है। हम कह सकते हैं कि आज का युग स्त्री जागरण का युग है। भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति को भी स्त्री ने ही सुशोभित किया है और वर्तमान में वे तीनों सेना की प्रमुख भी हैं। ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, IAS और यहाँ तक कि सैनिक बनकर देश की रक्षा के लिए मोर्चे पर जाने का भी साहस करने लगी है। स्त्री अपराजिता है। उसकी स्थिति को सशक्त बनाने में परिवार के साथ साथ कानून का भी साथ मिला है, मगर अभी भी पूरे देश में स्त्रियों में वो जागरूकता नहीं आई है। उसे कानून से मिले अधिकारों से अपने साथ हो रहे अत्याचार, अन्याय और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ज्यादातर स्त्रियां अपने परिवार और समाज के खिलाफ कदम उठाने का साहस ही नहीं जुटा पाती। आज भी स्त्रियों का एक बड़ा वर्ग अपने कानूनी अधिकारों से भी अनभिज्ञ है। हम 21वीं सदी की बात तो करते हैं, लेकिन जब हम अपने आसपास के सामाजिक परिवेश माहौल में स्त्रियों की स्थिति को देखते हैं तो हम अभी भी सदियों पीछे हैं। 2-3% महिलाओं की जीवन शैली को छोड़कर अधिकतर महिलाएं, चाहे वो पढ़ी लिखी हों या मजदूर वर्ग की, वे हमेशा डर और शक के दायरे में सिमटी नजर आई हैं।
1: आपने सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही, आपकी पूरी बात ने मुझे एक विषय बहुत जो प्रभावित करने वाला लगा, वो है कि महिलाओं से संबंधित कानून तो बहुत बने हैं, लेकिन क्या इन कानूनों का उपयोग वे कर पाती हैं?
0: बिल्कुल सही।
1: और यहाँ परिवार की और समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
0: जी, जी।
1: क्योंकि अगर महिला असुरक्षित है तभी उसके सुरक्षा के विषय उठेंगे। ऐसे समय में वो किससे असुरक्षित है? कहीं ना कहीं समाज में उन लोगों से असुरक्षित है जो उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं, जिनसे वो शोषित है, पीड़ित है।
0: बिल्कुल, चाहे वो घर के हों चाहे बाहर।
1: जी हाँ, तो जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़िता हैं, उनको सबसे पहले एक सुरक्षा कवच के रूप में परिवार के सदस्य ही सामने रहेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और अगर उनका सुरक्षा कवच नहीं मिला तो समाज की बात तो दूर है।
0: दूर बात, बिल्कुल सही।
1: तो वहां पर प्रश्न ये उठता है कि यदि कानून की अच्छी जानकारी परिवार के लोगों को होगी, जागरूक होंगे, तो वो कहीं ना कहीं डरेंगे नहीं।
0: बिल्कुल।
1: क्यों डरते हैं वो? इसलिए डरते हैं कि हम अगर इस पीड़िता के साथ खड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो अपराधी तत्व हैं, जो आरोपी हैं, वो हमें परेशान करेंगे।
0: मतलब यदि कानून का जानकारी हो तो
1: इनको कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और आज वर्तमान समय में महिला सुरक्षा के लिए अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी, उसके अगेंस्ट के लिए एक्ट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि वर्क प्लेस पर काम करने वाली महिलाओं के लिए एट वर्क प्लेस का एक्ट है। इसके लिए 18 साल से छोटी उम्र की अगर महिलाएं, बालिकाएं हैं, तो उनके लिए पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। और इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो उनको हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। तो महिला सुरक्षा के लिए हमें इन सारे कानूनों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से बहनों से अनुरोध करूंगी कि बहनों, जब भी कहीं भी इस प्रकार की कानूनी जानकारी मिलती है तो इसको आप जरूर अर्जित करें, क्योंकि कानूनी जानकारी होने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम महिला सुरक्षा में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और इसके साथ ही सखी सेंटर है हमारा, बच्चों के लिए चाइल्ड लाइन है, इस सब की जानकारी भी हमारी बहनों को होनी चाहिए। सखी सेंटर का जैसा कि नंबर है 181 और चाइल्ड लाइन का नंबर है 1098, तो ये जरूर आप जानिए बहनों। और आप जहां भी कहीं भी अपने आसपास किसी भी महिला को, बालिका को असुरक्षित महसूस करती हैं तो सुरक्षा कवच के रूप में उसके साथ हमेशा खड़े रहें, ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस न करे। मेरी दृष्टि में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
0: जी, मैं एक बात और यहां कहना चाहती हूं कि हम महिलाएं आपस में जब मिलती हैं तो अन्य विषय पर चर्चा करती हैं।
1: जी,
0: आज सबके हाथ में नेट है। मैं सोचती यदि मुझे नेट चलाना नहीं आता और आपको आता है, तो आपके पास यदि वो जानकारी है, तो जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, चाहे वो आस पड़ोस मिलते हैं, चाहे अपने घर परिवार में मिलते हैं, हमें वो जानकारी आपस में से वो करनी चाहिए।
1: आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और आजकल मैं देख रही हूँ कि चाहे वो किटी पार्टीज हो या कोई दूसरी भी तरह का गेट टुगेदर हो, आज स्वरूप बदल रहा है।
0: बदल रहा है,
1: आज लोग इन सब विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ। और ग्रामीण स्तर तक अगर मान लीजिए नेट की उपलब्धता कहीं नहीं भी है, तो भी आप देखिए कितने जन जागरूकता के कार्यक्रम सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। महिला बाल विकास का जन जागरूकता शिविर होता है और उस शिविर में ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, जैसे आज हमारे बीच में डॉक्टर शीला गोयल जी हैं, रिचा हैं, ऐसे आप हैं, ऐसे सभी हम जैसे जो समाजसेवी हैं, जो समाज में महिलाओं को गाइड करते हैं, ऐसे लोगों को भी इन

0: जागरूकता शिविर में बुलाया जाता है। तो मैं आज इस माध्यम से बहनों को कहूंगी कि ऐसे जन जागरूकता शिविर को कभी भी आप मिस मत करिए, आज पहुंचिए वहां जरूर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से महिलाओं के सुरक्षा में परिवार और समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ऋचा जी, आम नागरिक की सोच होती है कि अपराध सामाजिक माहौल के अव्यवस्थित होने के कारण बढ़ते हैं, आपकी क्या राय है इसमें?
2: काउंसलर होने के नाते इंदु जी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। अगर स्कूल में कहीं काउंसलिंग हो रही है और मान लीजिए एक लड़का और लड़की का केस है जहां लड़के ने किसी लड़की के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया हो, तो हम उनके माता पिता को बुलाते हैं, हम बैठ के बातें करते हैं, तो समझ में आता है कि माँ बाप इस मामले में कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, ना लड़की के माँ बाप ना लड़के के माँ बाप। उनको लगता है कि स्कूल में कुछ नहीं सिखाते,
1: जबकि उनकी भी जिम्मेदारी है।
2: जबकि संस्कारों की जब बात होती है तो बच्चा जब जन्म लेता है, जब वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है अपने माँ बाप को, और उसकी सीखने की प्रक्रिया वहां शुरू होती है, ना कि स्कूल में। जब तक वो स्कूल पहुंचता है तब तक वो साइकोलॉजी, हमारे मनोविज्ञान के अगर हम विषय में बात करें तो बच्चा काफी परिपक्व उस समय तक हो चुका होता है, वो बहुत चीजें देख चुका होता है। तो बच्चे के जो दिमाग पे असर पड़ता है या बच्चा जो चीज सीखता है वो पहली चीज ये देखता है कि मेरा पिता मेरी माँ के साथ कैसे बात करता है।
1: बिल्कुल सही।
2: अगर मेरे पिता का व्यवहार मेरी माँ के प्रति वो इज्जत देकर बात नहीं कर रहे, अगर वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो बच्चा उसे सीखता है और उसे लगता है कि ये सही है, क्योंकि वो तो जो अपने माँ बाप को देख रहा है वो उन्हें अपना गुरु मान रहा है।
1: और बच्चे बहुत जल्दी इस बात को सीखते हैं।
2: जी,
1: बहुत
2: जल्दी सीखते हैं। तो बच्चे देखते हैं, अच्छा जब माँ का व्यवहार होता है, जैसे मेरे घर में मेरे दो बच्चे हैं, तो मैं जैसे ही टेबल गंदा है, मान लीजिए मेरे घर मेहमान आए हैं और रात को खाना खाने के बाद मैं थक गई हूँ डिनर के बाद, तो मैं अगर ये कहूंगी कि बेटा दोनों बच्चे मेरे एक ही उम्र के हैं, तो बेटी को मैं अगर मैंने कहा कि बेटा तुम टेबल साफ कर लो, तो बेटा समझ जाता है कि ये काम तो औरतों का है।
1: बिल्कुल सही।
2: तो हम ये गलती माँ बाप के तौर पर करते हैं। तो मेरी ये
1: कोशिश,
2: हम दोनों को बोलते हैं कि बेटा चलो दोनों मिलकर साफ करो।
1: जी जी।
2: अगर मेरा बच्चा अपने दोस्तों के साथ मूवी देखना चाहता है और बेटी जाना चाहती है, तो जो सवाल मैं अपने बेटे के साथ करती हूँ, मैं वही सवाल अपनी बेटी के साथ भी करती हूँ। अगर मेरे सवालों में फर्क होगा तो बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो वही उस बारीकी को पकड़ते हैं, और लड़का समझ जाता है कि नहीं, मेरी स्थिति अलग है और बेटी की स्थिति अलग है। तो इज्जत जो है वो हमें घर से ही सिखाना होगा कि लड़की को कि वो अपनी इज्जत खुद मेंटेन करे, और लड़के को कि हर औरत को उसे इज्जत देना और खुद की इज्जत को भी बरकरार रखना है। इसके अलावा एक और चीज मैंने पाई है कि जब मेरे पास बच्चे आते हैं, तो जब मैं लड़की से कहती हूँ कि तुम्हें ये तकलीफ हुई थी, तुमने अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया, तो हम तो सामाजिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने की तकलीफ होती है या कोर्ट में जाने में तकलीफ होती है, वो सब तो बहुत बात की बात है। पहला संघर्ष बच्चे का अपने मन के अंदर शुरू होता है कि क्या मेरी माँ मेरी बात को समझेगी। ये कितना दुखद है, आप समझिए।
1: बिल्कुल सही।
2: एक बच्ची, मतलब बच्चा अपने दिल की बात अपने मां-बाप से नहीं कह पाता, क्या मेरी माँ इस बात को समझेगी कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है या किसी ने मेरे साथ कोई गलत व्यवहार किया है। बच्चा अपने माँ-बाप को बताने में डर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को वो विश्वास देना होगा।
0: एक्चुअली ऋचा जी, वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं माँ भी डरती है कि मैं यदि उसको सपोर्ट करूंगी तो परिवार मुझे सपोर्ट करेगा कि नहीं।
2: बिल्कुल अर्चना, आपने बिल्कुल सही बात कहा। तो इसके लिए मुझे ये कहना है कि हर औरत, जितनी भी औरतें हैं, कम से कम हमारी सामाजिक व्यवस्था में मैंने पाया है कि हर एक औरत इस तरह की कोई ना कोई तकलीफ से जरूर गुजरती है अपनी जिंदगी में। हो सकता है दुर्व्यवहारों, हो सकता है कि रेप जैसी घटना हो, लेकिन किसी ना किसी स्तर पे हर औरत ने इस तकलीफ को सहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट हर औरत से ये है कि वो अपने बेटे या बेटी को बैठाए और अपने सामने अपनी तकलीफ जरूर जरूर जरूर शेयर करें, क्योंकि जिस दिन आप खुलेंगी अपने बेटे के आगे, उसे समझ में आएगा कि मेरी माँ के को इतनी तकलीफ मिली थी, तो वो शायद किसी और बच्ची को ये तकलीफ ना देना चाहे, और बेटी कल के लिए आपको कॉन्फिडेंस में पाएगी कि हाँ, ये मेरी माँ के साथ भी हुआ था तो मेरे साथ भी हुआ है, तो ये कुछ अनहोनी चीज नहीं है, कुछ ऐसी अलग चीज नहीं है जो सिर्फ मेरे साथ हुई है, मैं इसे शेयर कर सकती हूँ अपने टीचर से और अपने पेरेंट्स के साथ।
1: क्योंकि आजकल इतना एडवांस हो गया, माँ बाप अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखेंगे तो बच्चे भी अपनी बात, मन की बात माँ बाप से कर पाएंगे। यदि हम अपनी संस्कृति को कायम रखने और संस्कारी परिवार का स्वरूप चाहते हैं, आपका कर्तव्य और आपकी नैतिक जिम्मेदारी परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी है, क्योंकि हम भी ही उस समाज का हिस्सा हैं जिसके पर्यावरण को खराब और अच्छा करना हमारे हाथ में है। शीला जी, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगी?
3: इंदु जी, जो संस्कार और संस्कृति की बात हो रही है, तो जो संस्कृति शब्द है वो संस्कार से बना है, और संस्कार का सामान्य अर्थ है व्यक्ति को सुसंस्कृत करना।
1: जी जी।
3: पेट को आहार की
1: जी,
3: मस्तिष्क को विचार की,
1: बिल्कुल,
3: हृदय को व्यवहार की, और आत्मा को संस्कार की जरूरत होती है।
1: वेरी वेरी।
3: हमारे सनातनी जी संस्कार ही
1: जी जी
3: हमारे आर्यावर्त की, हमारे भारतवर्ष की पहचान है।
1: बिल्कुल।
3: संस्कार से ही हमारी संस्कृति बनी हुई है।
1: बिल्कुल सही।

0: हम भोजन करते हैं, ये हमारी प्रकृति है
1: जी।
0: हम अपनी भूख से ज्यादा भोजन करते हैं, ये हमारी विकृति है। और हम भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति है।
1: बहुत अच्छे।
0: भारतीय संस्कृति को सृजन एवं संवेदना की संस्कृति कहते हैं। सारे विश्व में हमारी संस्कृति इसीलिए प्रसिद्ध है
1: जी,
0: इसी सृजन एवं संवेदना का मूर्त रूप नारी है।
1: बिल्कुल।
0: जिसका संपूर्ण अस्तित्व सृजन एवं संवेदना के स्पंदनों से बना है
1: जी। जी,
0: हम अपनी संस्कृति को कायम रखना चाहते हैं
1: जी,
0: हम संस्कारी सनातनी परिवार का स्वरूप चाहते हैं, तो हमारी हमारे समाज की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम नारी को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त सक्षम बनाएं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: शीला जी, जैसे आपने संस्कृति संस्कार को जन्म देती है ये बात कही, और फिल्मों और टीवी सीरियल में जो संस्कृति दिखाई जाती है उसका वास्तविक जीवन से तो कोई सरोकार होता ही नहीं है। दूसरा और अहम कारण, आज की आधुनिकता और विकास के नाम पर हमारे इंटरनेट, मोबाइल, घटिया स्तर के वेबसाइट, विज्ञापनों में नारी का गिरता स्तर, हम महिलाओं को टीवी, फिल्मों और विज्ञापनों में जिस रूप से दिखाया जाता है उसका विरोध हम महिलाओं को भी करना चाहिए। शताब्दी जी, आप इस बारे में ये भी कारण एक है कि महिला सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह जो लगाते हैं, जो हमारी सुरक्षा पर, इस विषय पर आप क्या कहेंगी?
2: निश्चित रूप से जिस प्रकार से अनैतिक चित्रण होता है महिलाओं का
1: जी जी
2: दृश्य श्रव्य माध्यमों में, उसको कहीं ना कहीं रोकथाम लगानी चाहिए। और उसकी वजह से भी महिला सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगता है
1: जी,
2: कहीं ना कहीं वह भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है महिला के लिए असुरक्षित वातावरण निर्माण करने में। जैसे कि बात अभी डॉक्टर शीला जी ने कही कि सनातनी जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, जो परिवार की जो संस्कृति है, जो नैतिकता है, जो नैतिक मूल्य है, इनका पालन, इनको उनका पोषण करते हुए अगली पीढ़ी तक उसको रोपित करना, ये कार्य एक माँ का होता है।
1: बिल्कुल सही।
2: और जिस प्रकार से माँ का, एक नारी का चित्रण आज जो है दृश्य माध्यमों में हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं परिवर्तित करना, उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है।
1: और वो हमें महिलाओं को ही मेरे ख्याल से करना ही
2: बिल्कुल जरूरी बिल्कुल है। निश्चित रूप से। और जब इसमें परिवर्तन आएगा, देखिए फिर मैं यहाँ पर कानून से, चूंकि कानून से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं बात करूंगी कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए भी एक्ट बना हुआ है। बहुत सारे एक्ट बहुत हैं, लेकिन यहाँ ऐसे विषय हैं ये जिसको हम केवल एक्ट की बात करके ही नहीं ठीक कर पाएंगे, कहीं ना कहीं समाज की जिम्मेदारी। आप कुछ इसमें कहना चाहेंगे?
0: मैं ये कह रही थी कि हमको जड़ से चालू करना है,
1: जड़ क्या है।
0: तो बहुत सारी चीजें आती हैं, ये तो बाद में आता है, लेकिन जड़ यह है कि घर में बच्चों को संस्कार मिलना चाहिए, जैसा कि
1: बिल्कुल
0: ऋचा जी ने कहा। तो जब घर में संस्कार कहाँ से मिलेंगे? एक नारी जो है वो सिर्फ गृहिणी ही नहीं है, वो सिर्फ बच्चों की जननी ही नहीं है, वो परिवार और समाज की धुरी है। सारा परिवार उसके चारों तरफ दौड़ता है, उसके जो संवेदन सूत्र होते हैं नारी के, वो सारे घर को बांधे रहते हैं। जैसे एक पहिया जब
1: गाड़ी का निकल जाता
0: तो सारी तीलियां बिखर जाती
1: हैं। बिल्कुल।
0: ऐसे एक नारी में अगर कहीं भी कोई कमी है तो सारा घर को बिखरते हुए
1: तो उसे सशक्त बनना होगा।
0: हमको नारी को सशक्त बनाना है। कोई समाज, कोई देश कितना सभ्य है, कितना सुसंस्कृत है, यह वहाँ की नारी से प्रतिबंधित।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। अब मेरे ख्याल से जैसा आपने कहा शीला जी और शताब्दी जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम चाहे कानून की बात कर लें, चाहे समाज की बात कर लें, लेकिन बच्चे की पहली पाठशाला परिवार होता है, और यदि वहाँ पर अनुशासन और उसे सही शिक्षा नहीं दी जाए तो वो अपना जो प्रतिरूप, जो समाज है, वो स्कूल है, वो उसे दूषित करने में भी पीछे नहीं रहेगा। तो कानून की बात हम तब करें जब हम अपने परिवार के बच्चों को सही शिक्षा और सही अनुशासन।
0: कानून बाद में आता है,
1: अनुशासन हमें पहले अपने परिवार से
0: अनुशासन पहले।
1: और इसमें माता पिता दोनों का रोल है।
2: शीला जी ने जो बात कही, डॉक्टर शीला दीदी ने बहुत अच्छी बात कही कि महिला परिवार की धुरी
1: है।
2: इस पॉइंट को, इस बिंदु को हमको समझना चाहिए। और वही मैं ये कहना चाहूंगी कि महिला जो है वो सारथी है, उसमें सारथ्य का भी गुण है, वो नेतृत्व कर सकती है अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे समाज का और पूरे राष्ट्र का।
1: बिल्कुल सही। उन्हें अपने जो परिवार के सदस्यों का सहयोग
0: सबसे पहला पति है। यदि हम अपनी संस्कृति को, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, अगर आप लोग ने उपनिषद और पुराण वगैरह पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है कि हम नारी को अगर सक्षम बनाना चाहते हैं तो हमको संस्कृति से परिचय कराना होगा सबका। दूसरी बात यह है कि हमको नारी को मानसिक रूप से अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकती। शारीरिक

0: नारी रूप से भी। शारीरिक रूप से हम फिर मैं अपने विषय स्वास्थ्य पे आ जाती हूँ कि नारी को स्वस्थ बनाना है हमको, फिर सामाजिक रूप से समाज में उसका क्या स्थान है, नारी दोयम दर्जे की तो नहीं है
1: बिल्कुल।
0: मुझे कहते हुए थोड़ा सा बुरा लगता है, दुख लगता है कि हमारे समाज में हिंदुस्तान में नारी को दोयम दर्जा प्राप्त है, लेकिन अगर हम सनातन युग में जाते हैं तो हम देखते हैं जो ऋषि मुनि की स्त्रियां होती थी वो भी बहुत बड़ी
2: विदुषी बराबर से, बिल्कुल वो
0: बराबर से
2: बैठ करके वो शास्त्रार्थ करती थी।
0: उस समय नहीं था। दूसरा युग आया जब त्रेता द्वापर एंड कलयुग, तो उसमें भी देखिए, लेकिन जो ह्रास संस्कृति का हुआ है, जो नारी का अपमान हुआ है, जो नारी को जो दोयम दर्जा मिला है, जो नारी को एक मांस का लोथा समझा जाता है, वो कलयुग की देन है। और कलयुग की जो देन है वो हमारे आक्रमणकारियों की देन, इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है।
1: लेकिन शीला जी, आक्रमणकारियों के हम लोग मानते हैं हमारा वो है, लेकिन आज के युग में हमारे पास इतने साधन है अपनी मानसिक को स्वस्थ रखने, मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए कितने लोग इतने अलर्ट रहते हैं, अरे भी हमें योग करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा हम लोग को मानसिक स्वस्थता रखने पर भी ध्यान देना जरूरी है।
2: नहीं, कहा बहुत अच्छा विषय आपने लिया कि मानसिक स्वास्थ्य
0: सामाजिक स्वास्थ्य और
3: असली में इंदु जी सबसे बड़ी बात ये हो जाती है यहाँ पे, अगर हम मनोविज्ञान के हिसाब से देखें तो सीखने की जो प्रक्रिया है ना, बच्चे जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने की प्रक्रिया सतत जारी रहती है। तो जैसे ही इन्होंने जैसे आक्रमणकारियों का जिक्र किया है या चाहे मीडिया है, तो जितनी बार इस तरह की खबरें आती हैं कहीं ना कहीं इंसान सीख रहा होता है, और ये गलत चीजों की भी लर्निंग वैसी होती है जैसे कि अच्छी चीजों की होती है। तो जितना जितनी इस तरह की केसेस निकल के आती है, और इसको अगर मीडिया ज्यादा प्रोजेक्ट करे या ये अलग रूप से अगर सामाजिक रूप में इसकी चर्चाओं का विषय ये ज्यादा बने, तो उसका हम कहते हैं इसको फिर से रीइन्फोर्स कर दिया गया है, तो वो दिमाग पे और ज्यादा असर डालती है और वो फिर उस और दिमाग जाने लगता है, एक विकृति की ओर दिमाग बढ़ने लगता है।
4: नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सारी परिस्थितियों को समझते हुए भी वर्तमान परिवेश में एक माँ, एक परिवार की जो नेतृत्व करने वाली महिला है, वो किस तरीके से अपने परिवार में महिला सुरक्षा के लिए, अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपने आसपास की महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपनी भूमिका निभा सकती है, इस पर वर्तमान समय में चिंतन करना चाहिए। इस आधुनिक युग में सारी सुख सुविधाओं के साथ, सारे नॉलेज, सारे इंटरनेट और सभी चीज का उपयोग करते हुए किस प्रकार से एक महिला अपनी सुरक्षा, अपने आसपास की महिलाओं की सुरक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए अपनी क्या भूमिका निभा सकती है, इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए।
1: हमारी इस परिचर्चा का विषय बहुत विस्तृत है, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है। आप परिचर्चा में सारे सहभागियों से मेरा अनुरोध है कि इस विषय की महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं को आप बताएं।
0: जैसा कि मैंने कहा कि हमको अगर हम अपनी संस्कृति को कायम रखना चाहते हैं तो हमें नारी को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाना होगा, तभी वह बच्चों को अच्छे संस्कारों से पोषण करेगी और सामाजिक पर्यावरण को स्वस्थ बनाएगी, जैसा आपने कहा था। अब बच्चे जब हैं, अगर बच्चे आलोचना के साथ पलेंगे तो वो नकारना सीख जाएंगे
1: जी,
0: अगर आक्रामकता के साथ पले तो लड़ना सीखेंगे
1: जी,
0: अगर उपहास उनके बचपन का साथी बना तो शर्मिंदा रहेंगे
1: जी,
0: अगर अपमान उनको मिलता रहा तो अपराध बोध पालना सीख जाएंगे।
1: बहुत सही जी।
0: उन्हें सब्र दिया तो सहनशीलता के अंकुर उगेंगे, उनके मन में
1: बिल्कुल सही
0: वृक्ष बन जाएंगे फिर वो सहनशीलता के। अगर उनका उत्साह बढ़ाया तो आत्मविश्वास के सोते बनेंगे, अगर आत्मविश्वास के सोते बनेंगे, तारीफ मिली तो सदा सकारात्मक सोचेंगे
1: जी, बहुत सही।
0: ईमान सिखाया तो न्याय को पहचानेंगे, उन्हें सुरक्षा दी तो विश्वास करना सीखेंगे
1: जी,
0: उन्हें सहमति मिली तो खुद को और दुनिया को प्यार से स्वीकार करना सीखेंगे।
1: बहुत सही।
0: अगर अनुशासन का सबक बच्चों को दिया जाए तो वसुधैव कुटुंबकम का पाठ सीख जाएंगे।
1: शताब्दी जी, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बहुत सही, डॉक्टर शीला जी ने तो पूरा सार संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया, और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि बच्चे अपने माता पिता को देखकर 80% चीजें सीखते हैं और 20% चीजें केवल वो उनसे सुनकर सीखते हैं। तो ऐसे समय में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि बच्चे को किस तरीके से तैयार करें कि आगे जाकर वो महिलाओं के प्रति कैसा नजरिया रखें, और अगर वो बेटी है तो वो स्वयं को किस तरीके से तैयार रखें।
1: और ऋचा जी, आप क्या कहना चाहेंगे?
3: सभी ने मिलकर बहुत अच्छे से इसके सार को समेट लिया है। मैं यही कहना चाहूंगी कि माँ अपनी शक्ति को पहचाने, माँ जाने कि उसका क्या योगदान है इस घर के प्रति, क्योंकि वो जो अपने बच्चे के लिए करती है वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं करती है, वो पूरे समाज के लिए करती है, पूरे देश के लिए करती है, पूरे विश्व के लिए करती है।
1: बहुत सही,
3: ये सब कुछ सिर्फ इसकी माँ के ही हाथ में होता है।
1: और अंत

0: मैं इतना ही कहूंगी कि अगर स्वयं के घर में भी अपराधी या दुराचारी है तो उसे बचाएं या छुपाएं नहीं, बल्कि कानून के हवाले करें। बेटे और बेटी दोनों को स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का अंतर अच्छी तरह से समझाएं। वर्तमान में स्कूल के शिक्षकों को उनकी योग्यता के साथ साथ उनके व्यक्तित्व और आचरण पर उनका चुनाव हो। स्त्रियों की सुरक्षा और सम्मान की सोच और समझ रखने वाले पुरुषों को साथ लेकर चलना होगा। यदि कोई घटना होती है तो उसके विरोध में पुरुष भी आगे आएं और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उसके साथ खड़े रहें। स्कूलों में हर बच्चे को समाज की सही पहचान देनी होगी, उसे अपनी सुरक्षा के तौर तरीकों से अवगत कराना होगा ताकि अपने जीवन में जब वह यौवन के द्वार पर जाएं तो उसे सही दिशा का ज्ञान हो। सुरक्षा और अधिकार के लिए हमारे नारे लगाने या बैठके करने से कोई हल नहीं निकलने वाला। हर वर्ग की महिलाओं को उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों की जानकारी से अवगत कराना होगा, वरना हर साधारण स्त्री को अपने आत्मसम्मान, अपनी सुरक्षा के लिए आज भी सदी दर सदी संघर्ष करना होगा और द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग हर युग में दोहराया जाएगा। बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी परिचर्चा का समापन कर रहे हैं। आज हमारी परिचर्चा की सहयोगी थी श्रीमती शताब्दी पांडे, डॉक्टर शीला गोयल, श्रीमती ऋचा शाह। आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद,
0: नमस्कार।
1: सुन रही थी परिचर्चा, विषय था महिला सुरक्षा में परिवार और समाज की भूमिका। प्रतिभागी थी श्रीमती शताब्दी पांडे, डॉक्टर शीला गोयल और ऋचा साहू, और संचालनकर्ता थी इंदु चटर्जी। और अब बहनों, बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर, सुनते हैं तरन्नुम।

अभी आप सुन रहे थे क्रम तरन्नुम में मिताली सिंह की आवाज में कतिल राजस्थानी के बोल, और संगीत था भूपेंद्र सिंह का। और बहनों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति सरिता मिश्रा को। नमस्कार।

शहरी महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मासूम का गीत, आवाज़ है आर

0: स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: आइए अब आपको सुनवा रहे हैं ये अगला गीत आशा भोसले की आवाज में। संगीतकार हैं आर डी बर्मन, गीतकार हैं गुलजार और फिल्म का नाम है इजाजत।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर।

चित्रपट संगीत के अंत में लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के स्वर में फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत बद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने को हैं। समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने

0: वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिसकर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्षद शिक्षक का वेतन ₹5,000 बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में ₹5,000 की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज CISF के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि

0: एसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चार दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन आज शाम दो दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बॉर्डर का ये गीत। गायक कलाकार हैं सोनू निगम और अलका याग्निक। गीतकार हैं जावेद अख्तर। संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टर बोल रहा हूँ सर।

0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
1: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
4: सुनिए

लीजिए सुनिए फिल्म जुदाई का ये गीत। आवाजें हैं हरिहरन, अलका याग्निक और जसपिंदर नेरुला की। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हूँ, फिर पढ़ के भुला जाते हूँ।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब थोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: तो काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एकर असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना, तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 बजे तक चलते, जेमा तैं मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत अलका याग्निक की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं जतिन ललित और फिल्म का नाम है दिल क्या करे।

चित्रपट संगीत के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, शब्द रचना इंदिवर की है, संगीतकार हैं राजेश रोशन और फिल्म है कोयला।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने बजट पेश। विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनबीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों

के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाणी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां थी और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में

0: के ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां थी और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक चल रही है। 2 दिन के इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ. जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सेसेक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस टूर्नामेंट में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड आपका अपना साथी, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब समय है मन भावन का, जहां पर आप भेजते हैं अपनी फरमाइशें, अपने संदेश अपने ईमेल्स के जरिए और व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753, यानी 9868868753। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldaird@gmail.com। तो जल्दी से आप भेज सकते हैं अपने संदेश हम तक। और मैं बता दूं, आपके साथ मैं हूं रजनी। और देखिए, जैसे हमने अपना एड्रेस बताया आपको, आपके संदेश भी हम तक पहुंचने शुरू हो गए। सेक्टर 66 मोहाली चंडीगढ़ से हमें संदेश मिला है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का। और कालका से हमारे साथ हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। और ये सभी सुनना चाहते हैं धरती फिल्म का गीत, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। तो आइए इसी गीत के साथ शुरुआत करते हैं आज के मन भावन की।

आप क्या सोचते हैं फिल्म गोल के बारे में? अपने दिल की बात हम तक पहुंचा रहे हैं आप अपने संदेशों के जरिए। जैसे कि ऊपर कोट मोहल्ला चुखंडे बुलंदशहर से हमें संदेश मिला है, मोहम्मद सईद अब्बासी, निकट परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों का। इनके अलावा सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोड़ाना ने संदेश भेजा। अगला पैगाम गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने भेजा है। इनके बाद हमें संदेश भेजने वाले हैं बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष

आजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। और अगला संदेश हमें मिल रहा है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया का, स्टेशन रोड जमशेदपुर से। और इनके बाद जो संदेश हमें भेजा है ये हमें मिला है फाजिल्का पंजाब खेड़ा परिवार से, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालनी खेड़ा, तिवांशी खेड़ा ने, इन सब ने ये संदेश अब तक पहुंचाया। और ये सभी सुनना चाहते हैं खिलौना फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं आवाज़ एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी की।

संभार गले श्रीरामपुर से हमें सुन रहे हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले और पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने हमारे साथ हैं। इनके बाद संदेश हमें मिला है मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम पटेल, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल का। इनके अलावा हमें सुन रहे हैं किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। अगला संदेश भेजा है हमें हरियाणा रोहतक से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा ने। इनके बाद मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला हमारे साथ हैं और फैज़ अहमद, शकीर मुल्ला जी, साबिर मुल्ला जी, रफीक मुल्ला जी।

हमें संदेश भेज रहे हैं बारगढ़ बेल हुबली कर्नाटक से, और इनके अलावा विमला अनेजा और सतीश अनेजा हमें सुन रहे हैं कहाँ से, चंडीगढ़ से इनका संदेश मिला। और इनके अलावा उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश हैं, और ये सुनना चाहते हैं एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का गीत। तो लीजिए आपके लिए आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ में आपकी पसंद का गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
6: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
7: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
6: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
7: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जारी है आपका अपना मन भवन और आपके संदेशों का सिलसिला लगातार जारी है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां हमें संदेश भेज रहे हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और इनके बाद जो संदेश मिला है हमें वो है वीरम गांव गुजरात से। अजीत भावसार, प्रमिला बहन भावसार, भावेश कुमार, सनी जैमिन कुमार भावसार का, और ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला रायगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद दान ने संदेश भेजा। इनके बाद इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम, मरियम जैनब कस्बा बिलराम से हमें सुन रहे हैं, और गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्षर और दीपक का संदेश, दीपल का संदेश मिला। और इनके बाद ज्योति मक्कर, संदीप मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत मक्कर, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से संदेश भेज रहे हैं और ये सुनना चाहते हैं एक गीत जिसकी फिल्म का नाम इन्होंने मुझे लगता है गलत लिखा है। ये जो चिलमन है गीत सुनना चाहते हैं जिसकी फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी और जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

दीपांशु खोरवाल, अमन खोरवाल और जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल हमें सुन रहे हैं होली चौक उत्तम नगर से। इनके अलावा हमें संदेश मिला है ए के झा, शेख अल्लाह बख्श, दुर्गा प्रसाद सैनी का, मधुबनी बिहार से। इनके बाद जो संदेश हमारे पास आया है वो है स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नंगली डेडी नजफगढ़ से, मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और टुकटुक का। साथ ही भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति पौरुष, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से हमारे साथ हैं। और इनके अलावा सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग और सैयद मसरूर हमें सुन रहे हैं। पटियाली रोड गंज ढूंढवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और बेबी अरिबा हबीबा ने संदेश हमें भेजा। गंज ढूंढवारा से ही शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान शेख और अनु खान ने संदेश भेजा। और इनके अलावा जो एक और संदेश हमें मिला है ये है शीशपाल वर्धन, गाजियाबाद से हमें संदेश भेज रहे हैं शीशपाल अकेला जी। और इनके बाद सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा गांधीनगर गुजरात से हमें संदेश भेज रहे हैं और ये सुनना चाहते हैं हम दोनों फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज़ में।

दिल तो हमारा भी नहीं भरा आपके संदेश पढ़ते हुए, और पूरी उम्मीद है कि आपका भी नहीं भरा होगा आपके संदेश भेजते हुए और आपके फरमाइश के गीत सुनते हुए। लेकिन क्या करें, वक्त का जो इशारा है उसे तो मानना ही पड़ता है, उसे सुनना ही पड़ता है। तो फिलहाल रजनी को मन भावन से इजाजत दीजिए, कुछ ही देर में आप सुन सकते हैं समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बाघुआ पार, बुधपांक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा, गुनपुर, लांजीगढ़ रोड, जूनागढ़ और बोबिली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर के सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलेंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय 2,000 रुपये बढ़ाया गया है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का भी प्रस्ताव है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है

किस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि तमिलनाडु के जल अधिकारियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल और कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था।

0: आयोग ने ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक हो रही है। दो दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेतेग बटमुंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में हुए बदलावों से शासन और प्रशासन में जनता का विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाखों नागरिकों का जीवन अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और गरिमामय बनाने में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के लेख को साझा करते हुए कहा कि जनता का विश्वास सुशासन की सबसे बड़ी पूंजी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवाद सत्र में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि उनमें से कुछ लोगों की हालत बहुत गंभीर है। इस बीच अधिकारियों ने प्रतिकूल मौसम और बादल गरजने के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस टूर्नामेंट में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today said that the changes that have taken place over the past 12 years have succeeded in strengthening people's faith in governance and administration. He added that it also played a crucial role in making the lives of millions of citizens more convenient, secure and dignified through public welfare schemes. The Prime Minister said this while sharing an article written by Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal in a social media post. Mr. Modi further said that public trust is the greatest asset of good governance. The article written by Mr. Goyal highlights the journey of good governance, public welfare and the positive changes in the lives of the poor during the 12 years of the central government under the leadership of Prime Minister Modi. The BJP-led West Bengal government today presented its first full budget for 2026-27 with a strong focus on social welfare, infrastructure development and employment generation. The budget also announces several women-centric initiatives. Presenting a deficit budget of 6,070 crore rupees, Finance Minister Swapan Dasgupta described it as a roadmap for building a developed Bengal. He said the state's outstanding debt has crossed 8 lakh crore rupees, making financial discipline a key priority. The BRICS National Security Advisors meeting is underway in New Delhi. The two-day meeting, being chaired by National Security Advisor Ajit Doval, brings together security chiefs from the bloc's 11 member countries. These include India, Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and UAE. We have a report.
2: During the meeting, the national security advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme, non-traditional security challenges confronting the world today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. The national security

आकाशवाणी एफएम गोल्ड आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। त्रिशूल फिल्म से गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और यशुदास की आवाज में।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: अगला गीत फिल्म खुदा कसम से, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

0: दानिक मनोवैज्ञानिक, एक पद अनारक्षित, चिकित्सा अधिकारी आयुष, तीन रिक्तियां हैं जिनमें से एक आयुर्वेद के लिए, एक होम्योपैथी के लिए तथा एक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए। इन रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। कार्यकारी निदेशक एम्स गोरखपुर को पदों की संख्या या वर्ग में परिवर्तन भारत सरकार के नियमानुसार करने का अधिकार है। आवेदन पत्र, सभी आवश्यक जानकारियां हासिल कर सकते हैं आप इस वेबसाइट से www.aimsgorakhpur.edu.in। इन भर्तियों से संबंधित कोई भी अन्य सूचना इसी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। नोट कीजिए एक बार फिर वेबसाइट का पता www.aimsgorakhpur.edu.in। कृषि विज्ञान केंद्र तिरुनेलवेली आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वरिष्ठ वैज्ञानिक अथवा प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, विशेषज्ञ बागवानी, विशेषज्ञ पशु विज्ञान और कार्यक्रम सहायक प्रयोगशाला तकनीशियन। विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.rvskvk.org। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, सहायक कुल सचिव पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। एक पद उपलब्ध है जो अनारक्षित है। अन्य आवश्यक योग्यताओं, महत्वपूर्ण तिथियों और सामान्य अनुदेशों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए आईआईटी गोवा की वेबसाइट iitgoa.ac.in/careers-iitgoa। ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 5 जुलाई 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
4: हेलो करिश्मा, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा। I am Abhishek Mukhopadhyay, and with me today is, of course, my co-host Karishma. Well, listeners, he was born in Mussoorie, Uttarakhand, to American missionary parents and worked in Indian cinema. He was best known for his works in Hindi cinema and Indian theatre. And in 2008, he was awarded the Padma Shri by the Government of India. Yes, he's none other than Thomas Bidge Alter, or Tom Alter, the true Renaissance man in Indian cinema. And today happens to be his birth anniversary, and we shall talk about him later in a program. But first, we begin with the news headlines at this hour.
3: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा।
4: BRICS National Security Advisors meeting underway New Delhi today to discuss emerging security challenges.
3: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे, आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता की।
4: यूके प्राइम मिनिस्टर कियर स्टार्मर रिजाइन्स फ्रॉम द पोस्ट एंड एज लेबर पार्टी लीडर। आईएमडी फोरकास्ट हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल ओवर असम एंड मेघालय टुडे।
3: और फीफा विश्व कप में मिश्र ने न्यूजीलैंड को

0: 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की।
1: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Rainforest Day and World Camel Day. Well, Karishma, we are celebrating something that affects every single one of us, even if we have never stepped foot inside one.
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे यानी कि विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जा रहा है। यह एक ग्लोबल दिन है जो वर्षा वनों की अहमियत और हमारे ग्रह के भविष्य के लिए उन्हें बचाना क्यों जरूरी है इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।

0: तो अब जब आप रेन फॉरेस्ट डे यानी कि वर्षा वन दिवस शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे पक्षी या शायद एक डाल से दूसरी डाल पर झूलते हुए बंदर?
1: Or those natural documentaries where every corner of the forest seems alive with fascinating creatures. But rainforests are much more than beautiful landscapes. They're one of Earth's most powerful life support systems.
0: बिल्कुल, और असल में रेन फॉरेस्ट को पृथ्वी के फेफड़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे विशाल वन क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन देते हैं।
1: And for good reason, they help produce roughly 20% of the world's oxygen, making them vital for life on a planet.
0: जरा सोचिए, हमारी हर सांस किसी न किसी तरह इन विशाल हरे भरे वनों पर कहीं न कहीं निर्भर करती है।
1: So as concerns over climate change, biodiversity loss and deforestation continue to grow, World Rainforest Day serves as a reminder that these forests are not just distant wilderness. They influence the air we breathe, the water we drink and the stability of the planet itself.
0: और कई आधुनिक दवाओं में ऐसे तत्व होते हैं जिनकी खोज मूल रूप से वर्षावनों के पौधों से हुई थी। शोधकर्ता संभावित इलाज और चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोजों के लिए वर्षावनों की जैव विविधता का अध्ययन करते रहते हैं।
1: So when rainforests are healthy, they help keep a planet's climate balanced.
0: और इसके साथ ही वर्षावन दुनिया भर में लाखों लोगों की आजीविका का सहारा भी हैं, जिनमें वे आदिवासी समुदाय भी शामिल हैं, जो पीढ़ियों से इन इकोसिस्टम के साथ तालमेल बिठा कर रहते हैं।
1: So that's incredible. More than half of the terrestrial plant and animal species call rainforest home.
0: और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अनुसार हाल के वर्षों में दुनिया ने लाखों हेक्टेयर ट्रॉपिकल प्राइमरी रेन फॉरेस्ट खो दिए, जिसका मुख्य कारण खेती, लकड़ी काटना, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है। इनमें से कई जंगल सदियों से मौजूद हैं, इसलिए इनके विनाश की भरपाई करना किसी इंसान की जिंदगी में मुश्किल या नामुमकिन है।
1: एंड द कॉन्सिक्वेंसेस एक्सटेंड फार बियॉन्ड द फॉरेस्ट देमसेल्व्स। रेनफॉरेस्ट स्टोर वास्ट अमाउंट्स ऑफ कार्बन दैट वुड अदरवाइज़ रिमेन इन द एटमॉस्फेयर। व्हेन ट्रीज आर कट डाउन और बर्न, दैट कार्बन इज रिलीज्ड, कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज।
0: और वे बारिश के पैटर्न को भी नियंत्रित करते हैं, वाटर शेड की सुरक्षा करते हैं और लाखों लोगों को भोजन, दवा और आजीविका प्रदान करते हैं। वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी है कि लगातार हो रही पेड़ों की कटाई अमेज़न जैसे अहम इकोसिस्टम को इकोलॉजिकल टिपिंग पॉइंट ऐसे नाजुक मोड़ के करीब धकेल सकती हैं जहां से उनके लिए उभरना मुश्किल हो सकता है।
1: So to conclude, India has been making significant efforts to restore and expand its forest cover through large-scale afforestation and conservation initiatives. One notable campaign, Ek Ped Maa Ke Naam, which encourages citizens to plant a tree in honor of the mothers, combining environmental responsibility with an emotional and personal connection. Prime Minister Narendra Modi has said that Ek Ped Maa Ke Naam is an extraordinary initiative that truly exemplifies Jan Bhagidari.
2: पर्यावरण संरक्षण की भावना आज बड़े स्तर पर भी दिखाई दे रही है। इसी सोच के साथ देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से आज करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। ये बताता है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब लोग ज्यादा जागरूक हैं और किसी न किसी रूप में अपना योगदान देना चाहते हैं।

0: तो इसके साथ ही पूरे देश में सरकारें, समुदाय और पर्यावरण संगठन हरियाली बढ़ाने, खराब हो चुके जंगलों को फिर से ठीक करने और जैव विविधता की रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि हरियाली से भरे भविष्य को पाने के लिए लोगों को सक्रिय भागीदारी करना जरूरी है।
1: एंड सिटीजंस कैन कंट्रीब्यूट बाय प्लांटिंग नेटिव ट्री स्पीसीज, क्रिएटिंग मिनी अर्बन फॉरेस्ट यूजिंग द मियावाकी टेक्निक, participating in local plantation drives, reducing paper waste, supporting sustainable products, conserving water and protecting existing green spaces in the neighborhoods.
0: और छोटे छोटे काम भी, जैसे कि पौधे की देखभाल करना, कम्युनिटी गार्डन की देखरेख करना या परिवार और दोस्तों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, मिलकर भारत की इकोलॉजिकल क्षमता को मजबूत करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित करने में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
1: सो एज वी सेलिब्रेट वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे टुडे, लेट्स रिमेंबर दैट दीस फॉरेस्ट वर्किंग राउंड द क्लॉक, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, सपोर्टिंग बायोडायवर्सिटी, regulating climate and helping sustain life on earth, and they need a support just as much as we depend on them.
0: और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम एक ऐसे अद्भुत जानवर का भी जश्न मना रहे हैं जिसने धरती के कुछ सबसे मुश्किल इलाकों में इंसानों को फलने फूलने में मदद की है।
1: It's World Camel Day, a day dedicated to recognizing the incredible resilience and importance of camels, often fondly known as the ships of the desert.

0: और श्रोताओं, इसी के साथ जब कोई ऊंट शब्द का इस्तेमाल करता है तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? अभिषेक, आपसे भी यही सवाल।
1: Yes, for me, Karishma, it's endless golden sand dunes and a caravan slowly making its way across the desert.
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज कहे जाने के पीछे एक वजह है। जैसे जहाज लोगों को समुद्र पार कराने में मदद करते हैं, वैसे ही ऊंट सदियों से लोगों को विशाल रेगिस्तान पार करने में मदद कराते आ रहे हैं।
1: But camels are much more than a means of transport. World Camel Day highlights the vital contributions to food security, ecosystem management and the cultural traditions of arid regions around the world.
0: तो आइए भारत की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऊंट भारत के रेगिस्तान इलाकों की एक खास पहचान है?
1: Absolutely, they are specially associated with the states of Rajasthan and Gujarat, where they are deeply woven into local culture, tourism and traditional livelihoods.
0: और सच कहें तो राजस्थान आने वाले कई सैलानी थार रेगिस्तान में ऊंट सफारी का अनुभव करने का सपना भी देखते हैं।
1: एंड फॉर लोकल कम्युनिटीज, कैमल्स हैव बीन ट्रस्टेड कंपेनियंस फॉर जनरेशंस, हेल्पिंग विद ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड डेली लाइफ इन चैलेंजिंग डेजर्ट कंडीशंस।
0: और हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल यहाँ पर है कि भारत में पाए जाने वाले सबसे आम ऊंट कितने कोबड़ उनके होते हैं?
1: इफ यू गेस्ट वन हम्प, यू आर करेक्ट। India's camel population primarily consists of a single humped dromedary camel found largely in Rajasthan and Gujarat.
0: लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है श्रोताओं। भारत में एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति भी पाई जाती है। ये है दो कोबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट, जो लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान इलाके में भी मिलते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले अपने दूसरे साथियों के उलट ये ऊंट जमा देने वाली ठंड और उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में भी जिंदा रहने के लिए ढल चुके हैं।
1: So nature really is amazing. The same animal family thriving in both scorching deserts and icy high altitude regions.
0: तो सदियों से ऊंट पशुपालक समुदायों का सहारा रहे हैं। पारंपरिक रूप से इन्हें दूध, ऊन और परिवहन के लिए पाला जाता है, और जिससे ये आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन भी बन गए हैं।
1: And here's a fascinating fact. Traditional knowledge suggests that camels in India forage on nearly 36 different native plants, many of which are used in Ayurvedic medicine.
0: और इस अनोखे खान पान की वजह से ऊंटनी के दूध को अक्सर सेहत के लिए खास फायदेमंद माना जाता है, और कई समुदाय इसे बहुत महत्व भी देते हैं।
1: Yes, and unfortunately, despite the importance, camel populations are facing challenges.
0: और कई इलाकों में ऊंटों की संख्या में तेजी से कमी भी आई है पीछे, और उनके प्राकृतिक आवास का खत्म होना भी एक कारण है, जिसमें जमीन के इस्तेमाल के तरीकों में बदलाव और आधुनिकीकरण जैसे कारण शामिल हैं।
1: Which means, Karishma, protecting camels isn't just about conserving an animal, it's about preserving a rich cultural heritage

0: ट्रेडिशनल नॉलेज एंड सस्टेनेबल डेजर्ट लाइवलीहुड्स।
1: तो चाहे राजस्थान के रेगिस्तान रेत को पार करना हो या फिर लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानों में सफर करना हो, ऊंट हमेशा प्रकृति के ढलने और टिके रहने की अद्भुत क्षमता की याद दिलाते रहते हैं।
0: President Draupadi Murmu will present Padma Awards for the year 2026 at the second Civil Investiture Ceremony tomorrow. On this occasion, we bring 15 special programs as part of a series, People's Padma, on Akashvani.
2: I've been working for the last 25 years on traditional Siddha-based ethno-veterinary medicine to counteract some of the issues affecting the livestock production in India.
3: But as a country, we need a microprocessor that should be indigenously developed.
4: Award is an acknowledgement to the great teamwork from DRDO and industries, inspection agencies.
0: Yes, and in these episodes, listeners will get an insight into the work and life of Padma awardees. These programs will be broadcast today and tomorrow on 100.1 Akashvani Gold. They can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. So stay tuned to Akashvani today and tomorrow from 9:10 a.m. onwards. And in our bilingual live phone-in program Public Speak tonight at 9:30 p.m., we will bring an insightful discussion on Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, employment opportunities for youth, with Purnendu Bhushan Verma, Additional Central Commissioner, EPFO. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone numbers 011-2331-0481, 011-2371-7117, 011-2371-7106 and 011-2331-4444 from 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044 or post your questions on X with hashtag AskAIR.
1: और इसके साथ ही श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। और सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम को स्वच्छ, सुंदर और कचरा मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे कैरी मी बैग अभियान को श्रद्धालुओं का व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं देहरादून से हमारे सहयोगी।
5: कैरी मी बैग अभियान के तहत श्रद्धालुओं को अपने साथ लाए गए प्लास्टिक, पानी की खाली बोतलें, खाद्य सामग्री के रैपर और अन्य गैर जैविक अपशिष्ट को केदारनाथ धाम में न छोड़कर वापस नीचे लाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम में तैनात कार्मिकों तथा स्वयं सेवकों द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाकर श्रद्धालुओं को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है, जिसका सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देने लगा है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा का कहना है कि केदारनाथ धाम की बनाए रखना केवल प्रशासन का दायित्व नहीं बल्कि समाज की भी साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कैरी मी बैग अभियान ने लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ जन भागीदारी आधारित कचरा प्रबंधन का एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया है। जिला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से केदारनाथ धाम की पवित्रता और हिमालय की प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने और अपने साथ कचरे को वापस नीचे गौरीकुंड लाकर इस अभियान को सफल बनाने में योगदान देने की अपील की है। कैरी मी बैग अभियान में श्रद्धालुओं की बढ़ती भागीदारी बेहद उत्साहजनक है और 2 टन से अधिक कचरे को धाम से नीचे लाए जाना इस बात का प्रमाण है कि जन सहयोग से बड़े और सकारात्मक बदलाव संभव है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से संतोष थपलियाल।
0: गवर्नर ऑफ सिक्किम फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रीज अंडरटेकिंग द सेक्रेट पिलग्रिमेज टू माउंट कैलाश एंड लेक मानसरोवर ऑन द 20th ऑफ दिस मंथ फ्रॉम नाथुला। वी हैव मोर फ्रॉम अ कॉरेस्पोंडेंट।
6: Governor of Sikkim Om Prakash Mathur flagged off the first batch of Kailas Mansarovar Yatris from Nathula on 20th June. Regarded as one of the most revered pilgrimages in the Hindu faith, the Yatra takes devotees to Mount Kailash and Lake Mansarovar, located in the Nimot Nagri Prefecture of the Tibet region. The first batch comprises 41 Yatris, including 2 Liaison officers and 1 medical officer, along with 4 additional support staff, taking the total strength of the contingent to 47 persons. As per the schedule, the Yatris reached Gyanze on 28th.

0: के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले अमरीश पुरी की जयंती है और 4 दशक से अधिक लंबे समय तक अपने करियर में उन्होंने करीब 450 फिल्मों में अभिनय किया था और इसके साथ ही फिल्म मिस्टर इंडिया में निभाया गया उनका मोगैम्बो का किरदार आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय है।
1: ये करोड़ों रुपया दूसरी तबाहियों और बर्बादियों के काम में लगाते रहो। हिंदुस्तान में ये तबाहियां, ये बर्बादियां, ये लूटमार, ये दंगे, ये फसाद, ये हंगामे, ये सब कुछ अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मोगैम्बो का ख्वाब सच्चा हो जाएगा।
2: Yes, and renowned for his booming baritone voice, piercing screen presence and intense expressions, he completely redefined the dynamics of the Bollywood antagonist. Over a prolific career spanning nearly 4 decades, he appeared in over 400 films across multiple languages, including Hindi, Punjabi, Telugu, Kannada, Tamil, Malayalam and Marathi. Let's go ahead and listen to yet another dialogue from one of his hit movies.
3: Is college ko sabse zyada donation maine di hai, maine 10 lakh!
1: मिस्टर ब्रजलाल तिवारी, ये चेकबुक मैं तुम्हारे मुंह पर भी मार सकता था, लेकिन कीचड़ में पत्थर मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें 10 लाख रुपए का चेक तुम्हारे नाम का है, निकाल लो।
4: कौन है आप?
1: नागेश्वर।
0: और इसके साथ ही आज हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल की पुण्यतिथि है। केदारनाथ अग्रवाल हिंदी कविता में प्रगतिशील चेतना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते थे और आपको बता दें कि हिंदी साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
2: Yes, and Mary Louise Meryl Streep is an American actress widely regarded as one of the greatest and the most versatile performers in cinema history. Born today in Summit, New Jersey, she has maintained an extraordinary professional longevity that spans over 5 decades. Celebrated for her impeccable technical precision, command over complex dialects, and masterly facial expressions, Streep holds the unprecedented industry record for the most Academy Award nominations of any actor with 21 nods and 3 wins. Yes, and also Karishma, Dan Brown was born on this day. He's a best-selling American author, best known for his first-page thriller novels that blend cryptography, art history, and conspiracy theories. So with that, it's a wrap on this edition of Parikrama.
0: Namaskar.
2: Namaskar.
5: Medium wave 305.8 meter, yani 981 kilohertz, or FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ही रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट।

0: के साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया अरचोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये इंदरपुर नीलकंठपुर हरिहरपुर शिवपुर महावीरगंज पेंडारी कोटराही तनवारी भगवानपुर नवापारा चांची खोडरो उधवा कटरा मंदरी डांड झींगा डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर लुंड्रा सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये सकाल

हेलो किशुनपुर घंघरी कुल्हाड़ी कंचनपुर खलीबा पड़ौली जमीरा मसगा डांडपारा चाउरपानी बांसाझाल आमापानी कुड़केल घोघरा मानपुर दांतीढाब गढ़गांव बैगहवा चोरकी पानी कंडराजा घोड़ाघाट नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये नारायणपुर जामचुआ बिलासपुर चरईमारा रानी कोम्बो जामटोली खड़ामाचा हरदीझरिया राजा आमा महेशपुर झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल धर्मजयगढ़ बोरो बाकारुमा लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 159 है। ये कूड़े केला पुरुंगा छाल बोजिया औरानारा बेहरामा लोटान रुपुंगा कोयलार सागरपुर ढोढ़ा गांव केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई जडगा और

0: लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 159 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, रुपुंगा, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गडरा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार नवापारा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तेंदुचुआ, कोठारी, रामपुर, अचानकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: हमर हाथी हमर गोट, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आइए आपको जानकारी दें आज के शेष कार्यक्रमों की। स्पोर्ट्स स्कैन रात 8:30 पर और पब्लिक स्पीक कार्यक्रम रात 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5:10 पर युववाणी कार्यक्रम में आजकल का विषय होगा विश्व वर्षा वन दिवस और होंगे क्रम हेलो युववाणी और दृष्टिकोण। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे चतुर सेन और रात 8:15 पर कलाकार होंगे सलीम इकबाल। शाम 7:21 पर चौपाल कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा फसल परिवर्तन का आधार श्री अन्न मिलेट। आज की सलाह में फल और सब्जी में पादप हार्मोन विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर गागेंद्र सिंह राजपूत। रात 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम सुरों का सफर। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा प्रभा अत्रे का गाया राग जोग कौस में ख्याल। चित्रपट संगीत सुनिएगा शाम 7:00, रात 8:00, रात 9:15 पर। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। आइए अब आपको जानकारी दें कल के कार्यक्रमों की। कल सुबह 8:30 पर प्रसारित करेंगे कार्यक्रम मोर भुइयां। इसमें सुनिएगा पुरातात्विक स्थल मल्हार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व विषय पर श्री संजीव पांडे ले महेंद्र साहू के गोठबात। उजाले की ओर ये प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित करेंगे सुबह 10:00। नमस्कार रायपुर सुनिएगा सुबह 7:05 पर। कल सुबह 9:00 सुनिएगा कार्यक्रम अजी सुनिए, आलेख श्री राजकुमार शर्मा, प्रस्तुति समीर शुक्ल। कल सुबह 11:05 पर कन्नड़ भाषा में सुनिएगा समूहगान शिक्षा कार्यक्रम, रचनाकार होंगे बीआर गीता। आप मन के गीत कार्यक्रम सुनिएगा कल दिन में 12:30 पर। कल दोपहर 1:30

मिनट पर घर आंगन कार्यक्रम में आज के गुट का विषय होगा आवाओ बरखा के स्वागतकरण। डॉक्टर के सुझाव में सुनिएगा प्राकृतिक चिकित्सा हमर स्वास्थ्य वरदान विषय पर डॉक्टर योगिता टिकरिया ले संगीता वर्मा की गोट बात। साथ ही सुनिएगा बहिनी बन की चिट्ठी और गीत संगीत। कल शाम 5:10 पर युववाणी कार्यक्रम में अपन गोट का विषय होगा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। साथ ही होंगे क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। कल शाम 7:21 पर चौपाल कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा सतत आय बर पपीता के खेती और भू अधिकार पत्रों का डिजिटलीकरण। हेलो किसानवाणी में त्रिस्तरीय मत्स्य पालन हेतु किस्मों का चयन विषय पर जानकारी देंगी श्रीमती अनुभूति देवांगन। ये थे कल के कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। गुमशुदा संबंधी सूचना सुनिए। तुलसाबाई वर्मा, पति चैतराम वर्मा, उम्र 70 वर्ष, चेहरा गोल, रंग गोरा है, हिंदी छत्तीसगढ़ी जानती हैं। ये 16 नवंबर से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बलौदा बाजार जिला बलौदा बाजार भाटापारा को सूचित करें। गुमशुदा संबंधी एक और सूचना सुनिए। झाड़ू राम चंद्राकर, पिता जीवराखन चंद्राकर, उम्र 65 साल, चेहरा गोल, रंग गोरा है, हिंदी छत्तीसगढ़ी जानते हैं। ये 30 जुलाई 2017 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी थाना सिटी कोतवाली बलौदा बाजार जिला बलौदा बाजार भाटापारा को सूचित करें। गुमशुदा संबंधी सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए युववाणी।

0: जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे प्यार से जीना सीख लो। हर छोटी खुशी में मुस्कुराओ और गम के घूंट को भी हंसकर पीना सीख लो।
1: थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी परवाह, जिंदगी और कुछ भी नहीं। जहां दिल से याद करे कोई, असल में जन्नत वहीं की वहीं।
0: जिंदगी ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे अनमोल उपहार है। ये केवल सांस लेने या दिनों को काटने का नाम नहीं है, बल्कि हर पल को महसूस करने, सीखने और मुस्कुराने का एक जरिया है। उसी जरिए में एक और सिलसिला जोड़ने आज आ गए हैं हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी लेकर। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त काजल साहू,
1: और मैं सृष्टि तिवारी। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार। सृष्टि, हम कितने खुशनसीब हैं ना कि ये प्रकृति हमें मिली है। देखो ना, आज कितनी बारिश हो रही थी, सुबह 12 बजे इतनी तेज धूप, और 2 बजे देखो झमाझम बारिश।
1: झमाझम बारिश काजल, मैं रुक गई रास्ते में और मैं रुक कर इंजॉय करने लगी इस प्यार भरे मौसम को। तुम्हें पता है, मुझे चाय पकौड़ों की इतनी याद आ रही थी, मन कर रहा था आज कहीं रुक कर इस मौसम का लुत्फ उठा लूं।
0: बिल्कुल, और हम इतने नसीब वाले हैं कि हमें बारिश का मज़ा लेने का मौका मिला, क्योंकि आज हम यहाँ आ रहे थे लेकिन हम घर पर भी इस बारिश का मज़ा लेते हैं। क्यों, सही कहा ना?
1: बिल्कुल सही कहा काजल। बारिश का मौसम तो जैसे अपने आप में ही बहुत खूबसूरत ऋतु का आगमन करने वाला, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आने वाला मौसम है।
0: बिल्कुल, और अब देखो, अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो हम इस पूरे मौसम को एंजॉय करेंगे। और ये हमारी खुशकिस्मती है सृष्टि कि हमें ये प्रकृति मिली है। पेड़ों की छांव मिली है, बहती हवाएं मिली हैं।

0: बिल्कुल बिल्कुल काजल, तुम्हें पता है हरी भरी जब धरती होती है ना तो ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी अलग ही तरीके से बहुत खुशहाल है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और सृष्टि प्रकृति के सानिध्य में ना जीवन बिताना एक वरदान से कम नहीं है।
0: बिल्कुल काजल, तुम्हें पता है जहाँ मेरा जन्म हुआ था उसके पास बहुत घना जंगल हुआ करता था।
1: अच्छा।
0: हाँ, और वहाँ कई पशु पक्षी थे जो आपस में मिलकर रहते थे और वहाँ वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती थी। वहां मेरी ऐसी पुरानी छोटी छोटी यादें हैं जहां मैं घर की किनकियों में बैठ के बाहर होती हुई वर्षा को देखा करती थी, लेकिन आज जब मैं उस घर में जाती हूँ और उस जंगलों को देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि वहां के जंगल अब उतने नहीं बचे और अब तो वहां पे वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती।
1: अच्छा, इसका क्या मतलब है कि वहां जंगल नहीं है, ऐसा क्या हो गया भाई?
0: काजल, प्रौद्योगिकी, एक वहां एक औद्योगिक प्रोजेक्ट चलता है। मैं मानती हूँ कि विकसित भारत की नींव है विकास, परंतु पर्यावरण बचाना भी उतना ही जरूरी है ना।
1: बिल्कुल सही कहा सृष्टि, सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी ओर से सतत प्रयास तो कर रही है, लेकिन क्या तुमने वर्षा वनों के बारे में सुना है? क्या तुम्हें पता है आज विश्व वर्षा वन दिवस है?
0: एक सेकेंड रुकिए काजल, मैंने विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में सुना है, पर विश्व वर्षा वन दिवस ये क्या है, जरा हमारे दोस्तों के साथ भी तो साझा करिए।
1: बिल्कुल सृष्टि, विश्व वर्षा वन दिवस 22 जून को पड़ता है जिसे हम आज के दिन यानी 22 जून को मनाते हैं। दोनों दिवसों का मुख्य उद्देश्य यानी कि पर्यावरण दिवस और वर्षा वन दिवस, इसका उद्देश्य है पर्यावरण की संरक्षण करना।
0: अच्छा।
1: वनों के महत्व को और वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना।
0: अरे वाह काजल, ये तो तुमने नई चीज बताई है। अच्छा, हमारे दोस्तों को इसके बारे में जरा विस्तार से जानकारी देना।
1: बिल्कुल सृष्टि, पृथ्वी पर मौजूद वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट कुल ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं। ये जैव विविधता यानी बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का केंद्र होते हैं। हर साल 22 जून को रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप नामक पर्यावरण संगठन द्वारा 2017 से विश्व वर्षा वन दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है।
0: वाह काजल, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं ना कि वन है तो सुंदर सृष्टि है, वन है तो सावन की वृष्टि है, वनों को मत उजाड़ो इंसानों, इनमें ही छिपी जीवन की दृष्टि है।
1: क्या बात है, क्या बात है सृष्टि। लेकिन लगातार वनों की कमी ने आज दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर दी है जिससे हर एक इंसान जूझ रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो पेड़ पौधों का संरक्षण करके इसके असर को कम किया जा सकता है। लेकिन क्या तुम जानती हो विश्व वर्षा वन दिवस की शुरुआत कब हुई और इसे क्यों मनाया जाता है?
0: नहीं काजल, मैं तो ये भी नहीं जानते कि वर्षावन पाए कहां जाते हैं, जरा बताना।
1: दोस्तों और सृष्टि ध्यान से सुनना, वर्षावन भूमध्य रेखा के 10 डिग्री सेल्सियस उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच पाए जाते हैं, जैसे कि अमेज़न का बेसिन, कांगो का बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया जिसमें आता है मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशिया, बॉर्नियो, ये सारी जगहों में। और अगर हम बात करें भारत की तो साथियों, भारत में विश्व वर्षा वन की बात हम कर रहे हैं तो वर्षा वन पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट्स, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं।
0: काफी विस्तृत जानकारी दे रही हैं आप। अच्छा काजल, विश्व वर्षा वन के दिवस की शुरुआत कब हुई थी?
1: सृष्टि, विश्व वर्षा वन दिवस पहली बार 22 जून 2017 को मनाया गया था जब ऑस्टिन टेक्सास में एक स्थित गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप ने वैश्विक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य वर्षा वनों के महत्व और उसके अमूल्य योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।
0: वैसे काजल, देखा जाए तो केवल जंगल पेड़ों का समूह नहीं है, ये तो धरती के फेफड़े हैं और यही प्राणवायु का स्रोत है जो कि जल चक्र का नियंत्रण करते हैं। अनगिनत पशु पक्षियों, जड़ी बूटियों और सूक्ष्म जीवों का घर यही है। हवाएं साफ हो, नदियां स्वच्छ हो, यही तो असली कमाई है। प्रकृति और वनों की रक्षा में हम इंसानों की भलाई है।
1: बिल्कुल, हमारा जीवन पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल ही निर्भर करता है। शुद्ध हवा, उपजाऊ मिट्टी और साफ पानी के बिना मानव जीवन की निरंतरता संभव नहीं है। इस विषय पर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाहोगे सृष्टि?
0: हाँ बिल्कुल, जरूर बताओ।
1: साथियों, भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे योजनाएं लाई हैं जो विश्व वर्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें हरित आवरण की या फिर कार्बन उत्सर्जन, और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर भारत सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है ये वर्षा वनों को बचाने में बहुत सहयोग करते हैं।
0: हाँ काजल, भारत सरकार तो पंचामृत लक्ष्य और मिशन लाइफ के माध्यम से भी ये कर रही है। वो कहते हैं ना, जब तक हरियाली का आंचल इस धरती पर लहराएगा तभी तक इंसान साजों में जीवन का संगीत गाया जाएगा। श्रोताओं, आज है माह का चौथा सोमवार और इस दिन हमारे युवा साथियों को इंतजार रहता है हमारे श्रोताओं के फोन कॉल्स और

0: उनकी पसंद के गीतों का। तो आइए सुनते हैं आप सबका पसंदीदा क्रम हेलो युववाणी। फोन पर श्रोताओं से बातचीत कर रही हैं काजल साहू, प्रस्तुत करता है दीपक हटवार।
1: हेलो युववाणी, हेलो युववाणी।
2: हर लम्हा कुछ कहता है, हर घड़ी कुछ सुनाती है, युवाओं के दिलों की धड़कन ही नया दौर बनाती है। जोश, उत्साह और नई सोच से भरी इस खूबसूरत सी शाम में आप सभी का दिल से स्वागत है युववाणी के खास फोन इन कार्यक्रम हेलो युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त काजल साहू। दोस्तों, ये मंच है आपकी बातों का, आपके विचारों का और आपके अपने अंदाज का। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ पल होने वाले हैं बेहद खास। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और लेते हैं ये पहला कॉल। हेलो युवाणी।
3: हेलो युवाणी, नमस्ते मैम।
2: नमस्ते
3: जी, मैं बेदुराम सिन्हा शीतला पारा केसरापाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ मैम।
2: जी बताइए, कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
3: जी बढ़िया, मस्त बिंदास है मैडम। अभी खेती किसानी का कार्य चल रहा है, धान का नर्सरी लगा चुके हैं और हेलो युवाणी का आनंद ले रहे हैं।
2: जी तो जिस तरह से मौसम बदल रहा है, खेतों में क्या कुछ बदलाव आए हैं?
3: जी खेतों में तो बहुत सारा बदलाव आ गया है, जुताई वुताई हो गए, धान वान बोनी का तैयारी हो गए हैं और कई लोग तो बो भी रहे हैं। और मैं भी धान का नर्सरी लगा चुका हूँ अपना ट्यूबवेल है तो।
2: जी बढ़िया।
3: और अब बारिश का अगोरा हर किसान को है, बारिश जल्दी आ जाए तो काम जोरों तोरों पे चलेगा और बढ़ेगा, इस टाइप का हो रहा है।
2: ये बताइए, पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए?
3: युवाओं का भूमिका तो होना चाहिए मैम, क्या है, पेड़ पौधा सभी चीज लगाएं और जल संरक्षण का भी व्यवस्था करे, इस टाइप का व्यवस्था होना चाहिए।
2: जी
3: युवाओं में तो जागरूकता बहुत कम दिखने को मिलता है, अभी देखने को मिलता है। हाँ, पहले जो बुजुर्ग लोग होते थे उनका जो सिस्टम होता था थोड़ा अलग ही होता था, और अब तो युवाओं में नशा पान की ओर ज्यादा चले जा रहे हैं लोग।
2: जी
3: तो इसमें पर्यावरण के लिए, सुरक्षित के लिए कोई सा मतलब सोच समझ बहुत कम दिखाई देते हैं मेरे को तो।
2: जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: जी मैम, क्या है, हमेशा पेड़ पौधा लगाना चाहिए और जितना हो सके कम पेड़ पौधा काटना चाहिए, और पेड़ पौधा सूखने के बाद ही काटे तो क्या है, उपयोग में लेना चाहिए, कच्चा पेड़ उसको नहीं काटना चाहिए।
2: जी बढ़िया।
3: और पेड़ बिल्कुल एक आध दो पेड़ लगाना चाहिए, और ऐसे नहीं लगा दो और छोड़ दो, लगाकर उसको तैयार करने तक का सेवा करना चाहिए, इस टाइप का।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: मेरा संदेश है मैम।
2: बिल्कुल, बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
3: जी अब बारिश तो बस होने ही वाला है, तो कोई सा भी बारिश वाला गीत बजा दीजिए मोहम्मद अजीज के स्वर में।
2: जी लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का ये गीत
3: है मोहम्मद अजीज के, बारिश का, उसको बजा दीजिए।

0: हेलो युवाणी,
1: मैं कभी चौक शीतला मंदिर वार्ड क्रमांक 1 से डबल कुमार धीवर बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: मैं पेंटिंग करता हूँ मैम। अभी एक पास के गांव में ढौर गांव स्कूल में आया हूँ लिखने के लिए।
0: जी
1: वो योगा वाले बना रहा हूँ, सूर्य नमस्कार का चित्र बना रहा हूँ।
0: बढ़िया, तो इतने दिनों बाद गर्मी की छुट्टियां आप खत्म हो चुकी है और स्कूल खुल गए हैं, तो क्या माहौल है स्कूल का, कैसा लग रहा है आसपास?
1: स्कूल में ही काम कर रहा हूं मैम, अच्छा से माहौल है, बच्चे लोग खुशी खुशी आ रहे हैं यहाँ, ताला प्रवेशी का पूरा उत्सव मना रहे हैं।
0: जी,
1: सब नए नए बच्चे भी आ रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। और सर मैम भी पूरा अभी मिठाई बांटे हैं।
0: जी,
1: नए जो बच्चे हैं
0: जी
1: उनको सब खिलाए अभी।
0: जी
1: और अच्छा माहौल है स्कूल का, और मैं कल से आ रहा हूँ यहाँ लिखने के लिए।
0: जी बढ़िया, बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं नित्य बिना बिजली और जल बिना मछली का गीत सुनना चाहूंगा।
0: जी,
1: खेड़ नाम मोहे।
0: लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो युवाणी
1: जी, नमस्कार। मैं उत्तम सिंह जंघेल आर्यनगर कोहका भिलाई से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल का रिपेयरिंग करते हैं, जैसे टीवी है, रेडियो है।
0: जी,
1: और रेडियो तो आसपास के श्रोता लोग लाते हैं, छोड़ दिए हैं बनाने के लिए। जो बन जाते हैं उसको बना के वापस कर देते हैं।
0: रेडियो आपको कितना पसंद है, कितना प्रभावी माध्यम आपको लगता है?
1: नहीं ठीक है, ये क्या है, एक तो हम दुकानदारी वाले हैं, रेडियो चालू कर देते हैं, चाहे मोबाइल में हो, डीटीएच हो, चाहे अपना रेडियो से।
0: जी,
1: सुनते रहते हैं, अपना काम हो जाता है।
0: जी,
1: और नकारात्मक जो सोच रहता है वो नहीं आ पाता है,
0: बिल्कुल,
1: रेडियो सुनने से। जी,
0: तो आप नियमित आकाशवाणी के कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं और सबसे पसंदीदा कार्यक्रम क्या है?
1: मेरे को आकाशवाणी के प्राय सभी कार्यक्रम सुन लेता हूँ, जो अपना सवेरे 6 बजे चालू कर देता हूँ रेडियो, उधर घर में रहता हूँ तो।
0: जी,
1: दुकान 7 बजे 8 बजे खोलता हूँ।
0: जी,
1: तो डीटीएच चालू कर देता हूँ।
0: जी,
1: एकदम परमानेंट वो चलते रहता है। और पसंदीदा तो मेरे को छत्तीसगढ़ी जो कार्यक्रम आता है, चाहे फरमाइशी कार्यक्रम हो या जो भी कार्यक्रम छत्तीसगढ़ी का,
0: जी
1: उसको ज्यादा पसंद करता हूँ। क्या कि अपना हम लोग गांव से भी में रहने वाले हैं और शहर में भी।
0: जी,
1: तो शहर में एरिया में जैसे बात करने जाते हैं किसी से, साहब से, कोई ऑफिस में,
0: जी
1: तो हिंदी छत्तीसगढ़ी मिक्सिंग हो जाते हैं।
0: जी जी,
1: तो उससे अच्छा छत्तीसगढ़ी पसंद करके छत्तीसगढ़ी में बात करो, कहीं भी जाए, बड़े ऑफिसर हो या कहीं भी हो, जब मुलाकात होते हैं कोई कोई से ना, तो छत्तीसगढ़ी में ही वो बात करते हैं।
0: बिल्कुल, बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मेरे को फिल्म स्वर्ग से सुंदर के गीत है, अब के बरस बरसों के बाद हो, ये वाला गीत सुनना।
0: बिल्कुल, लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो युवाणी
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सुरंग, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से।
0: जी बताइए, कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: हम बहुत अच्छे हैं।
0: बताइए, विदिशा के आसपास क्या घूमने की जगह है?
1: विदिशा की घूमने की जगह है करीरा मार्ग है
0: जी,
1: और कुछ नहीं है घूमने की जगह।
0: वहाँ क्या क्या है?
1: बस एक मंदिर है, उसमें दर्शन करने के लिए जाते हैं पूरे इलाके के आसपास के, भोपाल, इंदौर, विदिशा, आसपास के सब लोग जाते हैं उसमें दर्शन का जाते हैं। मशहूर है, साल भर में एक बिल मेला भराता है
0: जी। बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है दिलवाले, कितना हसीन चेहरा। मौसम कैसा है आपके? दस
0: बढ़िया। लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो युवाणी।
1: हाँ मैं हीरा साहू बोल रहा हूँ, शहीद नगर खमतराई से।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैम, आप लोगों की कृपा है, दया दृष्टि है।
0: क्या करते हैं आप?
1: है, मैं ट्रांसपोर्टिंग करता हूँ जी।
0: जी
1: लारी सप्लाई करता हूँ मैं।
0: क्या?
1: गाड़ी सप्लाई करता हूँ, गाड़ी परिवहन, माल परिवहन करते हैं हम लोग।
0: जी तो कहाँ कहाँ आपकी गाड़ियाँ जाती हैं?
1: अपनी गाड़ियाँ मैम इधर झारखंड में जाती है, रांची, रामगढ़, ये सब।
0: जी क्या यहाँ से आप वहाँ भिजवाते हैं या वहाँ से क्या यहाँ लेकर आते हैं?
1: हाँ रायपुर से झारखंड भेजते हैं गाड़ी हम लोग।
0: जी
1: ये परचून जाता है मैम, पीछे बॉम्बे, अहमदाबाद, ये सब आती है परचून, सब क्रॉसिंग में जाता है।
0: जी
1: यहाँ से भी महुआ वगैरह जाता है।
0: जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं सुनना चाहूँगा फिल्म हमराज का।
0: जी
1: महेंद्र कपूर साहब की आवाज में। नमु छुपा के जियो और न सर झुका के जियो।

0: हेलो युववाणी।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं टिकेश्वर ध्रुव बोल रहा हूँ। गरियापन के पास एक छोटा सा गांव है, फुड़गांव, वहीं से।
0: जी, कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: मैं खेती बाड़ी के काम करता हूँ।
0: मॉनसून अब बस आने वाला है, तो किस तरह की तैयारियाँ आपके खेतों में आपने की हुई है?
1: हाँ, खेत तैयारी हो गए, बस मैडम बारिश का इंतजार कर रहे हैं।
0: जी, क्या क्या बोते हैं आप अपने खेतों में?
1: धान की खेती करते हैं मैडम।
0: इसके अलावा?
1: बस धान की खेती करते हैं। ये मुझे गाना सुनना है मैडम।
0: जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: रंग फिल्म का कोई भी गाना सुना दीजिए।
0: जी लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का ये गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हमेशा खास बन जाती है। दोस्तों, इसी के साथ आज की युववाणी फोन इन कार्यक्रम हेलो युववाणी यहीं तक। आज की बातें, आपके विचार और पेश किए गए गीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। हेलो युववाणी का प्रसारण माह के दूसरे और चौथे सोमवार को होता है और अब से इसकी रिकॉर्डिंग परिवर्तित दिवस यानी दूसरे और चौथे सोमवार से ठीक पहले जो भी बुधवार पड़ेगा उस दिन की जाएगी, जिसकी सूचना अभी युववाणी कार्यक्रम में श्रोताओं को नियमित दी जाती रहेगी। अब वक्त है आज के कार्यक्रम से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले जान लीजिए हमारा फोन नंबर। हमारा नंबर है 4003482, दूसरा नंबर है 4003483, हमारा तीसरा नंबर है 4003484, हमारा STD कोड है 0771। और अब मुझे यानी काजल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: Hello, युववाणी।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हेलो युववाणी। श्रोताओं से बातचीत कर रही थी काजल साहू, प्रस्तुतकर्ता थे दीपक हटवार। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हेलो युववाणी का प्रसारण माह के दूसरे और चौथे सोमवार को होता है और अब इसकी रिकॉर्डिंग इसके पहले के दोनों ही सोमवार के ठीक पहले पड़ने वाले बुधवार को सुबह 11 से 11:30 बजे के बीच की जाएगी।
0: सृष्टि, आज सोमवार है और आज होता है हमारा क्रम दृष्टिकोण और हमारे पास है पत्रों का पिटारा, तो तुम बताना चाहोगी कि हमारा दृष्टिकोण का विषय क्या था?
2: काजल, हमारे दृष्टिकोण का विषय था इस बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मित्र भी है और चुनौती भी।
0: बिल्कुल साथियों, इस विषय पर आपके ढेर सारे पत्र हमें प्राप्त हुए हैं ईमेल के माध्यम से और ये पहला दृष्टिकोण हमें आया है नंद कुमार ठाकुर और प्रमिला ठाकुर का और बलौदाबाजार जिले से, और ये लिखते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मित्र भी चुनौती भी। इस विषय पर इनका दृष्टिकोण है कि मित्र इसलिए है क्योंकि ये काम आसान करती है, पढ़ाई, दवा, खेती, भाषा, 24 घंटे की मदद, तेज हिसाब, नई सोच और सब कुछ। चुनौती इसलिए है क्योंकि नौकरी छीनने का डर, गलत जानकारी, प्राइवेसी का खतरा, इंसान पर निर्भरता हमारी कम हो जाती है। ये सीख हमें मिलती है AI से कि हम खुद इसे अच्छे या बुरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे कैसे इस्तेमाल करें यही तय करेगा कि ये हमारा मित्र बनेंगे या चुनौती।
2: हाँ, तो इसका जवाब हम देना चाहेंगे कि नंद कुमार जी और बलौदाबाजार के सभी श्रोताओं, आपने एक संतुलित तरीके से जो तुलनात्मक वर्णन दिया है वह वाकई काबिल तारीफ है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दोनों पक्षों को आपने आमने सामने रखा और साथ साथ में आपने एक सीख भी दी, वो भी बहुत कमाल की है। मैं कहना चाहूँगी कि सोच को शब्दों में ढालता है ये मशीनी संसार, हर सवाल का जवाब है इसके पास तैयार, ज्ञान का सागर समेटे बैठा है ये डिजिटल मीत, इंसानी दिमाग की ही तो है ये सबसे बड़ी जीत।
0: क्या बात है। और इसी तरह आप हमें ऐसे ही अपने दृष्टिकोण लिखकर भेजते रहिएगा साथियों। सृष्टि, बताओ ये दूसरा दृष्टिकोण हमें कहाँ से आया है?
2: काजल, दूसरा दृष्टिकोण हमें आया है लता देवी चौहान का, रायपुर से। ये लिखती हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आज के युग की एक ऐसी क्रांति है, ऐसी महत्वपूर्ण क्रांति है जो मानव जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने में सहायता कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और व्यापार जैसे क्षेत्रों में ये एक सहायक की तरह कार्य कर रही है, जिसे न केवल समय की बचत हो रही है बल्कि कार्य अधिक सटीकता से पूरे हो रहे हैं। मगर जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह AI के भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। यदि हम इसका उपयोग समझदारी, जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ करते हैं तो यह हमारा मित्र साबित होता है और इसका एक गलत प्रयोग हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा सकता है।
0: बिल्कुल साथियों, आपने बिल्कुल सही कहा, इसका एक गलत प्रयोग हमारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। साथियों, दुर्घटना से देर भली चाहे थोड़ा समय ही क्यों ना लग जाए, पर हमें AI को पूर्ण रूप से समझकर ही उसका उपयोग करना चाहिए। ये न केवल हमारे आज के लिए बल्कि हमारे आने वाले कल के लिए भी जरूरी है। साथियों, पत्थर से शुरू

0: शुरू हुई थी इंसान की ये अनोखी दास्ता, अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आकर टिका है सारा जहां। भविष्य के इस कैनवास पर एक नई तस्वीर बनाई है इंसान ने, अपने ही सोच को एक नई उड़ान दिलाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों इतने सुंदर पत्र लिखकर भेजने के लिए। सृष्टि, ये अगला दृष्टिकोण हमें आया है सिंगारबाड़ी गुटकू से भगत राम पटेल का और किशन पटेल का, और ये लिखते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है जो तेजी और सटीक रूप से काम करता है। ये बड़ी मात्रा में जानकारी संभाल सकता है और स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में बेहतर निर्णय लेने के साथ हमें मदद भी करता है। ये एक ऐसी मशीन है जो मनुष्य की हर तरह से सोच सीख सकती है और मशीनी समस्याओं को हल करने, निर्णय लेने, आवाज पहचानने, डेटा पहचानने, कार चलाने जैसे कई कार्य करने के लिए बनाई गई है। चुनौती के रूप में कुछ समस्याएं पैदा कर सकती है और नौकरी छूटने का डर, डेटा प्राइवेसी का खतरा और नियंत्रण में पारदर्शिता की कमी, या यूं कहें निर्णय लेने में अब मानव AI पर निर्भर हो रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक अगर मित्र भी है तो चुनौती के रूप में भी हमें इसे स्वीकार करना होगा।
1: बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं से सहमत हैं, उनके विचारों से बिल्कुल सहमत हैं कि हर आविष्कार के साथ हम इंसानों के लिए कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आने वाले खतरों से निपटने का बल हमें धीरे धीरे मिलता है और निर्णयों में पारदर्शिता लाने वाली बात भी बिल्कुल सच है। वो कहते हैं ना कि तारों और कोड से बनी है एक नई कहानी, मशीनी भी करने लगी है अब इंसानों जैसी बात पुरानी। बुद्धि तो है मगर धड़कन का एहसास नहीं, इंसान के बिना AI का कोई मुकाम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अनोखी सोच के लिए, ऐसे ही आगे भी आप अपने विचार हम तक पहुंचाते रहिए।
0: सृष्टि, अगला दृष्टिकोण हमें आया है खैरागढ़ से मोटीलाल भीमटे और यशु भीमटे का, और ये लिखते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव चेतना और आधुनिक विज्ञान के संगम से उपजा हुआ है। ये एक अद्भुत उपकरण है, ये न तो पूर्ण रूप से वरदान है और ना ही पूर्ण रूप से अभिशाप। ये हमारे जीवन में एक मित्र की तरह तो है ही, साथ ही साथ हमें एक चुनौती में भी खड़ा कर देता है। मेरे दृष्टिकोण में AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवीय विवेक के सम्मुख खड़ा एक दर्पण है। इसकी क्षमताएं असीम तो हैं, लेकिन मानवीय संवेदनाएं, करुणा और नैतिकता का पूर्णता अभाव AI में है।
1: मैं जवाब देना चाहूंगी कि काफी खूबसूरत और सिमटा हुआ दृष्टिकोण हमारे दोस्तों ने ये साझा किया है। वैसे ये सोचना कि AI में मानवीय गुणों का अभाव है, इस बात से हम पूर्ण सहमत हैं और ये कहना चाहूंगी कि सिखा दी है मशीन को हमने दुनिया भर की रीत, सुनेगा काजल, सिखा दी है हमने मशीन को दुनिया भर की रीत, हर उलझन को सुलझा कर ये मन को लेती है जीत, मगर धड़कनों की भाषा ये कभी ना समझ पाएगी, इंसान की बनाई ये दुनिया इंसान के ही काम आएगी।
0: क्या बात है, क्या
1: धन्यवाद आपका दोस्तों इतनी बारीकी से जवाब देने का, ऐसे ही अपने विचार हमसे साझा करते रहिए।
0: तो सृष्टि बताओ ये अगला दृष्टिकोण कहाँ से आया है?
1: अगला दृष्टिकोण है काजल छत्तीसगढ़ से चंदूलाल, पथरिया जिले से चंदूलाल और नारायणी सिंगरौल का,
0: और साथियों ये लिखते हैं AI आज मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सारे क्षेत्रों में फैल गई है, इसलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर हम तकनीकी रूप से निर्भर हो गए हैं और चुनौतियां भी सामने आ रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग विवेकपूर्ण और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए, सही दिशा में उपयोग होने पर मानव विकास के सहयोगी है और चुनौती के रूप में भी हमें इसे लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपने जो पत्र लिखा है साथियों, इसके लिए बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस पत्र के बारे में लिखा, ये दर्शाता है कि आप इस बात को गहराई से समझते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितनी घातक भी साबित हो सकती है। साथियों इतने सुंदर विचार लिख भेजने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारा अगला विषय दृष्टिकोण का आप नोट कर लीजिए, हमारा अगला विषय है जनसंख्या वृद्धि का समाज पर प्रभाव।
1: साथियों विषय एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा, जनसंख्या वृद्धि का समाज पर प्रभाव।
0: साथियों पत्र लिखने के लिए हमारा पत्र व्यवहार का पता नोट कर लीजिए, हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक युववाणी अनुभाग, पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर, हमारा पिन कोड है 492001। ईमेल भेजने के लिए श्रोता साथी हमारा ईमेल नोट कर लीजिए, हमारा ईमेल एड्रेस है airyout9@gmail.com, सब्जेक्ट बॉक्स में सब्जेक्ट कोड Y7 लगाना ना भूलिए। साथियों वक्त का इशारा हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले लेते हैं कल के कार्यक्रम। कल की युवाणी होगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। इसी तरह आप हमें पत्र भेजते रहिए और हमारे साथ इसी तरह

0: युववाणी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बज रहे हैं, समाचार रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदा

0: तो बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश

0: कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं।
3: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 हो रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में प्रसारित किए जाएंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री आज रायपुर के रेलवे स्टेशन ले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर विशेष ट्रेन ला हरा झंडा दिखा के सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के शुरुआत करिन। दुर्ग पुलिस ऑनलाइन जुआ सट्टा और म्यूल अकाउंट चलैया अंतर्राज्यीय गिरोह के खुलासा करे है। औ छत्तीसगढ़ में आज मानसून के दस्तक। मौसम विभाग दंतेवाड़ा जिला ले दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश के पुष्टि करे है। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन ले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर विशेष ट्रेन ला हरा झंडा दिखा के सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के शुरुआत करिन। ये मौका में श्री साय कहिन कि सोमनाथ मंदिर हमर राष्ट्रीय स्वाभिमान सांस्कृतिक गौरव और आस्था के प्रमुख केंद्र है। सोमनाथ मंदिर ला कतकोन घाव विदेशी मन तोड़िन फिर हर घाव मंदिर ला बना लेगीस। यहा देशवासी मन के अटूट आस्था ला दिखा थे। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल कहिन कि सोमनाथ धाम के ये यात्रा श्रद्धालु मनला सिर्फ आध्यात्मिक अनुभूति भर नहीं देही, एकर अलावा भारत के महान सांस्कृतिक परंपरा और राष्ट्रीय गौरव ला जाने के मौका घलो दीही। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत विशेष ट्रेन ले प्रदेश ले सोमनाथ भर 1000 ले ज्यादा विशिष्ट लोगन पद्मश्री राज्य और राष्ट्रीय सम्मान ले सम्मानित कलाकार और साहित्यकार मन रवाना होइन। यात्रा में शामिल श्रद्धालु मन छत्तीसगढ़ के शिव मंदिर मन के पावन भूमि के माटी कलश और पवित्र नदी के जल कलश बाबा सोमनाथ ला अर्पित करही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ला वैश्विक उत्सव बनाए बर दुनिया भर के लोगन बर अपन आभार जताइन है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री कहिन है कि ये देख के खुशी होते कि योग सबो क्षेत्र और आने आने देश के लोगन ला स्वस्थ जीवन के एक संग्रह खोज में एकजुट करत है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका में काली बीजापुर जिला में कर्रेगुट्टा पहाड़ी में घलो सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान मन सामूहिक योगाभ्यास करिन। ब्लैक फॉरेस्ट के नावले प्रसिद्ध 5000 फीट ऊंचाई पहाड़ी कभू माओवादी मन के सबले सुरक्षित गढ़ रहीस। फिर पाछू बचर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत सुरक्षा बल के टीम माओवादी मन के गढ़ला ध्वस्त कर दे रहीस और तलाशी अभियान में यहाँ ले भारी मात्रा में हथियार और 450 ले ज्यादा आईडी बरामद करेगी रहीस। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास प्लस 2.0 सर्वे के आखिरी प्राथमिकता सूची बनाए बर 24 जून के राज्य के 11,600 ले ज्यादा ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। ये ग्राम सभा में आवास योजना पर सर्वेक्षण के आधार में तैयार सूची ला सार्वजनिक रूप ले पढ़ के सुनाए जाही। यदि कोनो पात्र हितग्राही के नाव सूची में नहीं आही या कोनो प्रकार के कमी दिखी त ग्रामीण मन ग्राम सभा में दावा और आपत्ति पेश कर सकें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 बच्छर पूरा होए के मौका में नारायणपुर जिला में अबूझमाड़ क्षेत्र के ओरछा में जन कल्याणकारी योजना के फायदा लोगन तक पहुंचाए बर 3 दिवसीय शिविर लगाए गईस। विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान में लगे ये शिविर में प्रशासन ला मिले 396 आवेदन में 277 मामला के मौका में निपटारा करेगी। राज्य में खनिज संसाधन के संरक्षण नियम के अनुसार ओखर उपयोग और अवैध गतिविधि पर रोक लगाए बर सरलग कार्रवाई करे जाते। एक कड़ी में केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता के संग्रह टीम हा शिकायत के आधार में काली और आज आने आने जिला में औचक निरीक्षण करके जांच अभियान चलाईस। ये दौरान बलौदा बाजार के खपरीडी में चूना पत्थर के भंडारण स्थल और खदान में अनियमितता पाए जाए में 6 ठन क्रशर इकाई ला सील बंद करके वहां के संचालक मनला नोटिस जारी करेगी। ऐसने सारंगढ़ बिलाईगढ़ के ग्राम दहिदा में महानदी क्षेत्र में अवैध रूप ले रेत खनन करैया मशीन ला जब्त करके सील बंद कर देगी। एकर अलावा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के दंडा स्वाही मां केवाई नदी पसौरी कुटरा और हसदेव नदी क्षेत्र के अवैध रूप ले रेत उत्खनन करैया मनला कारण बताओ नोटिस जारी करेगे हे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: औ अब आगु बाढ़ बाचे समाचार कोती। जांजगीर चांपा जिला के अकलतरा पुलिस हा आतंकी संगठन ISI के संपर्क में होए के आरोप में एक जन युवक ला गिरफ्तार करे है। पंजाब निवासी सेवक सिंह ऊपर आरोप है कि वह अकलतरा में रह के ठेकेदारी के काम के आड़ में मोबाइल के माध्यम ले गोपनीय जानकारी विदेश भेजत रहीस। जांच में उखर संपर्क पाकिस्तान सऊदी अरब और मैक्सिको ले जुड़े होए के बात आगु आए है। पुलिस हा उखर मोबाइल जब्त करके जांच बर साइबर सेल ला भेज दे। दुर्ग पुलिस हा ऑनलाइन जुआ सट्टा और म्यूल अकाउंट चलैया अंतर्राज्य गिरोह के खुलासा करे है। ए मामला में 3 झर आरोपी मनला गिरफ्तार करे गए है। आरोपी मंत्री ले 81 ठन ATM कार्ड 62 बैंक पासबुक 5 ठन चेकबुक 13 मोबाइल 11 सिम कार्ड 1 ठन लैपटॉप और हार्ड डिस्क संग्रह करीबन 2.5 लाख रुपया मूल्य के सामान जब्त करे गए है। पुलिस ला सूचना मिले रहीस कि ITI खेल मैदान तीर कोनो युवक मन हा लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम ले ऑनलाइन जुआ सट्टा चलावत हैं। सूचना के आधार में पुलिस हा घेराबंदी करके आरोपी मन ला गिरफ्तार करिस। पूछताछ में आरोपी मन हा ऑनलाइन सट्टा खेलाए के और एखर बर आर्थिक रूप ले कमजोर लोगन के नाव ले म्यूल खाता खुलवाए के बात ला कबूलिन। पुलिस हा लोगन ला अपील करे है कि उमन हा कोनो भी मनखे ला अपन बैंक खाता ATM कार्ड पासबुक चेकबुक या सिम कार्ड उपयोग करे बर झन देवें। काबर की ऐसन दस्तावेज के उपयोग साइबर अपराध ऑनलाइन सट्टा वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसन अवैध काम बर करे जा सकत है। संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय रायपुर में काली 23 जून के पेंशन संवाद के आयोजन करे जाही। ए कार्यक्रम विशेष रूप ले ओ पेंशन भोगी मन बर है जौन मन हा संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय के छत्तीसगढ़ सर्कल ले अपन पेंशन पावत हैं। ए दौरान पेंशनर मन के समस्या के निपटारा करे जाही और उनखर सुझाव सुने जाही। कबीरधाम जिला के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना हा सरलग दूसर बच्छर जून महीना में किसान मन ला समर्थन मूल्य और उपराह राशि के भुगतान करके देश के सहकारी शक्कर उद्योग में नवा कीर्तिमान बनाए है। कबरधामा काली हो एक ठन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हा 29,43,00,000 रुपया ला सीधा किसान मन के बैंक खाता में भेजिन। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप हा दंतेवाड़ा जिला में ढोलकल ट्रैकिंग रूट के लोकार्पण करिन। जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत करीबन 61,00,000 रुपया के लागत ले एला बनाए गए हवे। आशा जताई जावत थी कि रद्दा के शुरू होले क्षेत्र में साहसिक पर्यटन ला बढ़ावा मिली और स्थानीय युवा मन ला रोजगार के नवा मौका मिली। कलकत्ता में हुए ऑल इंडिया ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप

0: छत्तीसगढ़ के स्केटर मन ह सुघ्घर प्रदर्शन करत 15 ले ज्यादा पदक जीते हवय। एमा विशेष रूप ले भिलाई ले चुने गे सबो 8 खिलाड़ी मन ह पदक हासिल करिन हे। देश भर के 400 ले ज्यादा खिलाड़ी मन के ये प्रतियोगिता मा शानदार प्रदर्शन बर खेल संगठन और खेल प्रेमी मन ह खुशी जताइन हे। अब पेश है मौसम के हाल। छत्तीसगढ़ में आज मानसून हा दस्तक दे दे है। मौसम विभाग हा दंतेवाड़ा जिला ले प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश के पुष्टि करे है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी हा आकाशवाणी समाचार ले बात करत अवैया 24 ले 48 घंटा के दौरान राज्य के कतकुन हिस्सा में वर्षा के गतिविधि बढ़े के संभावना जताइन है। अब थोरकुन समाचार सार मा। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी मन हा शिक्षा सत्र 2026-27 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीनीकरण बर 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकत हैं। और कोरबा शक्ति मुख्य मार्ग में ट्रैक्टर के टक्कर ले दुपहिया में बैठे एक झन युवक के मौकाचमा मौत हो गए। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। मुख्यमंत्री हा आज रायपुर की रेलवे स्टेशन ले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बर विशेष ट्रेन ला हरा झंडा दिखा के सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के शुरुआत करें। दुर्ग पुलिस ऑनलाइन जुआ सट्टा और म्यूल अकाउंट चलैया अंतर्राज्य के खुलासा करे है। और छत्तीसगढ़ में आज मानसून के दस्तक। मौसम विभाग हा दंतेवाड़ा जिला ले दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश के पुष्टि करे है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। पश्चिम बंगे भाजपा नेतृत्वे सर्वकारेण प्रथमं पूर्णं अर्थसंकल्पनापत्रं उपस्थापितं, यस्मिन् सामाजिक कल्याणं आधारभूत संरचना विकासं आजीविका सृजनं समेत्य अनेकाः महिला केन्द्रित योजनाः सन्ति घोषिताः। सुरक्षा समाह्वानानां विषये चर्चयितुं नवदिल्ल्यां अद्य ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदातॄणां सम्मेलनं समारब्धम्। आर्थिक संबंधान इतोपि सुदृढ़ीकर्तुं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः स्वकीयेन समकक्षेण सह चर्चार्थं मंगोलिया देशं संप्राप्तवान्। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय राज्ययोः कृते अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। अपि च अस्य वर्षस्य फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अर्जेंटीना दलम् अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य आर्लिंगटन नगरे ग्रुप जे क्रीडायाम् ऑस्ट्रिया दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। भाजपा नेतृत्वे पश्चिम बंग प्रशासनेन अद्य प्रवर्तमान वित्तीय वर्षस्य कृते स्वीयं प्रथमं पूर्ण अर्थसंकल्पनापत्रं प्रस्तुतम्। अस्मिन् पत्रे सामाजिक कल्याणं आधारभूत संरचना विकासं वृत्ति सृजनं च महिला केन्द्रित योजनाः विशेष रूपेण प्राधान्यं प्राप्ताः सन्ति। बंगालस्य वित्तमंत्री स्वपन दास गुप्ता 70,00,000 कोटि रूप्यकाणां अर्थसंकल्पना पत्रम् उपस्थापयन् एतत् विकसित बंगाल निर्माणस्य मार्गचित्रमिति अवदत्। तेन स्पष्टीकृतं यत् राज्यस्य उपरि वर्तमानकालीनं ऋणं 8,00,000 कोटि रूप्यकोप्यधिकम् अस्ति। अतः वित्तीय अनुशासनम् अस्माकम् अत्यन्तं मुख्या प्राथमिकता अस्ति। अर्थसंकल्पनायाः प्रमुखासु घोषणासु विद्यते वृत्त्यावसराः। राज्ये रिक्त 1,00,000 सर्वकारीय पदेषु नियुक्तिं करिष्यते, यस्मिन् 50,000 आरक्षक पदानि तथा 50,000 शिक्षक पदानि सम्मिलितानि सन्ति। एतेषु रिक्तेषु पदेषु 33% स्थानं महिलाभ्यः आरक्षितं भविष्यति, सहैव 10% अतिरिक्त आरक्षणम् अग्निवीरेभ्यः निर्धारितं कृतम्। नवदिल्ल्यां ब्रिक्स संघटनस्य राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीयोपवेशनम् अद्य समारब्धम्। भारतस्य राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदात्री अजीत डोभालस्य अध्यक्षतायां प्रचलन्त्याम् अस्यां गोष्ठ्याम् अस्य समूहस्य 11 सदस्य देशानां सुरक्षाप्रमुखाः भागं भजन्ति। एतेषु सदस्य देशेषु भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका तथा संयुक्त अरब अमीरात सम्मिलिताः सन्ति। अवधेयं यत् 26,000 तमे

0: देश महाराष्ट्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्रेषु विद्युत गर्जनम समेत्य झंझावातः तथा तीव्र प्रचंड वायुः संभावना च व्यक्तीकृता। अस्य वर्षस्य फीफा विश्वकप क्रीडायाम अर्जेंटीना दलम अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य आर्लिंगटन नगरे ग्रुप जे क्रीडायाम ऑस्ट्रिया दलम सम्मुखी करिष्यति। भारतीय समयानुसारं रात्रौ सार्ध दश वादने क्रीडायाः आरम्भः भविष्यति। अन्ते मुख्य वार्ताः पुनः एकवारम्। पश्चिम बंगे भाजपा नेतृत्वे सर्वकारेण प्रथमं पूर्णं अर्थसंकल्पनापत्रम् उपस्थापितम्। सुरक्षा समाह्वानानां विषये चर्चयितुं नवदिल्ल्याम् अद्य ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदातॄणां सम्मेलनं समारब्धम्। आर्थिक सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः स्वकीयेन समकक्षेण सह चर्चार्थं मंगोलियादेशं सम्प्राप्तवान्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय राज्ययोः कृते अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। अपि च अस्य वर्षस्य फीफा विश्वकप क्रीडायाम अर्जेंटीना दलम अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य आर्लिंगटन नगरे ग्रुप जे क्रीडायाम ऑस्ट्रिया दलम सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं चतुर सेन।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं चतुर सेन। लीजिए अब सुनिए योगेश की रचना।

आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, कलाकार हैं चतुर सेन। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए दाग दहलवी की रचना।

0: सुगम संगीत आप सुन रहे थे, कलाकार थे चतुर सेन। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं, थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत आज रायपुर से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मानसून ने आज छत्तीसगढ़ में दस्तक दी। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। दुर्ग पुलिस ने म्यूल

0: अकाउंट नेटवर्क चलाने और ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार। और लेखा नियंत्रक का कार्यालय रायपुर द्वारा कल पेंशन संवाद का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री साय ने कहा कि सोमनाथ मंदिर हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रमुख केंद्र है।
1: आज बड़ा सुभाग का विषय है कि छत्तीसगढ़ से 1000 श्रद्धालु सोमनाथ जा रहे हैं, सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा में, जिनको आज हम लोग ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर विदा किए हैं। और ये जो श्रद्धालु हैं, इसमें पद्मश्री भी हैं, इनका पूजा अर्चन करेंगे और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगेंगे।
0: संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि सोमनाथ धाम की यह यात्रा श्रद्धालुओं को केवल आध्यात्मिक अनुभूति ही नहीं, बल्कि भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा और राष्ट्रीय गौरव को निकट से अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करेगी। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत विशेष ट्रेन से प्रदेश से सोमनाथ के लिए 1000 से अधिक विशिष्टजन, पद्मश्री, राज्य और राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कलाकार तथा साहित्यकार रवाना हुए। यात्रा में शामिल श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के शिवालयों की पावन भूमि के माटी कलश और पावन नदियों का जल कलश बाबा सोमनाथ को अर्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने दंतेवाड़ा जिले से प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश की पुष्टि की है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई है।
2: आज 22 जून को दक्षिण पश्चिमी मानसून 2020 छत्तीसगढ़ में ऑनसेट किया गया है। दंतेवाड़ा तक मानसून का प्रोग्रेस हुआ है और प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
0: मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मानसून प्रदेश में सामान्य तिथि की तुलना में करीब 10 से 12 दिन की देरी से पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल बीजापुर जिले में कभी माओवादियों का गढ़ रही कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर भी सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से मशहूर 5000 फीट ऊंची यह पहाड़ी कभी माओवादियों का सबसे सुरक्षित गढ़ हुआ करती थी, लेकिन पिछले वर्ष ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत सुरक्षा बलों ने माओवादियों के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया था और तलाशी अभियान के दौरान यहां से भारी मात्रा में हथियार तथा 450 से ज्यादा आईडी बरामद किए गए थे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास प्लस 2.0 सर्वे की अंतिम प्राथमिकता सूची के निर्माण के लिए 24 जून को राज्य की 11,600 अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं में आवास योजना के लिए सर्वेक्षण के आधार पर तैयार सूची को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जाएगा। यदि किसी पात्र हितग्राही का नाम सूची में नहीं है अथवा किसी प्रकार की विसंगति दिखाई देती है तो ग्रामीण ग्राम सभा में दावा और आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। राज्य में खनिज संसाधनों के संरक्षण, उनके नियमानुसार उपयोग और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने शिकायतों के आधार पर कल और आज विभिन्न जिलों में औचक निरीक्षण कर जांच अभियान चलाया। इस दौरान बलौदाबाजार में खपरीडीह में चूना पत्थर के भंडारण स्थल और खदानों में अनियमितता पाए जाने पर 6 क्रशर इकाइयों को सीलबंद कर संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किए गए। इसी प्रकार सारंगढ़ बिलाईगढ़ के ग्राम दहीदा में महानदी क्षेत्र में अवैध रूप से रेत उत्खनन कर रहे मशीन को जब्त कर सीलबंद किया गया। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के दंडाह स्वाही स्थित केवाई नदी, पसौरी, कुटरा तथा हसदेव नदी क्षेत्र के अवैध रूप से रेत उत्खनन करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन

0: युवा सट्टा और म्यूल अकाउंट नेटवर्क चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 81 एटीएम कार्ड, 62 बैंक पासबुक, 5 चेकबुक, 13 मोबाइल, 11 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप और हार्ड डिस्क सहित करीब 2.5 लाख रुपए मूल्य की सामग्री जब्त की गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक या सिम कार्ड उपयोग के लिए न दें, क्योंकि ऐसे दस्तावेजों का उपयोग साइबर अपराध, ऑनलाइन सट्टा, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों में किया जा सकता है। जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा पुलिस ने आतंकी संगठन आईएसआई के संपर्क में होने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पंजाब निवासी सेवक सिंह पर आरोप है कि वह अकलतरा में रहकर ठेकेदारी के काम के आड़ में मोबाइल के जरिए गोपनीय जानकारी विदेशों में भेज रहा था। जांच में उसके संपर्क पाकिस्तान, सऊदी अरब और मैक्सिको से जुड़े होने की बात सामने आई है। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर साइबर सेल को जांच के लिए भेजा है। कबीरधाम जिले के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने ने लगातार दूसरे वर्ष जून महीने में ही किसानों को समर्थन मूल्य और अतिरिक्त रिकवरी राशि का 100% भुगतान कर देश के सहकारी शक्कर उद्योग में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कवर्धा में कल आयोजित एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 29,43,00,000 रूपये सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित किए। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने दंतेवाड़ा जिले में ढोलकल ट्रैकिंग रूट का लोकार्पण किया। जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत करीब 61,00,000 रुपए की लागत से इसे विकसित किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस रूट के शुरू होने से क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ क्षेत्र के ओरछा में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए 3 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। विश्वास के विकास के जनकल्याण के अभियान के तहत आयोजित इस शिविर में प्रशासन को मिले 396 आवेदनों में से 277 मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय रायपुर में कल 23 जून को पेंशन संवाद का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए है जो संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय के छत्तीसगढ़ सर्कल से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान पेंशनरों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और उनके सुझाव सुने जाएंगे। कोलकाता में आयोजित ऑल इंडिया ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के स्केटर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 से अधिक पदक जीते हैं। इनमें विशेष रूप से भिलाई से शामिल सभी 8 खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए हैं। इस प्रतियोगिता में देश भर से 400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने आबकारी विभाग के 30 अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें जिला आबकारी अधिकारी और सहायक जिला आबकारी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। प्रवीण वर्मा को रायपुर जिले का प्रभारी आबकारी उपायुक्त बनाया गया है। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में तकनीकी कार्य की वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन और हीराकुंड एक्सप्रेस 16 से 20 जुलाई के बीच परिवर्तित मार्ग से चलेगी। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी शिक्षा सत्र 2026-27 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कोरबा शक्ति मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर की टक्कर से दोपहिया सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत आज रायपुर से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मानसून ने आज छत्तीसगढ़ में दस्तक दी। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। दुर्ग पुलिस ने म्यूल अकाउंट नेटवर्क चलाने और ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और लेखा नियंत्रक का कार्यालय रायपुर द्वारा कल पेंशन संवाद का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं, हम हाजिर हैं लेकर चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म है लोफर।

मन की आंखें, जी हाँ, ये है फिल्म का नाम। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लीजिए सुनिए ये गीत।

आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म है चरस।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए यशुदास और हेमलता की आवाजों में रविंद्र जैन का लिखा और संगीतबद्ध किया गीत। फिल्म है चित्तचूर।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं, लीजिए सुनिए चौपाल।

0: सतीश भाई राम राम।
1: राम राम रोशन भाई और चौपाल सुनैया जम्मू हमर किसान संगवारी मनला हमर दोनों के
0: राम राम।
1: रोशन भाई
0: हाँ?
1: जागव जागव मोर मयारू किसान धरती के भाग जगाना है।
0: करम करत ए भुइया मा उन्नति के गीत गाना है।
1: होवत मुधरहा ले संझा बेरा सरलक करथन खेती किसानी।
0: तभे तो दुनिया भर के चलते जिनगानी
1: और तभे होते देश दुनिया के
0: सियानी।
1: रोशन भाई
0: हाँ
1: गजब दिन के बाद में हमर मन के भेंट मुलाकात होते रे भाई, बता कैसन हाल चाल है भाई।
0: बिल्कुल सही बात कहे से सतीश भाई, बहुत दिन में हमार दोनों के मुलाकात हुआ थे और देख आज मुलाकात हुए है बने खुशी के साथ, है ना। बने आज जौन है तो पानी हाँ रज रजा के गिरी से है ना, और बने जौन आशा रही से भुइया हाँ तपत रही से भोमरा जरत रही से कोन कोन डहान बिल्कुल ले पानी नहीं गिरी रही से, तो हमार डहान जौन है तो पानी हाँ बने गिरी से। अब आशा करथन सबो डहान गिरा है नहीं गिरे हुई, तो गिरा है गिरे हुई
1: गिरी। तो ये देखा है पानी गिरीस ना तो माने उमस थोड़ा गर्मी तेन थोकन शांति लगी सब है, धरती घलो खा थोड़ा कन जुड़ाई से तो
0: जुड़ाई
1: जीव है थोड़ा लहर तहर रही तेन बने लगी भाई।
0: हाँ देख सतीश भाई ये हमार जौन प्रकृति के कुदरत के देन है, पानी है गर्मी है घाम है जाड़ है पेड़ पौधा है ना, तो एकर जौन कहन के प्रकृति की जो सुंदरता है इला हम को

0: प्रकार के कोनो मूल्य देके हासिल नहीं कर
1: नहीं कर
0: पाओगे।
1: सकन, एकर कोई तोड़ नहीं है, अब एकर कोई बराबरी के करे के ये नहीं है। प्रकृति जो हमर जिन मूल चीज होते
0: हाँ
1: प्रकृति से आज ओकर ऊपर सब चीज आधारित है। अब ये कहूँ असंतुलन होइस तो हमारा नाना प्रकार के समस्या के समाधान फिर है, मतलब समस्या देखे ला मिलते कहना चाहिए, है ना।
0: सही के है सतीश भाई। आओ देख ये प्रकृति में हम मनखे के संग, हम मनखे तो अपन सोच ले थन बांचे बार या कहीं साधन बना ले थन, फिर जौन जीव जंतु हैं नान्हे ले नान्हे बड़े ले बड़े, वो जीव जंतु मन है जौन है सोझे प्रकृति के प्रभाव है ओकर मन पड़ते
1: पड़ते बिल्कुल
0: हैं।
1: पड़ते, तेकर पाए के तो प्रकृति के संरक्षण करत, ओकर बचाव बचाव करत, ओकर बर निरीक्षण और हमार संरक्षण करना हमारा जरूरी है। काबर भविष्य में ये जाते देखत हन कि धीरे धीरे वो प्रकृति के जो है जे ये हमार जो प्रकृति जिन चीज़ हवे वो
0: हाँ
1: नंदावत जात, हमार जो पुरखा पुरातन चीज़ है वो नंदावत जात हवे।
0: कहे के बात ये है कि प्रकृति के जो बचाए के, प्रकृति के जो संरक्षण करे के ढंग है, चाहे वो माटी होवाए, पानी होवाए, हवा होवाए, पेड़ पौधा होवाए,
1: कोनो भी रूप में
0: है
1: रहे।
0: ना भाई, ओला मजबूती जो दे के काम होते, जो जेकर जो प्रकृति है खुशहाली बढ़वार होते, वो हा थोरकन धीरे धीरे कमतियावत है ना भाई। आप जब वो कमतियावत है तो कर प्रभाव सोझे हमारे ऊपर पड़त है और खास करके हमारे खेती ऊपर पड़त है।
1: खेती ऊपर पड़त है। अब खेती के गोट करत हस तो रोशन भाई ऐसे ही कि खेत खेती जिन चीज है
0: हाँ
1: एके जगह जमीन में हम हाँ कोई भी चीज़ लगाथन, कोनो भी फसल रहे, चना है, गहूँ है, कराहे रहे कि मसरा है या कोनो भी दलहन तिलहन कुछ रहे, उच उच में लगावे ना तो का होते कि माटी की जन उपजाऊ क्षमता है
0: हाँ
1: वो में वर्ध मतलब बढ़ोतरी नहीं हुए।
0: हाँ हाँ
1: और दूसर बात का है कि वही चुहित लगाए से हमारे फिर और जिन खाद्यान्न है या दलहन या तिलहन हमारे जो दैनिक जीवन में जरूरी होते वो हमला प्राप्त नहीं हो सके।
0: सतीश भाई गोट बात आऊ आगुआ करबो फिर सुनथन ये संदेश।
2: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा आप
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे,
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने,
4: खाता हुआ एक्टिव।
2: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: सतीश भाई देख, पहली ना दिखा ते हमर गांव माँ खेत माँ घर माँ पहली की खेती है, जैसे रवि की खेती है, जितने खरीफ के खेती हुआ है उतने रवि की खेती घला हुआ है ना भाई। होरा खायल मिलाए, चना खोरा, तिवरा खोरा है ना, मसूर मिलाए है ना, ये सब ला बरसात में रखे आ ओला दरा के या पिसा के जब उन्हें दाल के रूप में उपयोग करे,
1: उपयोग करे, ओला रखे रहा है और रखे मरकी पोतली में संरक्षित रखे रहा है और जैसे पानी पड़े तो कर उपयोग करे।
0: अब देखे यही एक सेती हमार सलाहकार मन हा फसल चक्र अपनाए के सलाह देते है ना, का बार की खाद्यान्न हमला सबो जरूरत है, मोटा अनाज के जरूरत है, दलहनी के जरूरत है, तिलहनी की जरूरत है, और खरीफ फसल में जो पतला चावल है, धान है, सबो के जरूरत है, लेकिन ये सबो हा कहाँ लाही, भुइया लाही,
1: भुइया ले आही,
0: खेती करे ले
1: आही, खेती ले आही, वो तो मुख्य स्रोत तो वही
0: है। हाँ, अब एक बात और है सतीश भाई देख, जो उन्हें दलहनी फसल मन है मोटा अनाज जैसे चना है गेहूं है, ओला अभी हम नहीं ले सकन खरीफ फसल में, जब लेबो तो ओला रबीच में लेबो, औकर पूर्ति है बारह महीना होते, यानी कि खाद्यान्न के उपयोग बारह महीना होते है ना, तो खाद्यान्न के पूर्ति करे बर जो उन्हें हमला बदल बदल के फसल ला ले लगी,
1: कहूं हम बदल बदल के लेथन, लेकिन कई एक फसल ऐसे जैसे जैसे हम कहन कि श्रीन या मोटा अनाज जला अंग्रेजी मिलेट्स की थे,
0: हाँ,
1: एला हम कहूँ लगावत हन तो और दोगुना और अच्छा फायदा में देखे पर मिलते, हाँ, और कतको किसान संगवारी मन एला लगा के लाभ घलो कमाते थे, कई सरकारी जन फायदा है तेन लेवा थे, और संगे संग सरकारी के साथ साथ घर में खान पान में या अलग अलग रूप में ओगला खाद्यान्न के रूप में बउरत है, ये कर फायदा हवे।
0: मोटा अनाज की बात करे तो सतीश भाई देखे चना है, ज्वार है, बाजरा, रागी, कुटकी, कोदो।

0: तो सामा ये अनाज मतलब जौन है तो अभी के कह जाए के लइका मन जौन है ते नामे नहीं जाना है ना,
1: बिल्कुल
0: नामो नहीं जाना है।
1: हो
0: ता एकरे सेती जौन है ते ए अनाज बर जौन है सलाहकार मन हा एला उपजाए बर किसान अब किसाने उपजा ही एला
1: बिल्कुल भाई
0: है ना।
1: हाँ
0: देख एक बात अ है सतीश भाई कि कोनो भी अनाज होवे फसल होवे वो हा जब हुई भुईयम हुई
1: भुईयम हुई
0: औ
1: बिल्कुल
0: किसाने हा उगाही।
1: माटी ही मूल चीज होते ओकर। और फसल परिवर्तन के यदि हम गोट कहन हम एमा श्री अन्न ला कहूँ उपयोग करथन, मिलेट्स के उपयोग करथन, ओला पैदावारी करथन, तो सबसे अच्छा बात कि फसल और जलवायु के परिवर्तन देखे मिलते।
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: दूसर बात का है, अन्य जोन फसल उगावथन तेमा जमीन ला खेत ला हम समतल करे बर मतलब ज़्यादा हमला ओमा तकनीकी उपयोग करे लगते, ट्रैक्टर है, मोटर है, रोटेवेटर जो भी है, तवा ये सब हावे। लेकिन एमा ऐसा ज़्यादा बनाए के जरूरत नहीं
0: हाँ
1: पड़े, तो आर्थिक हमार बचत भी होते। दूसर बात आजकल देखथन कि खंड वर्षा हुआ थे, तो खंड वर्षा हुआ थे या कोनो मेर पानी कम पड़ गए तभो ये जे अन्न है श्री अन्न है या मिलेट्स है वो है वो चीज़ ला सहन कर लेते। और कम पानी में घलो हमला अच्छा से अच्छा हमारे जो वांछित जो चाहेगा जो न उत्पादन हमें वो हमला मिल जाते, ये कर फायदा है।
0: और माटी बार जो है ना सतीश भाई तो जे प्रकार के हमन हा दिन में काम करथन मेहनत करथन और रात कन सुरतान है नी तभी तो बिहनिया हमन उ जा काम करथन
1: हाँ
0: ठीक वैसने हमार धरती मैया ये भुइया ये जब तक ओला कोनो भी आराम नहीं मिलही खाली नहीं होही या उमा जोन पोषक तत्व तो है वो पोषक तत्व तो मतलब बने मा समय नहीं मिलही तब तक हमार अन्न बने ढंग ने
1: नहीं हो
0: उत्पन्न नहीं हो पाए
1: उत्पादन
0: है नहीं। तो किसान संगवारी मन हा ये चीज ला बिल्कुल अपनावाए और अभी तो जैसे शुरुआती दौर है दे पानी गिर गए है ना तो थोकन खुशी तो आबे करी है और बिल्कुल तैयारी में रहा कहूँ खेत हा बावत करे के लिए खे तो करे नहीं तो भाई अब पानी की शुरुआत हो गए
1: शुरुआत हो गई
0: गिरही
1: गिरी
0: आशा
1: हाँ
0: रखे।
1: हाँ
0: और देख सतीश भाई बने आज कुदरत है प्रकृति है बने आज कुछ छा भर दे किसान मन के
1: हाँ
0: तो ऐसने धरती में यह गीत सुनथन जे लगावत है राम कुमार तिवारी।

0: सतीश भाई बड़ सुघर गीतरी से लगावत नहीं है राम कुमार तिवारी और साथी मन।
1: रोशन भाई, अभी जैसे हम गोट बात करते रहे कि खेती खेती ले ही पेड़ पौधा है और जब जत का जो फसल हावे वही ओकर आधार हरे, तो इस ढंग से फसल और सब्जी घलोक है एकर आधार माटी ही हरे।
0: फल है, सब्जी
1: फल हावे, सब्जी है वही मस उपजथे, और फल सब्जी के हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग जरूरी हावे। अगर हमारे शरीर जन बने हैं कई ठन पुष्टई ले ओकर निर्माण होते और ओकर कमी ले हमारे जो है कई ठन समस्या हो दिखे बल लगते, हमारे शरीर के संचालन हम डगमगाते। फल और सब्जी हमला जरूरी है, और हम जगह जगह जगह कहूँ लगात हन छोटे जगह में बड़े जगह जो भी स्तर में, तो हमला चाहिए कि विशेषज्ञ मन के जो सलाह हवे और समय समय में बताते थे खाद बीज ओकर निस्तारी करना है, एकर विशेष ध्यान दे के यदि हम ये काम न करबो तो ज़्यादा अच्छा हुई। तो ऐसे ढंग से हम आज जानकारी पबो क्रम आज की सलाह में विशेषज्ञ हवे डॉक्टर गागेंद्र सिंह राजपूत, विषय विशेषज्ञ पादप कारिकी उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय सांकरा जिला दुर्ग, और गोट बात करत हवे सरिता साहूमन।
2: किसान भाई हो, खेती किसानी हमन पारंपरिक तरीका ले करत आवत हन। हमर खेती के उत्पादन ला बढ़ाए बर नवा नवा तकनीक और विधि के उपयोग भी जरूरी है। आज हमन चर्चा करबो फल और सब्जी में पादप हार्मोन के उपयोग के बारे में। ये विषय में चर्चा करे बर हमर बीच आए हैं डॉक्टर गागेंद्र सिंह राजपूत, विषय विशेषज्ञ पादप कारिकी उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय सांकरा जिला दुर्ग ले। डॉक्टर साहब राम राम।
3: राम राम संगवारी हो।
2: डॉक्टर साहब, सबले पहली आप मन ये बताओ कि पादप हार्मोन का होते और एकर सब्जी और फल के खेती में का महत्व है?
3: किसान भाई मतलब बताना चाहूँ कि पादप हार्मोन जो है पौधे के वृद्धि विकास ला पूरा नियंत्रित करे काम करते, और यह पौधा मा प्राकृतिक रूप से भी उपलब्ध रहते और बाजार में भी हम कृत्रिम रूप से बना करके ओला हमन उपयोग करथन, और यह पूरा ओखर अंकुरण से लेकर के पूरा ओखर फल बने तक के जो भी उमक प्रक्रिया होते वो पूरा कंट्रोल करे काम, ओला नियंत्रित करे काम ये पादप हार्मोन करते। और पादप हार्मोन जो है किसान भाई मतलब बताना चाहूँ कि जो पादप हार्मोन है वो ऑक्सिन नाम से, जिब्रेलिन नाम से, साइटोकाइनिन, एब्सेसिक एसिड, इथिलीन, सेलिसिलिक एसिड, ब्रेसिनोस्टेराइड, ऐसे बहुत सारे नाम से मार्केट में यह व्यापारिक नाम से अलग अलग मिलते, यह साइंटिफिक नाम है। और मार्केट में जहाँ ऑक्सिन बोला तो मन आप मन ला वह ऑक्सिन के व्यापारिक नाम में जो भी प्रोडक्ट बेचत हुई ओला वह दही ओखर पौधे के वृद्धि विकास करे में बहुत ज़्यादा ओखर महत्व है। तो किसान भाई मन से मैं यही आग्रह कर रहा हूँ कि जो पादप हार्मोन है ओला बहुत सारे किसान मन जाने नहीं, तो आप मन ला बताना चाहो कि पादप हार्मोन भी है एक न्यूट्रिएंट की तरह काम करते, एक पोषक तत्व की तरह काम करते, तो एक हर निश्चित मात्रा में बहुत कम मात्रा में

0: एकर उपयोग करके अच्छे से गुणवत्तापूर्वक फल और सब्जी हमन बाजार में उपलब्ध करा सकत हन और हमार जन जन मानस है तेकर स्वास्थ्य भी विशेष रूप से देखभाल कर सकत हन।
1: डॉक्टर साहब, हमार किसान भाई मन ला यहू बताहू कि भाई कौन कौन से फल और सब्जी में ये पादप हार्मोन के उपयोग करे जा सकते और एकर ले का का फायदा होते।
0: आप मन ला बताना चाहो कि सब्जी बहुत सारे सब्जी है और बहुत सारे फल है जेमा आज जो है जैसे बेल वाले सब्जी हो गए फल हो गए ओमन मा हार्मोन के हमन निश्चित मात्रा में उपयोग करके हमन ओखर गुणवत्तापूर्वक फल ला मार्केट तक पहुँचाबो। एमा जैसे पपीते है अब पपीता लगाते हैं लेकिन किसान भाई मन तो ओला तोड़ने रहते अब वो कब तोड़ने वही बहुत इंपॉर्टेंट रहते तो किसान भाई मन समय से पहले तोड़ देते पके नहीं तो ओमा ज्यादा उमन केमिकल डालते तो वो केमिकल के नुकसान डायरेक्ट जनमानस मन ला होते हमन ला होते खाद पियन ते मन ला है ना तो निश्चित मात्रा में डाल करके जो है बहुत सारे सब्जी है ना तो वो सब्जी में सबके निश्चित मात्रा डाल करके और फल में डाल करके किसान भाई मन हार्मोन उपयोग कर सकते है।
1: डॉक्टर साहब, पादप हार्मोन के उपयोग के चर्चा करत हन तो एकर उपयोग कौन समय में और कौन अवस्था में करना चाहिए?
0: बिल्कुल किसान भाई मन ला हार्मोन तो पता है कि ऑक्सिन जिबरेलिन साइटोकाइनिन एब्सेसिक एसिड इथिलीन सब ला डालना है लेकिन कब डालना है बहुत जरूरी है काबर के दवाई के निश्चित मात्रा और निश्चित समय रहते जैसे डॉक्टर मन भी बोलते कि भाई एला सुबह खाओ एला दोपहर खाओ एला शाम कन खाओ और रात कन के दवाई दिन में खावे नींद आ जाही काबर के वो है उमें नींद के दवाई रहते वह ज़्यादा तो ओखर विशेष रूप से ध्यान देना है वैसी हार्मोन के उपयोग भी जो है सही टाइम में करना है। जैसे कोई सब्जी है तो वहाँ दो पत्ती निकलते या चार पत्ती अवस्था है वो अवस्था में हार्मोन के उपयोग करना चाहिए और अगर कहीं इंटरनोड होते हैं इंटरनोड मतलब नोड एक दो तीन चार पाँच नौ गांठ दस गांठ जब जैसे कोई लेता वाले सब्जी है सेमी हो गया बरबट्टी हो गया तो वहाँ गांठ बनते हैं वहाँ एक दो तीन जैसे गंडम बनते हैं उसने तो आठ नौ जब गांठ अवस्था आते वो टाइम में फ्लावरिंग आ जाते तो फ्लावरिंग के टाइम में भी हम जो है हार्मोन का उपयोग कर सकते हैं। और फल के बात करें तो फल अभी जैसे आम आते आम अभी मौराए हवा है ना तो यही टाइम में क्या होते आम के फल है गिर जाते आम के फूल है गिर जाते समय से पहले फल गिर जाते समय से पहले फूल गिर जाते तो वो विशेष रूप से वो बचाए बर हमन ऑक्सिन में एनएए और इंडोल एस्टिक एसिड एकर हमन जो ऑक्सिन के ही प्रकार है एकर उपयोग करके हमन जो फूल गिरते और समय से पहले फल गिरते ओला बचा सकत हन।
1: डॉक्टर साहब, एकर उपयोग का फल ला पकोए बर भी करे जाते और कतका मात्रा में करना चाहिए?
0: बिल्कुल आजकल जो किसान भाई मन है तेन मन हा बहुत ज्यादा मात्रा में फल पकाए के केमिकल के उपयोग करत है और ओखर जो मात्रा है वह बहुत जरूरी है अगर कहीं सही मात्रा में नहीं करी तो हमर जतने भाई मन खाद पिया थे ओखर जो है दुष्परिणाम वो जिन फल फूल खाद तेला पड़ी तो किसान भाई मन से मैं निवेदन करत हूँ कि ओखर निश्चित मात्रा रहते बहुत पीपीएम में रहते पार्ट पर मिलियन बहुत कम मात्रा में ओखर उपयोग करके 2 ppm 3 ppm 0.5 ppm अलग अलग फल में अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से मात्रा के हिसाब से डाले जाते तो जिसे हम अभी सबसे ज़्यादा जो है फल पका बर आम के उपयोग में करते केलम करते आपन देखो कि जब भी आम ला तोड़ते तो हमेशा कच्चा वस्तम तोड़ते और ओला फिर पकाए बर इथिलीन के उपयोग करते अब इथिलीन फल पकाए काम करते तो ओखर निश्चित मात्रा रहते लेकिन किसान भाई मन हा मात्रा सही मात्रा में जाना नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पकी बोल के ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते ओखर नुकसान जो है आम जनता मन लभ्य होते तो किसान भाई मन से निवेदन है कि फल पकाए बर जिन इथिलीन के उपयोग करते वह इथेफान वो तीनों फार्म आते फल पकाए कैसे हार्मोन है जिनहा लिक्विड फार्म में भी आते जैसे केला डुबा के रख देते तीन दिन चार दिन में रेफरिंग चैम्बर में है ना फल पका ले चैम्बर में फिर पक जाते या पाउडर फार्म में भी डाल सकते थे या फ्यूमिगेंट्स भी होते ध्रुमक एक रूम में पूरा केला डाल दीज और में फ्यूमिगेंट्स छोड़ दीज ध्रुमक जल बोलते तो तीनों अवस्था में गैसियस फार्म गैस में भी पकाते तो तीनों अवस्था में लेकिन एक निश्चित मात्रा में उपयोग करे से किसान भाई मतलब आप मतलब मैं आग्रह करता हूँ अपील करता हूँ कि आप सही मात्रा में उसका उपयोग करो और सही टाइम में करो जेखर से जो है अच्छा क्वालिटी के अच्छा गुणवत्तापूर्वक जो है फल और सब्जी जो है मार्केट में उपलब्ध हो पाए।
1: का पादप जो हार्मोन है उकर उपयोग भंडारण पर भी करे जा सकते?
0: बिल्कुल आजकल जो किसान भाई मन है जैसे लगाते भी जैसे प्याज ले खुदाई करी और बेच दी मार्केट में ओखर ओहला मार्केट जो मूल्य है वो बहुत कम मिलते ₹8-10 per kilo में प्याज ला जो है उमन बेचते बेचारा मन। अब किसान भाई मन से ही आग्रह है कि आप मन ओला घरे में स्टोर करके रख सकत हो आप मन बहुत बड़े

0: कोल्ड चेम्बर नहीं बना सका तो घर में भी जो है हार्मोन के यूज करके, जैसे मेलिक हाइड्रोजाइड हो गए, जो घर में हमन बहुत सारा प्याज रख लेथन तो देखा हो आप मन है कि अंकुरण हो जाते। किसान भाई मन के घर में रखथन तो हम 10 किलो 20 किलो लेके, लेकिन वहां अंकुरण हो जाते, आलू भी अंकुरण हो जाते। तो ओला बचाए बर जो है मेलिक हाइड्रोजाइड होते, ओखर हार्मोन के यूज करके, केमिकल के यूज करके हमन हा बचा सकथन और बहुत समय तक, अवधि तक ओखर सेल्फ लाइफ ला हमन इंक्रीज करके, या फिर हमन साइटोकाइनिन के भी यूज करथन जेकर से सेल्फ लाइफ बढ़ते। कोई भी फल सब्जी के हमन अगर कहीं बात करें तो ओखर वृद्धि बढ़ाना है, सेल्फ लाइफ ला बढ़ाना है, जीवन काल ला बढ़ाना है, तो वह हमन साइटोकाइनिन के उपयोग करके ओखर जीवन काल भी बढ़ा सकथन।
1: डॉक्टर साहब, ये जो पादप हार्मोन है ओकर भंडारण बन जो उपयोग करथन ओमा मात्रा कतका उपयोग करना चाहिए क्विंटल पाछ?
0: अगर हमन बात करें अगर प्याज के, या फिर अगर बात करें हमन हा आलू के, तो अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब में हमन हा ओखर निश्चित मात्रा रहते। आप मन जब मार्केट में जब भी ले जाहा तो ओखर पीछू में पूरा ओखर दिशा निर्देश रहते, जिन भी हमन हार्मोन ले जाबो ओखर पीछू में पूरा दिशा निर्देश दे रहते कि अतका किलो बर अतका मात्रा डालना है। वो निर्देश हिंदी में भी लिखा रहे थे, अंग्रेजी में भी लिखा रहे थे। किसान भाई मन से निवेदन है कि वो जितना अपन जितना मात्रा में आप मन इकट्ठा करके रखा था, भंडारण करके रखा था, ओखर हिसाब से वो मात्रा के हिसाब से आप मन उपयोग कर सका था, ओखर पीछू में पूरा दिशा निर्देश दे रहे थे। तो किसान भाई से निवेदन है कि दिशा निर्देश ला पढ़ करके ही ओखर मात्रा ला अपन उपयोग करो।
1: पादप हार्मोन के उपयोग बर का सावधानी रखना चाहिए?
0: पादप हार्मोन के उपयोग में सबसे बड़े सावधानी है कि मात्रा के बहुत विशेष ध्यान रखना है कि किसान भाई मन हा मात्रा ला अगर कहीं ज्यादा कर दी, जैसे एक दवाई खाल बोले डॉक्टर हा और तीन दवाई खाओ तो नुकसान शरीर में होते, वो इतने पौधों मन में भी होते, फल सब्जी में भी होते। और ओखर जेन हा अगर कि फल सब्जी में डल गया तेन हा किसान भाई मन तो बेच दी अपन फायदा बर, लेकिन वो डायरेक्ट जो है हमारे भाई बहन मन खाही तो वो कहीं न कहीं नुकसान हमारे शरीर पर भी हुई ज़्यादा मात्रा में। तो विशेष रूप से आप मतलब मात्रा का ध्यान देना है। दूसरा, हार्मोन डाले के टाइम में आप मन हा विशेष रूप से ध्यान देना है कि कौन से अवस्था में डालना है, काबर के अगर सही अवस्था में नहीं डालो तो ओखर हम लोग परिणाम जो है उचित परिणाम हम लोग नहीं मिल पाही। तो ओखर उचित सबके समय, जैसे बेल वाली सब्जी हो गया, सब्जी में जैसे दो पत्ती अवस्था में हो गया, जैसे फ्लावरिंग के टाइम में फूल मत गिरा, फूल गिरे के बाद डाल तो कोई मतलब के नहीं। तो जैसे फ्लावरिंग स्टेज आता है तो ओखर पहले अगर डाल दो तो फूल गिरे बच जी। तो विशेष रूप से अगर फल पकाना है तो फल तोड़े के बाद पका, पता चला थे कच्चे अवस्था में अगर डाल दे और पेड़ में पके नहीं है और पेड़ में अगर डाल दी, छिड़काव कर दी, आप लिक्विड डालना है, पाउडर डालना है बोल के, तो नुकसान हो जी। तो सबके एक अवस्था होती, निश्चित टाइम होते, वही अवस्था में डाले से, वही टाइम में डाले से हमला उचित परिणाम मिली। तो किसान भाई मन से निवेदन है कि आक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एप्सेसिक एसिड, इथिलीन, ब्रेसिनोस्ट्राइड, सेलसेलिक एसिड, ऐसे बहुत सारे हार्मोन हैं। जैसे आक्जिन के विशेष रूप बता था मैं आप मल्ला, आक्जिन हाँ अलग अलग नाम से भी ओखर बिकते, जैसे इंडोलिस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, नेप्थेलिक एस्टिक एसिड, 2,4-D, 2,4-5-D, एखर सबके कमर्शियल व्यापारिक नाम भी है। एक विशेष महत्व हमारे आज के समय में भी सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं आक्जिन के होते, काबर के समय से पहले किसान भाई मन के फल गिर जाते, समय से पहले फूल गिर जाते, ये बहुत बड़े शिकायत है। और समय साथ साथ जो है पपीता है, अब पपीता में कभी कभी गाँव कौन बोलते कि फूल ही पपीता बोलते, फूलते बस फरे नहीं। तो किसान भाई मतलब कैसे पहचानना है कि ये पपीता है फूल ही पपीता है, तेला कैसे हमन हा अब फूल ही पपीता कैसे हमन हा उपयोगी बना सकत हन, कैसे हम फल लगा सकत हन? तो हार्मोन के माध्यम से हमन कर सकत हन। उसमें तीन प्रकार के फूल लगते पपीता में, जैसे एक नर पुष्प नर है, एक मादा है और एक उभयलिंगी है। तो अगर कहीं हमें पहचानना है कि यह नर फूल है तो नर फूल जो रही ओखर जो डंठल रही वह लंबा रही और मादा फूल के जो डंठर रहते जो लगे थे फूल हा तेना छोटा रही। तो हमन हा अगर कहीं वही अवस्था में अगर हमन डाला थन तो जिब्रेलिन के जरली हमन यूज कर लेथन फीमेल फ्लावर ला बढ़ाए बर। तो किसान भाई मन से निवेदन है कि हार्मोन के द्वारा भी जो है हमन हा अधिक से अधिक पैदावार ले सकथन। अगर कभी कभी ऐसे होते कि बीज लगाथन लेकिन अनबीजा हो जाते, किसान भाई मन बोलते कि बीज उगीज नहीं, तो वो डारमेंसी पीरियड में रहते, बीज हा सुसुप्ता अवस्था में रहते, ओला हमन हा जिब्रेलिन के द्वारा, जिब्रेलिन जो बताया हूँ ओखर द्वारा भी हमन हा ओखर सीड डॉर्मेंसी ला ब्रेकिंग कर सकत हन, तोड़ सकत हन, जेखर से वहाँ अंकुरण अच्छा है। तो किसान भाई मन से निवेदन है पानी कमी हो जाते तो बहुत सारा पौधा मुरझा के मर जाते, तो ओहू में हार्मोन के बहुत बड़े महत्व है। तो वह एफसेसी के सी से जो स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, तो ओखर मात्रा भी हमन डाल के, जैसे पानी की स्ट्रेस आते है तो वो टाइम में क्या करते पत्ती मोड़े काम करते थे हार्मोन हा, फिर वो मुढ़ी तो बाद में पानी डालो, अगर नहीं मुढ़ी तो फिर ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन हुई पत्ती पूरा पौधा मर जी। तो बहुत विशेष महत्व है हार्मोन के, अलग अलग हार्मोन के बहुत विशेष महत्व है। तो किसान भाई मन से निवेदन है कि केमिकल का उपयोग न करके

0: यूरिया राखर पोटास के बहुत उचित मात्रा में उपयोग बस करें। बाकी हार्मोन के भी बहुत बड़े रोल है, हार्मोन के महत्व समझें और हार्मोन की उचित मात्रा अपना करके अच्छा गुणवत्ता पूर्वक फल सब्जी ला मार्केट में पहुंचा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब आप हमार बीच आए और किसान भाई मन ला अतिक बढ़िया जानकारी दे, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी सुनत रहें क्रम आज की सलाह, विषय रिसावे फल और सब्जी में पादप हार्मोन। विशेषज्ञ रिसावे डॉक्टर गागेंद्र सिंह राजपूत, विषय विशेषज्ञ पादप कार्यिकी उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय सांकरा जिला दुर्ग, और गोट बात कतरी हवे सरिता साहूमन।
3: सतीश भाई संगवारी मल्ला सूचना बता देथन, अवैया मंगलवार 23 जून को प्रसारित होवैया हलो किसानवाणी कार्यक्रम के विषय होही त्रिस्थिति मत्स्य पालन हेतु किसम के चयन। विषय में आपकी समस्या और जिज्ञासा के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हुई श्रीमती अनुभूति देवांगन, सहायक मत्स्य अधिकारी रायपुर। आप अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए बर हमर कर फोन कर सकते हो। हमार फोन नंबर है, पहली है 4003482, दूसरैया नंबर है 4003483, और तीसरैया नंबर है 4003484, और रायपुर के स्टडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 23 जून 11:30 ले 12 बजे तक करे जाही। ये कार्यक्रम के प्रसारण उही दिन मंगलवार के 7:30 बजे करे जाही। हम अल्लाह आपके फोन कॉल के इंतजार रही। सूचना समाप्त हुई।
2: रोशन भाई
3: हाँ,
2: गोट बात हो गए, वार्ता घलोक हो गए, अब एक ठन मनोरंजन खातिर गीत सुन लेते हैं। जेला स्वर देवत हबे महादेव साहू मन है।

0: अभी सुनील जी जिलगावत रहने महादेव साहू मन।
1: अब क्रम हवा आज के प्रश्न जल्दी लिख लेवा। आज के प्रश्न है पादप हार्मोन के उपयोग कौन समय और कौन अवस्था में करना चाहिए। एकर सही जवाब हमला एक हफ्ता के भीतर भीतर पठो डरू संगवारी हो।
0: पाछू हफ्ता प्रश्न पूछे रहे तालाब माँ प्रति हेक्टेयर कतेक बीज डालना चाहिए। एकर सही उत्तर है 10,000 से 12,000 और आकार के छोटे हो गए मछली के बीज है तो ओला 20,000 तक घला डाल सकथन।
1: और सही जवाब लिख के भेजिए हमारे संगवारी मन हवे कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव मदनपुर कंवरधले श्रवण कुमार साहू योगेश साहू राहुल साहू आर्यनगर कोहका भिलाई ले उत्तम सिंह जंघेल मोरत जंघेल अनिल कुमार अजीत कुमार आयुषी जंघेल और नंदी जंघेल बठेना पाटन जिला दुर्ग ले बलकरण वर्मा ज्योति वर्मा अंजली वर्मा नवागढ़ कटाई ले नारायण वर्मा चंद्रकांत वर्मा लोरमी चचड़ी ले कमलकांत मरावी प्रमिला मरावी नेहा मरावी पुष्पराज मरावी ऋषभ मरावी ग्राम बंगला मटिया बालोद ले शिवकुमार अंगारे अंजलि त्रंबिका लीना अंबारे देवरी भाटापारा ले गन्नू लाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश राम मिस्त्री गर्रा पार बांधा बाजार जिला राजनांदगांव ले गंगाराम साहू सुलोचना साहू मानवेंद्र साहू राकेश साहूमन तेंदुभाटा मगरलोड जिला धमतरी ले उमेंद्र कुमार निषाद देविका पोषण मोहेश्वरी नूतन सुरेंद्र यशस्वी भास्कर आओ किसान मन संगवारी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद बधाई जिन हम अतेक सुघर हमर जवाब ल लिख के भेजे।
0: सतीश भाई देख अब जायक बेरा हो गए जायल पहली बता दे थन काली के कार्यक्रम काली हुई फोन इन कार्यक्रम हलो किसान वाणी विषय हुई त्रिस्त्री मत्स्य पालन हेतु किसम के चयन विशेषज्ञ हुई अनुभूति देवांगन सहायक मत्स्य अधिकारी रायपुर। तो भाई चलन कार्यक्रम सुनिया सबो संगवारी मल्ला रोशन आऊ
1: सतीश कुमार यदु के
0: राम राम, राम।

चौपाल अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, हम हाजिर हैं लेकर चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में निदा फाजली का लिखा गीत। संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म है चोर पुलिस।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान।

0: समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनो संगी संगवारी मल्ला तक सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए अब सुनिए यशुदास और हेमलता के स्वरों में रविंद्र जैन का लिखा और संगीतबद्ध किया गीत। फिल्म है चितचोर।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं सलीम इकबाल। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए डॉक्टर अख्तर नजमी की रचना।

सुगम संगीत आप सुन रहे हैं, कलाकार हैं सलीम इकबाल। लीजिए अब सुनिए कबीर दास की रचना।

सुगम संगीत आप सुन रहे थे, कलाकार थे सलीम इकबाल। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से और फ्रांस का सामना इराक से होगा। अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। ISSF जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। फ्रेंच पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, जीते स्वर्ण पदक। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कैलिफोर्निया के फुलटन में कल से शुरू। FIH प्रो लीग में भारत ने नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया और विश्व मुक्केबाजी कप में ज्योति ने जीता एकमात्र स्वर्ण पदक। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट्स में से एक फीफा विश्व कप से, जहां हर दिन रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
1: फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। मिस्र के मोहम्मद सलाह ने शानदार प्रदर्शन किया और अपने देश की ओर से सर्वाधिक गोल करने के करीब पहुंच गए हैं। सलाह ने कल न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप में 3-1 की जीत में अपना 68वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया, जो अब मिस्र के मौजूदा कोच होसाम हसन के करियर रिकॉर्ड से सिर्फ एक गोल कम है। यह विश्व कप में उनका तीसरा गोल था। इससे पहले 2018 में रूस में खेले गए विश्व कप में उन्होंने 2 गोल किए थे।
2: Salah scores for Egypt. A World Cup in which the brightest stars have shone. Stamenic first time. Egypt secure their first ever win at the World Cup. And they do so by beating New Zealand by 3-1.
1: प्रतियोगिता में पहली बार विश्व कप में हिस्सा ले रही काबो वर्डे का शानदार सफर जारी है। ग्रुप एच में काबो वर्डे ने 2 बार की चैंपियन उरुग्वे के साथ 2-2 से मुकाबला ड्रॉ किया। इससे पहले काबो वर्डे ने स्पेन को भी अपने पहले मैच में ड्रॉ पर रोका था। लगातार दूसरे ड्रॉ के साथ ही काबो वर्डे ने टूर्नामेंट में दूसरा अंक भी हासिल कर लिया है और टीम राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की रेस में बनी हुई है। मैच की शुरुआत से ही काबो वर्डे का दबदबा देखने को मिला। टीम ने मैच के 21वें मिनट में उरुग्वे के खिलाफ 1-0 से बढ़त बनाई। टेल्मो अरकाजो की फ्री किक को केविन पिना ने शानदार गोल में तब्दील किया। यह काबो वर्डे का विश्व कप इतिहास का पहला गोल भी रहा। हाफ टाइम से पहले ही स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। उरुग्वे की ओर से मैच का पहला गोल मैक्सी अरुजो ने किया। इसके बाद स्टॉपेज टाइम में उरुग्वे ने मैच में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। टीम के लिए दूसरा गोल अगस्टन केनोबियो ने किया। काबो वर्डे के लिए 60वें मिनट में फरेला ने गोल करते हुए 2-2 से स्कोर को बराबर कर दिया। इसके बाद किसी भी टीम को सफलता हाथ नहीं लगी और मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा।
2: Oh, it's a little bit wayward. There's a chance and a goal for 2-2. Cabo Verde are level in the match.
1: ग्रुप जी में बेल्जियम और ईरान के बीच मुकाबला गोल रहे ड्रॉ पर खत्म हुआ। लॉस एंजलिस स्टेडियम में दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन शानदार गोलकीपिंग और मजबूत डिफेंस के कारण कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। इस ड्रॉ के साथ ही बेल्जियम और ईरान को अभी भी इस विश्व कप में अपनी पहली जीत का इंतजार है। टीम के अनुभवी मिडफील्डर केविन डी ब्रुइन ने शुरुआती मिनट में ही लंबी दूरी से शॉट लगाया, लेकिन गेंद गोल पोस्ट के बाहर चली गई। इसके बाद डी ब्रुइन और लिएंड्रो ट्रोडार्स ने मिलकर कुछ अच्छे मौके बनाए, लेकिन ईरान के गोलकीपर अलीरेजा बेरानवंद ने शानदार बचाव करते हुए बेल्जियम को बढ़त लेने से रोक दिया। हाफ टाइम तक स्कोर 0-0 ही रहा। निर्धारित समय के बाद मिले 5 अतिरिक्त मिनटों में भी कोई गोल नहीं हुआ और मुकाबला 0-0 की बराबरी पर खत्म हुआ।

0: And it's an instinct, I think, just to reach out in panic.
1: Another fine save from Bearan. It's a shutout at the Los Angeles Stadium.
2: ग्रुप एच मुकाबले में स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सऊदी अरब को 4-0 से करारी शिकस्त दी। स्पेन की इस जीत में युवा खिलाड़ी लामिल यामल और स्ट्राइकर मिकेल ओयारजाबल ने अहम भूमिका निभाई। यामल ने एक गोल किया जबकि ओयारजाबल ने दो गोल दागे। स्पेन का पहला गोल 10वें मिनट में यामल ने किया। टूर्नामेंट में यह उनका पहला गोल था। मैच के 30वें मिनट में स्पेन की बढ़त को एमेरिक लोपोर्ट ने दोगुना कर दिया। इसके सिर्फ 3 मिनट बाद स्पेन ने एक और शानदार टीम गोल किया। डेनी ओल्मो ने मौका बनाते हुए गेंद ओयारजाबल के पास की जिन्होंने शानदार वॉली लगाकर अपना दूसरा और स्पेन के लिए मैच का तीसरा गोल किया। पहले हाफ में 3-0 की बढ़त लेने के बाद स्पेन पूरी तरह नियंत्रण में था। दूसरे हाफ में सऊदी गोलकीपर ने उनके शॉट को रोक लिया लेकिन गेंद की दिशा सऊदी खिलाड़ी हसन अतलामबख्ती से टकराकर बदल गई और अपने ही गोल में चली गई। इसके बाद भी स्पेन ने सऊदी अरब के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाए रखा और मैच को 4-0 से अपने नाम किया। इस जीत के साथ स्पेन के 2 मैचों में 4 पॉइंट हो गए हैं और टीम ग्रुप में पहले स्थान पर पहुंच गई है।
3: Cucurella with the swing. Spain have 4. Any goal is to sum up the way things are going for Saudi Arabia. It is that one. But that's it.
2: Vishesh Shukla, Sports Scan.
4: और अब रुख कर लेते हैं निशानेबाजी की ओर, जहां भारत का दबदबा जारी है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। चैंपियनशिप में ये भारत का 5वां स्वर्ण पदक है। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। और अब बात मुक्केबाजी पर। चीन के गुयांग में विश्व मुक्केबाजी कप में कल ज्योति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
5: ज्योति ने 48 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में उज्बेकिस्तान की फरजानो फजीलोवा को 5-0 से हराया। भारत ने फाइनल में मजबूत प्रदर्शन करते हुए 3 रजत पदक भी जीते। 51 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में मीनाक्षी को चीन की वु यू के हाथों 0-5 से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। 57 किलोग्राम वर्ग में प्राची ने भी रजत पदक जीता। टूर्नामेंट में शानदार सफर के बाद भी वो अपने टाइटल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की निगीना उक्तामोवो के हाथों 0-5 से हार गयी। पुरुष वर्ग के 70 किलोग्राम में दीपक ने रजत पदक हासिल किया। फाइनल में दीपक को कजाकिस्तान के अबलाई खान जुसुपोव से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में जुगनू और निखिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए जिससे पदकों की संख्या 6 हो गई। इनमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इससे पहले भारतीय टीम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मजबूत प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अभियान सफल रहा। महिला टीम ने 5 मुक्केबाजों के साथ 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर शानदार नेतृत्व किया। ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन, मौजूदा एशिया चैंपियन प्रीति पवार, साक्षी और प्रिया ने स्वर्ण जबकि परवीन ने रजत पदक अपने नाम किया। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन।
4: और अब बात माइंड गेम शतरंज पर। तमिलनाडु के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इनियान पा ने मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए 361 ग्लोबल शतरंज महोत्सव के मास्टर वर्ग का खिताब जीत लिया है। सुनते हैं मुंबई से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
6: Inian Pa of Tamil Nadu, the top seed, lived up to his billing, dominating proceedings from start to finish to emerge champion in the Masters category of the 361 Global Chess Festival, which concluded at the World Trade Center in Mumbai. Already in sight of the title after the penultimate round, the composed 24-year-old national champion settled for a quick and short draw against Ajay Santosh Parvathareddy to claim one of the biggest chess titles in the country in his debut appearance and the winner's purse of ₹8 lakhs. The Erode-based GM Inian amassed 7.5 points to emerge champion, maintaining an unbeaten stint, conceding only 3 draws. Boris Savchenko had to settle for a draw against Akash Sharadchandra Dalvi and finished second with 6.5 points. Nitin Babu clinched the Challengers category and Madhvendra Pratap Sharma triumphed in the Junior Masters category. Both Nitin and Madhvendra have directly qualified to play the Masters category in the 10th season scheduled for next year. For Sports Scan, this is S. Kishore from Mumbai.
4: और अब रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। फ्रेंच पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के कृष्णा नागर, तुलसीमती मुरुगेसन, नित्याश्री, सुमति सिवन और नितेश कुमार ने

0: बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा ने पुरुषों के सिंगल्स SH6 फाइनल में चार्ल्स नोक्स को 21-19, 21-11 से हराया। कृष्णा ने अपने खाते में दो कांस्य पदक भी जोड़े। महिलाओं की सिंगल्स SU5 स्पर्धा में तुलसी मथी ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि नित्याश्री महिलाओं की सिंगल्स SH6 स्पर्धा में विजेता बनी। वहीं नितेश कुमार ने पुरुषों के सिंगल्स SL3 स्पर्धा में भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक जीता। नवीन शिव कुमार पुरुषों के सिंगल्स SL4 स्पर्धा में उप विजेता रहे। मानसी जोशी और तुलसी मथी मुरुगेशन ने महिलाओं की डबल्स SL3 SU5 स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने भी मिक्स डबल्स SL3 SU5 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। भारत के कांस्य पदक विजेताओं में पुरुषों के सिंगल्स WH1 में प्रेम कुमार आले, महिलाओं के सिंगल्स WH2 में अल्फिया जेम्स, पुरुषों के सिंगल्स SL3 में प्रमोद शामिल थे। प्रमोद और सुकांत कदम ने पुरुषों के डबल्स में भी कांस्य पदक जीता। पुरुष सिंगल्स SL4 में सूर्यकांत यादव, पुरुष सिंगल्स SU5 में ऋतिक रघुपति और महिला सिंगल्स SU5 में मनीषा रामदास ने भी कांस्य पदक जीते। डबल्स WH1 WH2 स्पर्धा के महिला वर्ग में रुचि त्रिवेदी और पोलैंड नतालिया ग्रजिब ने कांस्य पदक जीता। इसी स्पर्धा के मिक्स्ड वर्ग में अबू हुवैद और पल्लवी कलुवेहल्ली ने तीसरा स्थान हासिल किया। SL3 SU5 स्पर्धा के महिला डबल्स में संजना कुमारी और शांतिया विश्वनाथन और मिक्स्ड डबल्स में नितेश और तुलसीमती मुरुगेशन ने कांस्य पदक जीता। अर्जुन शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: उधर US ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से कैलिफोर्निया के फुलटन में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का नेतृत्व करेंगे। आइए जानते हैं किन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजर।
2: पुरुष सिंगल्स में विश्व रैंकिंग में 14वें स्थान पर काबिज लक्ष्य सेन को दूसरी वरीयता दी गई है और पहले दौर में उनका मुकाबला बेल्जियम के जूलियन कैरागी से होगा। इस महीने की शुरुआत में इंडोनेशिया ओपन में पहले दौर में बाहर होने के बाद लक्ष्य वापसी करने के लिए किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे। श्रीकांत पुरुष सिंगल्स में अपना पहला मैच चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू के खिलाफ खेलेंगे। सानिध दयानंद जापान की चौथी वरीयता प्राप्त युदाई ओकीमोतो के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। एस शंकर मुथुस्वामी सुब्रमणियन ने भी मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है और उनका मुकाबला क्वालिफायर से होगा। महिला वर्ग में कुल 7 भारतीय खिलाड़ी सिंगल्स में चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा और 6ठी वरीयता प्राप्त देविका सिहाग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। 17 वर्षीय तन्वी जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगी, जबकि देविका का सामना पेरू की इनेस लूसिया कैस्टिलो सालाजार से होगा। विश्व रैंकिंग में 91वें स्थान पर काबिज अनमोल खरब पहले दौर में बुल्गारिया की कालोयाना नलम्बतोबा से भिड़ेंगी। रक्षिता श्री एस का सामना पहले दौर में क्वालिफायर से होगा। अगर वह आगे बढ़ती है तो अगले दौर में उन्हें कनाडा की शीर्ष वरीयता प्राप्त मिशेल ली का सामना करना पड़ सकता है। श्रियांशी वल्ली शेट्टी अपना पहला मैच कनाडा की राहेल चान के खिलाफ खेलेंगी। तान्या हेमंत का सामना जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त रिको गुंजी से, जबकि कर्षी कश्यप का मुकाबला चीनी ताइपे की तुंग सियो टोंग से होगा। महिला डबल्स में भारत की ओर से त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ही चुनौती पेश करेंगी। उनका पहला मुकाबला स्पेन की पाउला लोफेज और लुसिया रोड्रिगेस से होगा। पुरुष डबल्स के ड्रॉ में कोई भी भारतीय जोड़ी शामिल नहीं है। मिक्स डबल्स में 7वीं वरीयता प्राप्त ध्रुव रावत और मनीषा के इंडोनेशिया के विरावन एहसान आदम और सरेना कानी के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात रिले चैंपियनशिप पर। चीन के शांघाई में आयोजित एशियन रिले चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन कर कई पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में टीम ने महिलाओं के 4x100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले भारत ने 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले में रजत और 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले में कांस्य पदक हासिल किया। इससे पहले 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले में भारत दूसरे और कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर रही। अब बात हॉकी की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल FIH प्रो लीग रोटरडैम लेक के अपने आखिरी मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। कार्यवाहक कप्तान हार्दिक सिंह को उनकी शानदार कप्तानी और मिडफील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब बात क्रिकेट पर। महिला आईसीसी T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने कल भारत को 6 विकेट से हराया। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने 159 रन के लक्ष्य को 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मेरिजन कैप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल जगत की हर खबर के साथ आपको यह कार्यक्रम

0: कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्सकैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
3: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
4: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
2: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
5: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए। मैं हैरान था जी, और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है, दुनिया में नई चीज़।

0: मैं शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
1: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
3: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
4: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बाराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बाराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही।

0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते।

0: का कोई एक बेटा बेटी कुछ अचीव करके आता है तो सिर्फ वो व्यक्ति अचीव करके नहीं आता, वो पूरा परिवार अचीवमेंट से भर जाता है, विश्वास बदल जाता है। ऐसे ही जब कोई गरीबी से बाहर आता है तो संपूर्ण समाज का फायदा होता है, देश का फायदा होता है।
1: The two-day BRICS National Security Advisors meeting began in New Delhi today. The

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ, रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रम।

0: कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में नीरज का लिखा गीत। संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म है कन्यादान।

चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में इंदीवर का लिखा गीत। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म है यादगार।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायबाली केंद्र है। 9:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। जब युवाओं को अवसर मिलते हैं तो न केवल उनका भविष्य संवरता है बल्कि देश की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है ये योजना, इससे युवाओं, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में। हमारा विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा और क्षेत्रीय आयुक्त प्रणित जोशी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है उसके बाद 2331-0481 या 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं और ट्विटर हैंडल है @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए आपके जो भी सवाल हैं और शंकाएं हैं पूछ सकते हैं। तो आगाज करते हैं कार्यक्रम का। सबसे पहले पूर्णेंदु जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो कि यहाँ हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने के लिए एक सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जारी की है। ये इंसेंटिव स्कीम इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर अभी अगले 2 साल के लिए रहेगी और इस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट हो रहा है उसको एक बढ़ावा मिले और जो एम्प्लॉयज़ किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ रहे हैं वो वहाँ पे कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बनी रहे।
0: जी प्रणित जी, आपसे जानना चाहूँगी कि ईपीएफओ बहुत मेजर रोल निभा रहा है, क्या है, अपने श्रोताओं को इस बारे में बताएं।
2: हाँ, सो ये स्कीम जो है भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ को सौंपा है। तो ईपीएफओ इंडिया एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल एम्प्लॉयज़ है, लगभग 8 करोड़ फॉर्मल एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ कवर्ड है। तो ये स्कीम में जो भी बेनिफिट्स हैं वो ईपीएफओ के थ्रू हम देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई एडिशनल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइदर फॉर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स। डायरेक्टली ईपीएफओ एनरोलमेंट से ही सारे बेनिफिट्स हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इनको दी जाएगी।
0: ये तो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है ईपीएफओ नियोक्ता और जो कर्मचारी के बीच में। हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: नमस्कार,
0: सवाल पूछे अपना।
3: हाँ, विकसित भारत के अंतर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला और किस तरह का रोजगार मिला?
2: रमाशंकर जी, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है। तो अभी तक लगभग 70 लाख युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं, लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। इसमें लगभग 13.29 लाख तक का बेनिफिट अभी हमने उनको, इन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इनका पहला किस्त का जो बेनिफिट है हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।
0: जी पूर्णेंदु जी, आपने इंसेंटिव्स की बात की थी, तो इंसेंटिव्स जो, अगर मैं सबसे पहले कर्मचारी जो पहली बार जो नौकरी पाने वाले हैं तो उनको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है ये बताएं।
1: कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलती है इस स्कीम में वो है जो पहले 6 महीने तक अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान को ज्वाइन

0: करने के बाद वहाँ रह जाता है, तो उनका जो एवरेज वेज होता है उसका आधा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपये, तो ये पूरा बेनिफिट हो गया। पहले 6 महीने में उनको 7,500 रुपये तक मिलते हैं, और अगले 6 महीने तक अगर वो एक हमारे यहाँ पे वो लिटरेसी कोर्स उनको करना पड़ता है, 6 महीने के बाद अगर उन्होंने वो कम्प्लीट कर लिया और लगातार वहीं एम्प्लॉयड रह गए तो उनको 12 महीने के बाद 15,000 रुपये तक की राशि दी जाती है।
1: तो 6 महीने के बाद और फिर 6 महीने
0: के दो बार दिया
1: जाता है। जी जी, आगे भी चर्चा करते हैं, पहले अपने श्रोता का सवाल पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हैं राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी, तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, तो इसमें हमें क्या क्या प्रावधान रखना पड़ता है और इसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
0: राकेश जी, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको केवल ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ता है। ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए जो ईपीएफओ में कवरेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो आपकी कंपनी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी संस्थान हो जहाँ आप काम कर रहे हैं, वो अगर ईपीएफ में कवर्ड हैं, और जो बिल्कुल नए लोग अगर आ रहे हैं उस कंपनी में, जो 1 अगस्त 2025 के पहले कहीं भी हमारे ईपीएफओ से जुड़े हुए नहीं थे, तो वैसे लोगों के लिए एक इंसेंटिव है, और इसलिए इसमें कोई अलग से आपको कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ईपीएफ में आप किसी भी एम्प्लॉय का कंप्लायंस हो रहा है तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मिल जाता है।
1: जी, अगर हम नियोक्ता की बात करें तो उनको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा और जो इसमें उनको भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, खासकर जैसे अगर कोई कंपनी है, अगर वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसने ईपीएफओ में रजिस्टर किया है, या स्टार्टअप है नया, तो उन सब के लिए क्या प्रावधान है?
0: कंपनी के लिए 2-3 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला, अगर वो ईपीएफओ में कवर्ड नहीं है तो पहला तो उनका कवरेज ज़रूरत होगी यहाँ ईपीएफओ में। साथ ही उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं, जो नए एम्प्लॉई आके ज्वाइन कर रहे हैं उनके बेसिस पे, और जो पुराने एम्प्लॉई जो भी हैं जो कहीं और से आके उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टाइमर एंड रीज्वाइनिंग, तो दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। और जो इंसेंटिव है, अगर 10,000 रुपये तक की सैलरी है एम्प्लॉई की तो उसमें 1,000 रुपये, अगर 20,000 रुपये तक की सैलरी है 10 से 20,000 तो 2,000 रुपये, और अगर 20,000 से लेकर और 1,00,000 रुपये तक की अगर सैलरी है तो 3,000 रुपये का इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है। और ये एम्प्लॉयर को ये प्रत्येक महीने जैसे मिलता जाएगा, अभी पहले 6 महीने किसी का सस्टेंड एम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर अगले महीने भी किसी न किसी का 6 महीने होगा, तो वैसे उनको बेनिफिट मिलता रहेगा।
1: ये भी डीबीटी के थ्रू ही,
0: ये सारे बेनिफिट एम्प्लॉयर को डीबीटी के थ्रू मिलेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल एक ही होती है, एक ईपीएफ में कवर्ड हो, दूसरा उनका जो पैन डिटेल्स है वो हम लेते हैं उनके, क्योंकि हम पैन से जो लिंक्ड उनका बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है, डीबीटी एम्प्लॉयज के लिए होती है।
1: जी, हरिद्वार से जुड़े हैं रवि जी।
3: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: हाँ जी, थैंक यू, और महानुभव विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
3: जी। सर, मैं जानना चाहता हूँ, सर ये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है, सर इसके लिए जो ये एक युवा है वो मतलब क्या क्वालिफिकेशन होकर मतलब इस योजना का हिस्सा बन सकता है, मतलब इस योजना से लाभ उठा सकते हैं, इसमें एक युवा की क्या मतलब क्वालिफिकेशन,
1: क्या पात्रता क्या होनी चाहिए?
4: रवि जी, इसमें जैसे कि पूर्णेंदु जी भी पहले बताए कि इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर पहली बार आपकी संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उमंग ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस ऐप में उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हम लोग यूएएन कहते हैं, और उसके बाद 6 महीने अगर उसी संस्था के साथ आप जुड़े हैं और आपका जो जो ग्रॉस वेजेस है आपके, आपका जो सैलरी है वो 1,00,000 से कम होना चाहिए, उनके लिए एक स्कीम है, तो 6 महीने के बाद आपको पहला किस्त 7,500 तक दिया जाएगा, और उसके बाद एडिशनल 6 मंथ्स के बाद आपको दूसरा किस्त दिया जाएगा।
1: जब एम्प्लॉयर्स की बात आगे कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मैंने पूछा कोई नया अगर स्टार्टअप आया है और 50 से कम अगर उसके एम्प्लॉयज़ हैं या 50 से ज़्यादा हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं अलग अलग कि मिनिमम आपके पास अगर आपको इतने रखने होंगे, ईपीएफओ में रजिस्टर होना होगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं।
0: जी, एक स्कीम की सबसे प्राइमरी कंडीशंस में से एक ये है कि आपने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उस संस्थान ने कितना जनरेट किया है। तो उसने अगर किसी के पास 50 से कम एम्प्लॉई हैं, अगर उन्होंने मिनिमम 2 भी एम्प्लॉई को

0: अपग्रेड कर दिया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर नया आ गया, और अगर 50 से ज़्यादा उस संस्थान के सदस्य हैं तो वैसे केसेस में 5 उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तभी वो इसके लिए पात्रता के भागी होंगे। लेकिन साथ में एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे ECR पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है। तो न केवल ये कितना उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, 2 आदमी होंगे या 5 आदमी होंगे, बल्कि इन लोगों के लिए कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड होगा 6 महीने के लिए। तो लगातार अगर कंप्लायंस आएगी 6 महीने, तभी EPFO को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका वेज कितना था और कितने रुपए के इंसेंटिव के हकदार हैं। जो थ्रेशोल्ड का एक और दूसरा भी कॉम्पोनेंट है हमारा कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट है कितना जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने एक रखा हुआ है जो जो एक पर्टिकुलर पीरियड हमने माना हुआ है, राइट। एक पीरियड है कि अगर अगस्त के पहले, अगस्त 2025 के पहले अगर कोई भी इस संस्थान हमारे साथ जुड़ी हुई थी तो उसको हम तभी मानते हैं, उसके पिछले 12 महीने का एवरेज देखते हैं कि कितने लोग थे, और वहां से फिर उसका वो एवरेज हो गया बेसलाइन जिसे हम कहते हैं। तो बेसलाइन से कितना बढ़ रहा है, अगर अगस्त 2025 के बाद कोई भी संस्थान है तो उसका बेसलाइन होगा हमारा वो 20 रहेगा मिनिमम, वहां पे एवरेज हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो उस बेसलाइन के बाद फिर हम उसको आगे काउंट करते हैं।
1: छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी और तभी इंसेंटिव के आप पात्र बनेंगे। बिहार से जुड़े हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे अनुरोध है कि अपने जो आपका रेडियो है सेट है उसकी आवाज कम कर दे।
2: मैडम कर दिया मैंने।
1: जी जी
2: कर दिया, कर दिया।
1: सवाल
2: मैडम, मेरा ये सवाल था कि क्या मैं अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हूँ NIC मुजफ्फरपुर में, ठीक है
1: जी,
2: लेकिन थर्ड पार्टी जो मुझे पेमेंट कर रही है तो ये जो एम्प्लॉयमेंट के ये मेरा जो है EPF नहीं कट रहा है मैम, तो क्या हम लोग लेकिन पहले से जो कंपनी हमारी थी उनके द्वारा मेरा जो EPF कटा हुआ है तो क्या हम लोग इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है?
1: जी पुनेंद्र जी,
0: हाँ, इसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपको बिल्कुल नए एम्प्लॉय होना पड़ेगा। आप चूंकि पहले से EPF से जुड़े हुए हैं तो जो एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट मिलती है उसमें आप हकदार नहीं होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है अगर आप कहीं भी और दूसरी जगह पे ज्वाइन करते हैं तो उसको एज रीज्वाइनी हम लोग उन आपके जो भी यहाँ पे ज्वाइन करने के हिसाब से एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा।
1: महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी। हेलो,
3: हाँ जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ ठाणे महाराष्ट्र।
1: जी जी,
3: हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है जैसे EPFO में जो नई कंपनियां होती है जैसे ज्वाइंट होते हैं लेकिन एम्प्लॉयज का पैसा तो कटता है, तो कभी कभी ये देखा गया है कि सही तरीके से पैसा वापस जमा नहीं हो पाया है, फ्रॉड कभी कभी फ्रॉड भी देखा जाता है, गड़बड़ी देखी जाती है उसमें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और सही मतलब जो पैसा सैलरी से कट जाता है एम्प्लॉयज का जिस कंपनी से, तो वो जमा हुआ है कि नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कैसे चेक करें? थैंक यू
1: जी। प्रणय जी,
4: गुरुनाथ जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो एम्प्लॉयज से जो एम्प्लॉयर पैसे काटता है PF जमा करने के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर PF जमा नहीं करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा एंड उस एम्प्लॉयर को एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर उनको जेल भी भेजा जा सकता है। तो अभी इसमें ये सवाल है कि इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपका जो पासबुक है आप अपने पासबुक में आप चेक कर सकते हैं हर महीने की जो आपका अमाउंट कट रहा है वो सही से जमा हो रहा है नहीं है, एंड उसमें पासबुक में आपको ये भी दिखेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है और टोटल कितना अमाउंट है, तो आपके लॉगिन या फिर आप उमंग ऐप से भी आपका पासबुक आप देख सकते हैं इसमें।
1: जी, बिहार के सासाराम से जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
5: जी नमस्कार, मेरा ये सवाल था, सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार, कि जैसे कि हम लोग जो अभी 2025 से जो अभी लागू हुआ है 1 अगस्त, उससे पहले जितने भी जैसे कि अलग अलग कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं या बीच में कहीं छूट जाता है, तो कैसे वो मालूम चलेगा कि उनका PF जो करता है या PF का जो इतना संभाग उनमें रहता है क्रेडिट, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो कर...

0: कट रहा है कहाँ कैसे।
1: अमित जी, अमित जी नमस्कार। आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया होगा, आपने जहाँ कहीं भी काम किया होगा, तो अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू आप एम्प्लॉई पोर्टल पे जाके ईपीएफओ के आप लॉगिन कर लें। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो जो भी आपका आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर है उसके थ्रू ओटीपी से आप रीसेट कर सकते हैं। और जितने जगह पे भी आपने काम किया होगा जो यूएएन से लिंक्ड होगा, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे आपके अपने पोर्टल पे ही। आपके पासबुक में भी वो दिखने चाहिए, और जहाँ जहाँ से भी आपने काम किया है, अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं करवाया है तो आप उसको एक जगह पे ट्रांसफ़र करवा लें, ताकि आपके लिए बाद में सुविधा होगी।
2: जी हाँ, जैसे अब कई लोगों की शंकाएं हैं, कई जो होते हैं जो कर्मचारी हैं उनको ईपीएफ खाते, यूएएन नंबर या अन्य सुविधाएं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो उस लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कोई ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या कदम उठाने हैं
1: अभी।
3: सो जब भी कोई अभी जो हमने अगस्त 2025 से एक प्रावधान किया है, पहले ये होता था कि जहाँ पे जिस संस्था में कोई ज्वाइन करते हैं कोई एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर खुद वो उनका यूएन जनरेट करते थे। तो अभी हमने वो हक सिटीजन को ही दिया है, एम्प्लॉय को ही दिया है, जो खुद अपने उमंग ऐप से जो आधार ऑथेंटिकेशन करके वो खुद अपना यूएन जनरेट करेंगे और फिर वो एम्प्लॉयर को देंगे। तो उससे जो उसको बेसिक तो उनके हाथ में है कि उनका ईपीएफओ का अकाउंट बना नहीं है, बना है या नहीं है, अभी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है। तो उसके बाद उनको ये देखना है कि उनका हर महीने पासबुक उनको चेक करना है कि हमेशा वो हर महीने उनका एवरी मंथ डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा है।
2: जी, ओडिशा से जुड़े हैं देशदीप दास जी। दास जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो दास जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
4: जी नमस्ते।
2: नमस्ते
4: शर्मा जी और अरोरा जी, नमस्ते।
2: जी
1: नमस्ते
4: जी। पर मेरा सवाल है, क्या नियोक्ता को अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा, और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है?
1: नियोक्ता को अलग से मैं नहीं कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन करना है, उनके पोर्टल पे जाकर, और आपको केवल नियोक्ता को अपना पैन देना होता है, और जो एक बैंक अकाउंट उनका देना होता है जो पैन लिंक्ड होता है, उसी को हम इनफैक्ट इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मान सकते हैं। सेपरेट रजिस्ट्रेशन बस उसी तरह का होता है। उसके बाद नियोक्ता का जो भी बेनिफिट होता है, बिकॉज पैन के साथ हम इसको लिंक करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक ही पैन के साथ बहुत सारी संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, तो हम उन सबों को पैन एग्रीगेट करके जो बेनिफिट देते हैं वो पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट में देते हैं। तो बेसिकली आपको पैन टैन का डिटेल्स होगा, नियोक्ता का जीएसटी नंबर आप दे सकते हैं वहाँ पे, और साथ में बैंक अकाउंट नंबर जो कि पैन के साथ लिंक्ड हो, वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे ही देना होता है। उसके लिए आपको और कहीं अलग रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती।
2: और इन्होंने दस्तावेज के बारे में पूछा था,
1: और तो कोई दस्तावेज नहीं
2: चाहिए, जरूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए। ये जो योजना है, अगर आप फॉर्मल नौकरी के हिसाब से, रोजगार सृजन के हिसाब से बात करें, तो बहुत बड़ी 99,000 करोड़ रुपए से इसका आउटले है। मेजर अगर बात करें जो असंगठित क्षेत्र से जो आते हैं लोग, उनको संगठित क्षेत्र में लेकर जाना, तो उनके लिए योजना किस तरह से आप लाभकारी होते देखते हैं?
1: इसमें दो तीन तरह से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहला, जो एम्प्लॉयज पहली बात की 6 महीने तक वो रहेंगे एक जगह, तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वहाँ रुकें। एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि कोशिश करें कि उनके एम्प्लॉई वहीं पर रह जाएं। एम्प्लॉई को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आपको पता होगा कि जैसे नए एम्प्लॉई अगर कोई भी ज्वाइन करते हैं, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा हो रहा है, एम्प्लॉई को भी फ़ायदा हो रहा है। जनरली अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनरली एक कॉन्सेप्ट था इंडिया में कि अगर एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉई के अगेंस्ट हैं, एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट हैं। यहाँ इन दोनों को साथ में लेके चलने की बात हो रही है।
2: और ये होता था कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, भाई आप हमें नौकरी पे रखोगे तभी एक्सपीरियंस मिलेगा,
1: और जब तक नौकरी में आएंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जहां उनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है, और एम्प्लॉयर को भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऐसे लोगों को रखेंगे
2: और
1: सस्टेन करें वहाँ 6 महीने 1 साल के लिए, तो आपको भी इंसेंटिव मिलेगा।
2: जी, दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर जी।
5: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार।

0: नमस्कार
1: सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं जो उनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि उनकी एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, जिसको जरूरत है वो ही इसमें भी आ सके, और इसमें जो एम्प्लॉयर है वो कितनी इसकी सैलरी इसको डिसाइड कर सकता है।
2: तो इसमें दो पार्ट आपने पूछा है, एक तो एज का पूछा है, तो स्कीम तो जनरली युवा एम्प्लॉयज को प्रोत्साहन मिलता है, बट ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कोई 40 साल में भी पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी पा रहा है तो वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी है। एंड दूसरा
3: सैलरी का पूछा उन्होंने,
2: सैलरी, हाँ, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि जो हाई अर्निंग हाई इनकम ग्रुप है तो उनको ये बेनिफिट ना दिया जाए, तो 1 लाख से जो नीचे उनका जिसका ग्रॉस सैलरी है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है।
3: अक्सर हम देखते हैं कि जैसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इस योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को किस तरह मजबूत किया जा रहा है?
2: तो इसमें जो सामाजिक सुरक्षा EPFO हम लोग 3 स्कीम चलाते हैं, तो जो भी ये PMVBRY के तहत हमसे जुड़ते हैं तो उनको ये 3 स्कीम के बेनिफिट मिलते हैं। तो इनमें से प्रोविडेंट फंड है जो कि आपके लाइफ टाइम अर्निंग्स को वेरी गुड इंटरेस्ट रेट के साथ हम लोग रिटर्न करते हैं, और इसमें बहुत सारे पार्शल विड्रॉल्स के प्रावधान हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेंशन एक बहुत बड़ा चीज़ है इसमें, ना केवल उनका सुपर एनुएशन पेंशन बल्कि उनके डेथ केस, इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी उनको फैमिली को भी पेंशन मिलता है, एंड इंश्योरेंस का भी एक कंपोनेंट है, लाइफ इंश्योरेंस का।
3: जी पुणेंदु जी, जैसे अक्सर शायद किसी ना किसी के मन में ये प्रश्न होगा कि जो ये योजना है रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन ऐसे में यदि कोई जो नियोक्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद कर्मचारी को नौकरी से हटा देता है या उसे लंबे समय तक कार्य में नहीं बना के रखता है, तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रावधान या निगरानी व्यवस्था है?
0: इसमें एक सिस्टम का ही इनबिल्ट मैकेनिज्म है, जैसे ही अगर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कम होती है जो बेस लाइन से या थ्रेशोल्ड अगर उसका डाउन होता है, तो एम्प्लॉयी तो चलो 6 महीने के बाद अगर वो नहीं रहते हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट में तो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट, लेकिन साथ ही एम्प्लॉयर को भी यह बेनिफिट कम हो जाती है। तो एम्प्लॉयर के लिए काइंड ऑफ डिसइंसेंटिव है कि अगर लोगों को निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं, अगर वहाँ पर रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो राधर एम्प्लॉयर को अभी ज़्यादा इंसेंटिव इसमें है कि लोगों को रखें, रिटेन करें और उनको ट्रेन करें। तो केवल रिटेन करना ही नहीं होगा, जितने दिन लोग रहेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एम्प्लॉई के लिए भी फायदा, एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा।
3: जी, विन विन सिचुएशन है दोनों।
0: विन-विन है, जी।
3: बिहार से जुड़े हैं मोहन पासवान जी।
4: नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
4: मैं बसपुर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ सर। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि छोटी छोटी कंपनियां लोगों के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाई है सर, नए स्तर से। दूसरा है सर,
0: जी पूछे
3: जी मोहन जी,
4: सर भारतीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है 2017 तक, इसके लिए कौन से सूत्र तैयार किए गए हैं सर, एवं इसमें युवाओं के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाए गए हैं सर?
3: जनरलाइज सवाल पूछाना ने
0: एक जनरलाइज सवाल है, बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई हैं भारत सरकार के द्वारा, उनमें से एक योजना यह प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है जो 2047 के विजन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को बेनिफिट देते हुए, इंसेंटिव देते हुए ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को जो सृजित कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, वर्कर जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ओवरऑल इंसेंटिव करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए ये एक बहुत अच्छी योजना है।
3: जी अक्सर मैं एक सवाल जो रहता है जहन में MSME क्षेत्र को लेकर, जो छोटे छोटे जो रोजगार सृजित करते हैं, तो देश जो MSME क्षेत्र को रोजगार का जो प्रमुख हम स्रोत मानते भी हैं, तो इस योजना को MSME क्षेत्र को क्या लाभ मिलने की संभावना है इस योजना से?
2: तो इसमें MSME के ऊपर जो जो इसके ऊपर प्रोविजंस है, तो नॉर्मली EPFO जो लॉ है वो केवल एस्टेब्लिशमेंट्स विद एटलीस्ट 20 एम्प्लॉयज जो है उनके लिए मैंडेटरी है, बट आज के डेट में हमारे पास जो डेटा है उसे बहुत सारे ऐसे MSME हमसे जुड़े हुए हैं जिसका स्ट्रेंथ 20 से भी कम है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि उनके लिए उनके छोटा साइज को ध्यान में रखते हुए, उनके कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए

0: उनको केवल दो एम्प्लॉयज़ एडिशनल एम्प्लॉयज जनरेट करने का उनको कंडीशन रखा गया है। तो दो साल के पीरियड में उनको एटलीस्ट दो नए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और उनको सस्टेन करना है। तो सारे MSMEs इसमें बहुत बेनिफिट में लेके आ सकता है।
1: तो विनिर्माण क्षेत्र को भी इस जो योजना से बहुत लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो वो किस प्रकार मिलेगा?
0: तो विनिर्माण क्षेत्र में एम्प्लॉयर जो है उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है इसमें। सो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ये स्कीम चलता है, तो बाकी संस्थाओं को जो दो साल तक जो बेनिफिट मिलता है हर एक महीने हर एक नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको चार साल तक इसके स्कीम के बेनिफिट्स मिलते हैं।
1: यदि कोई जो युवा है पूर्णेंदु जी, पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है, तो उसे EPFO से जुड़ी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा?
2: जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनका एक फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू उमंग ऐप पे जब भी वो UAN जनरेट होता है तो वहाँ पे उनकी हम आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, जो पार्ट ए का जो बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम में, कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका होना पड़ेगा। सेकंड, उनका एक DBT इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए। सो आधार के साथ लिंक होता है, लेकिन आपको बैंक में साथ ही साथ अपना DBT के लिए भी इनेबल करवाना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे, फिर जैसे ही EPFO में अगर आप जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली आप 6 महीने तक अगर आ रहे हैं यहाँ हमारे साथ, सस्टेन कर गए एक एम्प्लॉयर के साथ, आपका सारा रिटर्न यहाँ आ रहा है, आपका कंप्लायंस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बेनिफिट कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में चले जाते
1: हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्र भान जी।
3: छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है,
1: सवाल पूछे
3: जी, भारत रोजगार में कौन कौन से सेक्टर हैं?
1: कौन कौन से
2: इसमें सेक्टर्स? इसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो भी EPFO के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्कीम EPFO के थ्रू भारत सरकार चला रही है, वो भी इसलिए यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन UAN के थ्रू करते हैं, कंपनीज कवर्ड हैं, तो बेनिफिट बिकॉज आइडेंटिफाइड लोगों को जाती है। तो जितने भी EPFO के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उनके थ्रू ये सारा कुछ, ये सारी बेनिफिट जाती है
1: जी। अगर किसी के मन में प्रश्न है कि या कोई कर्मचारी है नियोक्ता इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो कोई ऐसा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सीधा संपर्क किया जा सकता है?
0: हाँ, तो ये स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारा, pmvbrv.labor.gov.in। इसमें सारे स्कीम रिलेटेड सारे आपको विशेष उसमें मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कॉल करके पूछना है तो टोल फ्री नंबर है 1-44-80-1-44-80। इसमें आप मंडे टू सैटरडे 10 to 6 आप कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं।
1: जी हाँ, 1-44-80 हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का जो भी है निवारण पा सकते हैं। पूर्णेंदु जी, आपसे एक जाते जाते यही आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी कि EPFO के आंकड़ों के आधार पर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक रोजगार में क्या परिवर्तन देखने को मिले?
2: मैम, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं और EPFO के आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है
1: जी।
2: वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी वो काफ़ी फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और हम सबों को एक फॉर्मल इकोनॉमी, एक विकसित भारत देखने को मिलेगा।
1: जी हाँ, हमें विश्वास है कि आज की चर्चा से युवाओं को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में उपयोगी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद आप दोनों का, पूर्णेंदु जी और प्रणित जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ चर्चा की। श्रोताओं, आपका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी सोमवार को एक नए मुद्दे के साथ। तब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरों का सफर।

0: कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए शमशाद बेगम और चितलकर की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत। संगीत है सी रामचंद्र का और फिल्म का नाम है पतंगा। सुनना चाहते हैं बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृति पटेल, शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, हरदेव लालपारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव, भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत, पलारी छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, अन्नपूर्णा वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोट और तमन्ना कांगड़ा।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

सुरों का सफर कार्यक्रम का अगला गीत है सुमन कल्याणपुर के स्वर में, शब्द रचना है सबा अफगानी की, संगीत जानी बाबू कव्वाल का और फिल्म है नूर महल। सुनना चाहते हैं धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा, अनुराधा अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नू लाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका अनामिका और बलदाव यादव। दुर्गापारा रायपुर से ही रानू खुशी, प्रवीण साहू, सी एल यादव। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा, साहिल कांगड़ा। अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। मर्राकोना भाटापारा से लक्ष्मी नारायण यदु, वैभव यदु। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू।

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, जी हाँ ये है फिल्म का नाम। आवाज़ है किशोर कुमार की, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहते हैं गेंदलाल मिश्रा, चंद्रकांति मिश्रा, धनंजय मिश्रा, अर्चना मिश्रा, आप सभी हैं धवलपुर गरियाबंद से। रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सेया जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन, शुभम जैन। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी, विपुल कांबड़े।

आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर। लीजिए अब सुनिए मन्ना डे, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों के स्वरों में साहिर लुधियानवी की रचना। संगीत है रोशन का और फिल्म का नाम है बरसात की रात। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये रोशन साहब की कालजयी कव्वाली है जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। सुनना चाहते हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, रामनगर रायपुर से राजेश अंबादे, शशिकला अंबादे, पूजा अंबादे, हथनीपारा भाटापारा से चुवाराम वर्मा, मुकेश वर्मा, दुलारी वर्मा, दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा, जय माँ कर्मा रेडियो श्रोता संघ सिर्री गातापारा से गातापार से धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा साहू, बिंदेश्वरी साहू, नागेश्वरी साहू, यहीं से चमेली भूमिका मोनिका साहू, पूनम साहू, धामड़ी मानोरा से तुलसीराम डेरे, माया डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण प्रज्वल और दादुल्या डेरे, जय माँ कर्मा रेडियो श्रोता संघ सिर्री गातापार से लावण्या साहू, उपासना देवराज, ओम कुमार, पुष्पराज साहू, प्रभुराम साहू, दूल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, यहीं से काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य मोहिनी, ऋतिक और बरबीर सिंह, वंदना नगर इंदौर से गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी। तो लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश पर बरसात की एक रात फिल्म की ये मशहूर कव्वाली।

बरसात की रात फिल्म की इस मशहूर कव्वाली के साथ ही सुरों का सफर कार्यक्रम का आज का सफर संपन्न हुआ। अब इस सफर से इजाजत दीजिए अपनी दोस्त रेणुका काले को। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर प्रभा अत्रे का गाया राग जोग कौंस में ख्याल।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रभा अत्रे का राग जोग कौंस में ख्याल गायन। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बज रहे हैं, समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं।

0: श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken,
3: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire.